0: शुभ प्रभात। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद है। सुबह के 7 बज चुके हैं। अब हमारी प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है। अभी से लेकर दोपहर के 12 बजे तक आप हमारी प्रातःकालीन सेवा का प्रसारण सुन सकते हैं। आज शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। तदनुसार 2 मई 2026, आज दिन शनिवार है। आपके स्वास्थ्य और सफलता की शुभकामनाओं के साथ हम आज का प्रसारण शुरू करते हैं।
1: लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम जीवन सौरभ। भगवान बुद्ध के सुविचार।
2: जो व्यक्ति सिर्फ बोलता रहता है वह ज्ञानी नहीं कहलाता, बल्कि जो व्यक्ति शांतिपूर्ण, प्रेमपूर्ण और निर्भय है, वास्तव में वही ज्ञानी है। दुनिया में अज्ञान सबसे बड़ा अहंकार है, इसलिए ज्ञान की तलाश कीजिए, तभी आप अंधकार से बाहर निकल पाएंगे। विश्वास के बिना प्रेम असंभव है और प्रेम के बिना ईश्वर का मिलना भी असंभव है। अगर आप अशांत हैं तो इससे बाहर ढूंढने की कोशिश मत कीजिए, बल्कि इसे अपने अंदर ढूंढिए। अगर आप सच में स्वयं से प्रेम करते हैं तो आप कभी भी दूसरों को दुख नहीं पहुंचा सकते। हजारों खोखले शब्दों को बोलने से अच्छा है एक वो शब्द जो शांति लाए। मंजिल और लक्ष्य को पाने के लिए यात्रा अच्छी होनी चाहिए। दुनिया में कोई भी चीज कितनी भी कीमती क्यों ना हो, लेकिन नींद, आनंद और शांति से कीमती कुछ भी नहीं।
1: ये थे भगवान बुद्ध के

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम
1: नवे दशमलव 8 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये रेडियो आजाद हिंद है और अब जानकारी हमारी आज की प्रातःकालीन सभा में प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की। हमारा अगला कार्यक्रम होगा वैदिक सूक्तों पर आधारित अक्षय निधि। उसके बाद सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम। सुबह 8 बजे महापुरुषों के जीवन पर केंद्रित वतन का राग कार्यक्रम आज समर्पित होगा स्वाधीनता संग्राम सेनानी विनायक देशपांडे के जीवन पर। सुबह 8:30 पर कार्यक्रम इतिहास के पन्नों से। इस कार्यक्रम में आज हम रानी दुर्गावती के युद्ध का इतिहास जानेंगे। जानकारी देंगे डॉक्टर पूजा सक्सेना और इनसे बातचीत करेंगे संदीप शर्मा। सुबह 9 योग संवाद कार्यक्रम में आज का विषय है योग वशिष्ठ जीवन मुक्त का स्वरूप। जानकारी देंगे डॉक्टर शशिकांत त्रिपाठी और इनसे बातचीत करेंगे सुनीता सिंह। सुबह 9:30 पर अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस पर आयोजित कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग सुनेंगे। सुबह 9:30 पर अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस पर विशेष कार्यक्रम का प्रसारण होगा जिसमें डॉक्टर लता मुंशी से भगवती सक्सेना की बातचीत हम आपको सुनवाएंगे। सुबह 10 कार्यक्रम भारत सांस्कृतिक यात्रा। इस कार्यक्रम की रेडियो रिपोर्ट का प्रसारण होगा और 10:30 पर आजाद हिंद कार्यक्रम में आज हम स्वाधीनता संग्राम सेनानी शेख भिखारी के जीवन पर केंद्रित कार्यक्रम सुनेंगे। सुबह 11 कार्यक्रम सुरसागर और 11:30 पर कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद। तो ये थी जानकारी हमारी आज की प्रातःकालीन सभा में प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर यह रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल देश के लिए। आइए सुनते हैं कार्यक्रम अक्षय निधि।
2: अक्षय निधि कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 99 से वाचन। ऋषि हैं काश्यप मारीच, देवता हैं अग्नि अथवा जातवेद अग्नि, छंद है त्रिष्टुप्,

0: भस्मीभूत करें। नाव द्वारा नदी के पार कराने के समय वे अग्निदेव हमें संपूर्ण दुखों से पार लगाएं और पापों से रक्षित करें।
1: अक्षय निधि कार्यक्रम में अभी आपने सुना ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 99 से वाचन। प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर नीलिम त्रिपाठी।
2: नवे 98 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद है। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम। हम जैसा सोचते हैं धीरे धीरे हमारा जीवन वैसा ही स्वरूप लेता जाता है, इसीलिए अपने विचारों को नियंत्रित करें और अच्छे सुंदर पॉजिटिव विचारों पर अपना ध्यान केंद्रित करें।

जैसे ही आप हार मानने की सोचें, उस कारण को याद कर लें जिसकी वजह से आप अभी तक डटे हुए थे। जो आदमी स्वयं पर विश्वास कर लेता है, वह स्वयं की शक्तियों को जरूर विकसित कर लेता है।

प्राचीन चीनी दार्शनिक लाओ त्ज़ू ने लिखा है कि यदि आप लोगों की राय की परवाह करते हैं तो आप उनके कैदी होंगे। निसंदेह उनका इरादा एक गंभीर चेतावनी देना था, लेकिन ये एक वादा और एक अवसर दोनों हैं। दूसरों की स्वीकृति की जेल वास्तव में आपके द्वारा बनाई रखी गई और सुरक्षित की गई जेल है। आप ये समझ सकते हैं कि दूसरों की परवाह करना बंद करें तो ये जेल के द्वार स्वयं खुल जाएंगे।

90.8 मेगाहर्ट्ज पर इस समय आप रेडियो आजाद हिंद से सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम। एक जापानी कहावत है कि अगर तुम गलत ट्रेन पर चढ़ गए हो तो जितनी जल्दी हो सके अगले स्टेशन पर उतर जाओ, जितना देर करोगे वापसी उतनी ही महंगी पड़ेगी।

कुछ बातें हमें हमेशा के लिए छोड़ देनी चाहिए, जैसे ज्यादा सोचना, बदलने से डरना, पुरानी बातें सोचते रहना, अलग बनने से डरना, ये सोचना कि हम कमजोर हैं, और अपना दुख सबको बताना। यदि हम अपनी इन आदतों को छोड़ देंगे तो हमारा जीवन कहीं आसान और सुखद हो जाएगा।

लोगों का व्यवहार हमारा भाग्य नहीं बिगाड़ सकता, उनका व्यवहार उनका कर्म है, उससे उनका भाग्य बनता है। इसीलिए दुनिया की सुनकर कभी हताश नहीं होना चाहिए। ये दुनिया हमारी कामयाबी पर रंग, लहजा, व्यवहार सब बदल लेगी।

इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप गलत दिशा में कितनी लंबी यात्रा कर गए, आपके पास हमेशा वापस लौटने का, पीछे पलटने का विकल्प होता है।

सफलता खुशियों की कुंजी नहीं है, खुशी सफलता की कुंजी जरूर है। यदि आप जो कर रहे हैं उस काम से प्रेम करेंगे तो सफल होना निश्चित है।

0: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। सुनते रहें रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नमस्ते भोपाल, मैं हूं कैलाश खेर और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए।

90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर ये रेडियो आजाद हिंद है। आइए सुनते हैं महापुरुषों के जीवन पर केंद्रित कार्यक्रम वतन का राग। आज के कार्यक्रम में हम स्वाधीनता संग्राम सेनानी विनायक देशपांडे के कृतित्व के बारे में जानेंगे।

0: वतन का राग कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।
1: भारतीय सेना के शूर वीरों को समर्पित शौर्य स्मारक भोपाल।
2: शौर्य स्मारक शहीदों की राष्ट्र सेवा से प्रेरित जीवन यात्रा का रूपायन।
1: जीवन के विभिन्न पड़ावों पर अदम्य साहस से जूझते मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते शूर वीरों की शौर्य गाथा का चित्रांकन
2: हर शाम 6 बजे से भारतीय जल थल और वायु सेना पर लघु फिल्मों का प्रदर्शन और भी बहुत कुछ।
1: शौर्य स्मारक भोपाल समय दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। ध्यान रहे बुधवार अवकाश।

एक समय था जब देश में सूरज तो निकलता था पर सुबह नहीं होती थी। हर सांस पर बेबसी का साया था, रातें अंधेरी थीं।

विनायक दामोदर सावरकर और गणेश दामोदर सावरकर द्वारा सन 1904 में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना की गई थी। ये एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन था। नासिक में इसकी स्थापना की गई थी, जिसका उद्देश्य था सशस्त्र विद्रोह द्वारा भारत को अंग्रेजी राज से मुक्त कराना। इतिहास साक्षी है कि ये संगठन भारत के विभिन्न क्षेत्रों में फैला और कई महत्वपूर्ण क्रांति गतिविधियों में शामिल रहा। विनायक नारायण देशपांडे भी इस संगठन से जुड़े तथा पूर्णतः समर्पित होकर उन्होंने संगठन में कार्य किया। उन्होंने अभिनव भारत सोसाइटी की गुप्त शपथ ली थी, जिसमें मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति भी देने का संकल्प शामिल था। इस संगठन में वैचारिक विमर्श के साथ साथ क्रांतिकारी गतिविधि के तहत हथियार इकट्ठा करना, बम बनाना और संगठन के अन्य निर्देशों के पालन में वो संलग्न रहा करते थे। विवाहित होने के बावजूद वो हर जिम्मेदारी निभाने के लिए तत्पर रहा करते थे। उनके जीवन का मूल मंत्र था देश पहले फिर परिवार। अपनी जीविका चलाने के लिए वो हथकरघा का व्यवसाय भी संचालित करते थे। उनके इसी हथकरघा केंद्र की तीसरी मंजिल पर एक अंधेरा कमरा था, जो क्रांतिकारियों की गुप्त बैठकों का अड्डा बन गया था। यहां विनायक नारायण देशपांडे और उनके अन्य साथी विस्फोटक सामग्री एकत्र करते थे और ब्रिटिश अधिकारियों के विरुद्ध रणनीतियां तैयार करते थे। उन दिनों नासिक का कलेक्टर था AMT जैक्सन। जैक्सन संस्कृत का विद्वान और भारतीय संस्कृति में रुचि रखता था। उसने एक सहनशील ब्रिटिश अधिकारी की छवि बना रखी थी और अपनी विद्वता का उपयोग वो जनता का विश्वास जीतने के लिए किया करता था, जबकि सच तो ये था कि वो जनता का विश्वास जीतकर क्रांतिकारियों की गुप्त सूचनाएं निकलवाकर उन्हें दंडित करने का काम किया करता था। जैक्सन का असली चेहरा क्रांतिकारियों के सामने उजागर हो चुका था। क्रांतिकारी जैक्सन की असल मंशा को पहचान चुके थे, क्योंकि जैक्सन ने ही गणेश दामोदर सावरकर पर देशभक्तिपूर्ण रचनाओं के प्रकाशन का आरोप लगाकर उन पर मुकदमा चलाया था, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें आजीवन कारावास काले पानी की सजा सुनाई गई। उन दिनों क्रांतिकारियों के पक्ष में मुकदमा लड़ने वाले एक प्रसिद्ध वकील थे वामन सखाराम खरे। जैक्सन ने उन्हें इतना अधिक प्रताड़ित किया कि उन्होंने अपना मानसिक संतुलन ही खो दिया। इसी तरह एक बार एक ब्रिटिश अधिकारी ने एक भारतीय किसान को इतना अधिक पीटा कि किसान की मृत्यु हो गई। जैक्सन को जब इस घटना की सूचना मिली तो उसने इस ब्रिटिश अधिकारी को दंडित करने के बजाय इस मामले को दबा दिया और उस ब्रिटिश अधिकारी को बचाने के लिए उसे स्थानांतरित कर दिया। इन घटनाओं से क्रांतिकारी जैक्सन की वास्तविकता को भली भांति जान चुके थे और वो उसे दंडित करने की योजना में जुट गए। अंग्रेजों के इस अत्याचार को वो और अधिक सहने को अब तैयार नहीं थे।

गणेश दामोदर सावरकर को काले पानी की सजा दिए जाने के कारण अभिनव भारत सोसाइटी के क्रांतिकारी अत्यंत आक्रोशित थे। उन्होंने तय कर लिया था कि अब जैक्सन को और अधिक जीवित रहने का अधिकार नहीं है। विनायक नारायण देशपांडे और कृष्ण गोपाल कर्वे ने उसे मारने की अत्यंत सूक्ष्म और विस्तृत रणनीति बनाई। क्रांतिकारियों ने निर्णय लिया कि जैक्सन पर हमला करने के लिए तीन क्रांतिकारी तैयार रहेंगे। पहले अनंत लक्ष्मण कान्हेरे उस पर गोली चलाएंगे। यदि कान्हेरे विफल रहते हैं तो विनायक नारायण देशपांडे गोली चलाएंगे, और अगर दोनों ही विफल होते हैं तो कृष्ण गोपाल कर्वे अंतिम प्रयास करेंगे। वीर सावरकर ने लंदन से 20 ब्राउनिंग पिस्तौलें गुप्त रूप से भारत भेजी। ये हथियार विनायक नारायण देशपांडे की निगरानी में रखे गए। उन्होंने ही वो पिस्तौल अनंत लक्ष्मण कान्हेरे को दी थी जिससे जैक्सन की हत्या की गई। योजना ये थी कि पकड़े जाने पर केवल अनंत लक्ष्मण कान्हेरे ही पूरी जिम्मेदारी लेंगे, ताकि विनायक देशपांडे और अन्य साथियों की पहचान गुप्त रहे और संगठन सुरक्षित रहे। अनंत लक्ष्मण कान्हेरे औरंगाबाद से नासिक आए। विनायक नारायण देशपांडे ने उन्हें एक सुनसान स्थान पर पिस्तौल चलाने का गहन प्रशिक्षण दिया तथा सटीक निशाना लगाना सिखाया। जब क्रांतिकारियों को ये सूचना मिली कि जैक्सन की पदोन्नति बॉम्बे के कमिश्नर के रूप में हो गई है, तो उन्होंने निर्णय लिया कि उसके नासिक छोड़ने से पहले ही उन्हें जैक्सन से बदला लेना होगा। योजना के क्रियान्वयन के लिए 21 दिसंबर 1909 की शाम चुनी गई, क्योंकि इस दिन जैक्सन के साथी कर्मचारी उसे विदाई देने वाले थे। नासिक के विजयानंद थिएटर में जैक्सन के सम्मान में कार्यक्रम रखा गया था। क्रांतिकारियों ने निर्धारित समय से पहले ही अपना अपना स्थान ले लिया। अब उन्हें प्रतीक्षा थी तो जैक्सन के आगमन की। जैसे ही जैक्सन आया और थिएटर में प्रवेश करने के लिए आगे बढ़ा, अनंत लक्ष्मण कान्हेरे ने गोली चलाई। चारों ओर अफरा तफरी मच गई। जैक्सन को चार गोली लगी और घटनास्थल पर ही उसकी मृत्यु हो गई। अफरा तफरी के कारण अनंत लक्ष्मण कान्हेरे भाग नहीं पाए। उन्हें मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने सघन जांच शुरू की। 23 दिसंबर को विनायक नारायण देशपांडे भी गिरफ्तार हो गए। हालांकि कान्हेरे ने सारा दोष स्वयं पर लेने का प्रयास किया, लेकिन उनके कुछ साथी सरकारी गवाह बन गए और इस हत्याकांड की सारी कड़ियां खुल गईं। ब्रिटिश सरकार ने इस मामले को अत्यंत गंभीरता से लिया और इसके लिए नासिक षड्यंत्र केस के नाम से एक विशेष न्यायाधिकरण का गठन किया। ये मुकदमा सन 1910 में बॉम्बे हाईकोर्ट की विशेष पीठ के समक्ष चला। इसी मुकदमे में विनायक दामोदर सावरकर भी शामिल थे, जिन्हें 2 आजीवन कारावास की सजा देकर काला पानी भेज दिया गया था। विनायक देशपांडे पर मुख्य रूप से हत्या की साजिश रचने और हथियारों के अवैध भंडारण के आरोप लगे। 20 मार्च सन 1910 को न्यायालय ने अपना निर्णय सुनाया, जिसमें विनायक नारायण देशपांडे, अनंत लक्ष्मण कान्हेरे और कृष्ण गोपाल कर्वे तीनों क्रांतिकारियों को फांसी की सजा सुनाई गई। 19 अप्रैल सन 1910 को सुबह 7 बजे इन तीनों क्रांतिकारियों को फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। तीनों के प्रति जनता के उमड़ते सम्मान से ब्रिटिश प्रशासन इतना भयभीत था कि उनके पार्थिव शरीर भी उनके परिवारों को नहीं सौंपे गए। जेल के भीतर ही उनकी अंत्येष्टि कर उनकी अस्थियां ठाणे खाड़ी के पास समुद्र में बहा दी गईं। भारत माता को अपना सर्वस्व अर्पित कर वो तीनों विदा हो गए। नमन ऐसे अमर बलिदानियों को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग। आज का कार्यक्रम स्वाधीनता संग्राम सेनानी विनायक देशपांडे के जीवन पर केंद्रित था। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद पर मैं हूँ कविता कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। रेडियो आजाद हिंद के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
2: ये मेरा इंडिया।
1: देश के अमर शहीदों को मेरा नमन है जिन्होंने आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। जय हिंद। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
3: कालीकट के अवांछित अतिथि। क्या आप जानते हैं कि भारत के लिए समुद्री मार्ग की तथाकथित खोज वास्तव में महान विजय के बजाय गहरे भ्रम और कूटनीतिक शर्मिंदगी की कहानी थी। मई 1498 में लिस्बन से 316 दिनों की कठिन यात्रा के बाद वास्को डी गामा ने मालाबार तट पर अपना लंगर डाला। हालांकि पश्चिम के इतिहास में इसे एक महान उपलब्धि माना जाता है, लेकिन पश्चिम और पूर्व की इस पहली मुलाकात की हकीकत तार्किक रूप से बेतुकी थी। पुर्तगाली दल हिंद महासागर के धार्मिक राजनीतिक परिदृश्य से पूरी तरह अनजान था। यात्रा के इतिहासकार अल्वारो वेल्हो ने दर्ज किया कि उन्हें दृढ़ विश्वास था कि कालीकट शहर ईसाइयों द्वारा बसा हुआ था। पुर्तगालियों ने हिंदू मंदिरों को, चर्च, स्थानीय सामाजिक रीति रिवाजों को ईसाई अनुष्ठान समझ लिया। वे अपनी शुरुआती रिपोर्टों में हिंदुओं या बौद्धों का उल्लेख तक करना भूल गए। गलतियों का ये सिलसिला तब और बढ़ गया जब गामा ने अपने पहले दूत के रूप में जोआओ नुनेस नामक एक सजा याफ्ता अपराधी को तट पर भेजा। नुनेस का सामना किसी आदिम स्थानीय व्यक्ति से नहीं बल्कि ट्यूनीशिया के दो व्यापारियों से हुआ जो कॉलिस्टिलियन और जेनोइस भाषाएं बोल सकते थे। उन्होंने पुर्तगाली दूत से जो पहला सवाल पूछा वो इतिहास में शाही अहंकार पर सबसे प्रसिद्ध प्रहार बना हुआ है। शैतान की कसम, तुम यहां क्या करने आए हो? जब गामा कालीकट के सामुद्री राजा जामोरिन से मिलने पहुंचे तो उनकी बेरुखी और बढ़ गई। पुर्तगाली अपने साथ उपहारों के धारीदार कपड़े, टोपियां, मूंगे की मालाएं, हाथ धोने के बर्तन, तेल और शहद लाए थे। ये उपहार इतने मामूली थे कि स्थानीय अधिकारियों ने उनका मजाक उड़ाया। उन्होंने गामा को बताया कि मक्का का सबसे गरीब व्यापारी भी इससे कहीं अधिक प्रभावशाली उपहार पेश करता है। राजा के अधिकारियों ने तिरस्कार के साथ कहा कि पुर्तगाल के राजा के पास इतने अमीर शासक को देने के लिए कुछ नहीं है। अंततः गामा को एक शक्तिशाली दूत के बजाय भ्रमित यात्री के रूप में देखा गया। पुर्तगालियों को अत्यधिक संदेह की दृष्टि से देखा गया। खुद गामा ने हमले के डर से अपनी यात्रा के दौरान जमीन पर पैर रखने से मना कर दिया। आपसी अविश्वास इतना गहरा था कि कोई भी स्थिर व्यावसायिक संधि नहीं हो सकी। अगस्त 1498 में जब बेड़ा रवाना हुआ तो वे समुद्र के स्वामी के रूप में नहीं बल्कि अवांछित घुसपैठियों के रूप में निकले। इस पहले संपर्क ने उस विरोधाभास को उजागर किया जिसने शुरुआती पुर्तगाली एशिया को परिभाषित किया। उन्होंने ऐसी दुनिया को खोजा था जो कभी खोई ही नहीं थी बल्कि उनकी आमद के प्रति उदासीन थी और उनके शहद और बर्तनों से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं थी।
4: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का।
0: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर इस समय आप रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण सुन रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम इतिहास के पन्नों से। इस कार्यक्रम में आज का विषय है रानी दुर्गावती के युद्ध का इतिहास। जानकारी दे रही हैं डॉक्टर पूजा सक्सेना और इनसे बातचीत कर रहे हैं संदीप शर्मा।
4: चैनल देश के लिए और अब समय है कार्यक्रम इतिहास के पन्नों से का।

0: नमस्कार, मैं हूं आपका रेडियो मित्र संदीप शर्मा और आज हम अपने कार्यक्रम इतिहास के पन्नों से इसकी छठी कड़ी में प्रवेश कर रहे हैं। इस श्रृंखला की पांचवी कड़ी में हमने सुना था कि 16वीं सदी में मध्य भारत के एक विशाल भूभाग पर गोंड राजवंश द्वारा स्थापित गढ़ा राज्य पर महाप्रतापी राजा संग्राम शाह की पुत्रवधु वीरांगना रानी दुर्गावती का 1550 ईस्वी से लेकर 1564 ईस्वी तक का शासन था। रानी के लोक उपयोगी कार्यों के कारण उनकी ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी थी। समकालीन दिल्ली के मुगल दरबार पर भी इसका असर दिखने लगा था। चाहे वो सोने और हाथी के रूप में दिया गया लगान हो, गोसाई विट्ठल नाथ जी का गढ़ा आगमन हो, मठ मंदिरों का निर्माण या रानी का सच्चरित्र, मुगल दरबार गढ़ा राज्य की चर्चा करने लगा था और कहीं ना कहीं रानी के ये गुण मुगल दरबार को खलने लगे थे, जिसका परिणाम गढ़ा राज्य पर आक्रमण के रूप में हमारे सामने आया। रानी अत्यधिक चरित्रवान, साहसी और अच्छी योद्धा थी। उनकी तारीफ अबुल फजल बदायूनी फरिश्ता जैसे मुगल दरबारी लेखकों तक ने की है, लेकिन अबुल फजल ने इस ओर भी इशारा किया कि गोंड रानी दुर्गावती मुगल शासक अकबर की अधीनता स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थी। पिछली कड़ी में हमने सुना कि अकबर ने उनका मनोबल तोड़ने के लिए अनेक प्रयास किए और उन्हीं प्रयासों को आगे ले जाते हुए अकबर ने किसी को वहां पर भेजा। किसे भेजा, कैसे भेजा, क्या थी पूरी बात, फिर से हमारे साथ एक बार हैं स्टूडियो में पूजा सक्सेना जी, प्रसिद्ध पुरातत्वविद। और पूजा जी, फिर से एक बार आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: हम सब उत्सुक हैं आपसे आगे की कहानी जानने के लिए।
1: अकबर का एक सेनापति था आसफ खां, हमने पिछली बार सुना। वो मालवा में तैनात था और कड़ा उसकी जागीर थी। आसफ खां गढ़ा राज्य की गतिविधियों की सूचना दिल्ली के मुगल दरबार तक बार बार पहुंचा रहा था। रानी दुर्गावती के बढ़ते हुए सैन्य ताकत और प्रतिष्ठा ने मुगल दरबार को विचलित कर दिया। दोनों राज्यों के बीच तनातनी बढ़ती जा रही थी। यह वो समय था, हमें याद रखना चाहिए, जब गढ़ा के राजा दलपत शाह की मृत्यु हुए कई वर्ष बीत चुके थे।
0: जी हाँ।
1: रानी ने पुत्र वीर नारायण की संरक्षिका बनकर 14 वर्ष तक गढ़ा राज्य को खूब समृद्ध किया था। हम सब जानते ही हैं।
0: जी।
1: रानी इस समय लगभग 40 वर्ष की एक अधेड़ महिला रही होगी और एक बच्चे की माँ भी।
0: जी।
1: तो उनका संघर्ष और मुगल सेना का संघर्ष, दोनों के बीच में ये एक बेसिक डिफरेंस रहा होगा, ये हमें ध्यान में जरूर रहना चाहिए।
0: बिल्कुल।
1: उधर दूसरी तरफ अगर हम देखें तो आसफ खां एक लड़ाका था। उसके परिवार के लोग हुमायूं की सेना में भी रह चुके थे और कई युद्ध लड़ चुके थे।
0: जी।
1: आसफ खां ने मुगल राज्य के एक भगोड़े अमीर था गाजी खां तन्नूरी,
0: जी,
1: उसको मारा था, जिससे कि इस घटना के बाद जो शासक था अकबर उसकी नजरों में आ गया
0: और वो उनका खास बना और उन्होंने उसको
1: मालवा की कड़ा जागीर दे दी।
0: जी।
1: तो यहाँ से अब आसफ खां जो है उसकी नजर अपने आसपास के जो राज्य थे उन पर लग गई कि वो अपने राज्य का विस्तार, जागीर से बड़ा राज्य कैसे बनाए।
0: जी।
1: इस और उसका ध्यान था। उसे गढ़ा राज्य कई मायनों में आकर्षित कर रहा था। एक तो ये जनजाति बहुल क्षेत्र था जिसकी बड़ी जनसंख्या जंगलों में रहती थी।
0: बिल्कुल।
1: और अपने काम से काम रखती थी, उन्हें युद्धों से इससे उससे कोई खास मतलब नहीं था। दूसरा, यह राज्य बहुत समृद्धशाली होता जा रहा था, हम सब देख ही रहे थे। हाथी भी एक बड़ा कारण थे, वन संपदा थी, वन संपदा एक बहुत बड़ा कारण बन के आती है इस समय, क्योंकि इस समय हम देख रहे हैं कि बहुत बड़े स्तर पर जहाजों का निर्माण हो रहा है, पानी के जहाजों का। उसके लिए अच्छी किस्म की सागौन की लकड़ी चाहिए।
0: जी।
1: और वो तो हमारे मध्य भारत में बड़ी बहुलता के साथ में होती है, तो वन संपदा भी एक बहुत बड़ा कारण थी, जड़ी बूटियां, दूसरी चीजें। इसके अलावा दक्कन जाने तक का जो व्यापारिक मार्ग था वो भी यहाँ से होकर गुजरता था, और जहाँ से व्यापारिक मार्ग गुजरता है वहाँ पर जो कर वसूला जाता है तो उससे राज्य समृद्ध होते हैं। तो हर एक राज्य चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यापारिक मार्गों पर उसका अधिकार हो, तो ये भी एक बड़ा कारण बन के उभरा। वहीं दूसरी तरफ जो संत हुए पुष्टि मार्गीय विट्ठल नाथ जी, जिनके बारे में हमने पिछली काफ़ी चर्चा की, उनका प्रभाव जो बढ़ रहा था, दूसरी तरफ जो धर्मांतरण बड़े स्तर पर रुक रहे थे, इन सब कारणों से एक स्थिति बन रही थी कि गढ़ा और मुगलों के बीच में एक युद्ध के आसार साफ नजर आ रहे थे।
0: और इन्हीं सब कारणों के चलते जो आसफ खां था वो मुगल दरबार को, अकबर को उकसाया करता था कि वो यहाँ पर हमला करें।
1: बिल्कुल। अगर हम जैसे मुगल दरबारी लेखक हैं वदायूनी, अबुल फजल, इनके वर्णनों को पढ़ें तो हमें पता चलता है कि आसफ खां मुगल शासक अकबर को गढ़ा राज्य पर आक्रमण करने के लिए खूब उकसाया करता था
0: जी।
1: लेकिन गढ़ा राज्य के प्रति वह हमेशा मित्रतावत व्यवहार रखता था, यानी कि आसफ खां वहां तो लड़ाई की तैयारियों में था
0: जी, जी।
1: लेकिन यहाँ पर गढ़ा राज्य के साथ वो अपने मित्रता के संबंध दिखाया
0: तो
1: करता
0: था। सिर्फ युद्ध नीति में कुशल था, वो कूटनीति में भी कुशल था।
1: बिल्कुल बिल्कुल, उसने गढ़ा राज्य से शत्रुता का खुलासा ही नहीं किया कभी, इसीलिए गढ़ा राज्य उसके प्रति चिंतित भी नहीं था। और वो गुपचुप तरीके से गढ़ा राज्य के संचार साधनों, आय व्यय और गढ़ा राज्य की आंतरिक स्थितियों को जानने के लिए गुप्तचरों और व्यापारियों को लगातार भेजता रहता था। गढ़ा राज्य के अंदर की सारी जानकारियां इकट्ठा करता था
0: जी।
1: और वो ये जानने की कोशिश करता रहता था कि कहाँ कितनी संपत्ति है, कहाँ रखी है, कहाँ कितनी सेना है, कितना असला है, क्या स्थिति है उसकी। ये सब जानकारियां वो बहुत लंबे समय से एकत्र कर रहा था, जो गढ़ा के लिए एक मुश्किल उसने बाद में पैदा की
0: जी।
1: धीरे धीरे आसफ खान ने मुगल शासक अकबर को इस बात का यकीन दिला दिया कि गढ़ा जैसा समृद्धशाली राज्य उसके शासनाधिकार में नहीं है। यानी ये एक बड़ी चिंता की विषय है मुगल दरबार के लिए कि गढ़ा जैसा समृद्ध राज्य उसके अधिकार में ही नहीं है। तो अकबर जो है उससे विचलित होने लगा और भारत का जो मध्य भूभाग है वो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, गोंड जनजाति और उसके संसाधनों पर उसका अधिकार नहीं है। इसके बाद आसफ खान ने इस बात पर भी अकबर को मनाना शुरू कर दिया कि गढ़ा राज्य पर आक्रमण के अतिरिक्त कोई विकल्प बचा ही नहीं है, यानी आक्रमण अब करना ही होगा
0: जी।
1: युद्ध अति आवश्यक है। आखिरकार मुगल शासक अकबर ने गढ़ा राज्य पर आक्रमण करने के लिए आसफ खां को सन 1564 में इजाजत दे दी।
0: यहाँ पर आक्रमण करने के लिए अकबर की सेना नहीं आई थी, आसफ खान की ही सेना यहाँ पर आई।
1: हाँ, कभी भी अकबर गढ़ा राज्य पर आक्रमण करने के लिए नहीं आया, उनका जो सेनापति था आसफ खां उन्होंने गढ़ा राज्य पर आक्रमण किया था। आसफ खां पहले से ही गुपचुप तरीके से अपनी सेना को भी सुदृढ़ कर रहा था, उधर अकबर को भड़का रहा था और इधर सेना भी अपनी तैयार कर रहा था। हाथी घोड़े पैदल सैनिक को कई वर्षों तक एकत्र करता रहा। अकबर की इजाजत मिलते ही भारी भरकम मुगल सेना का साथ भी उसको मिल गया। यह बात जानकर कि मुगल सेना गढ़ा राज्य पर आक्रमण कर रही है तो जो छोटे छोटे राज्य थे जो अकबर को लगान दिया करते थे, अप्रत्यक्ष रूप से मुगल राज्य के अधीन थे, उन सब ने भी अपनी सेनाएं आसफ खां को दे दी। तो इस तरह आसफ खां के पास एक बहुत ही विशाल सेना हो गई जो कि बड़े हाथियों से, घोड़ों से और हथियारों से लैस थी।
0: तो क्या पूजा जी ये भी कह सकते हैं कि इसके पीछे खुद आसफ खां की जो महत्वाकांक्षा थी वो भी जोर मार रही थी, क्योंकि खुद चाहता था कि वो भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह गढ़ा राज्य का सिरमौर बन जाए।
1: बिल्कुल, आसफ खां अपनी जगह बनाने में लगा हुआ था
0: जी।
1: और उसने अकबर का सहारा लिया।
0: बिल्कुल,
1: अकबर के लिए ये एक कहीं विचलित करने वाली बात थी कि भारत का जो मध्य भूभाग है वो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है
0: जी।
1: तो ये सब मिलकर ही तो स्थितियां पैदा कर रहे थे।
0: और उस समय रानी दुर्गावती कहाँ थी?
1: जिस समय आसफ खां गढ़ा राज्य के लिए षड्यंत्र रच रहा था उसी समय रानी दुर्गावती गढ़ा राज्य को समृद्ध करने में लगी हुई थी
0: जी।
1: जब आसफ खां दमोह की तरफ आ गया उस समय तो रानी सिंगौरगढ़ में थी और उन्हें इस षड्यंत्र की भनक तक नहीं थी, क्योंकि वह तो मित्रवत व्यवहार करता था।
0: बिल्कुल,
1: तो रानी ने नहीं सोचा कि इस तरीके का कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है। रानी के पास अचानक से सूचना पहुंची कि आसफ खां दमोह तक पहुंच चुका है। इससे रानी की सेना के खेमे में हलचल मच गई। उस समय रानी युद्ध के लिए तैयार तो थी नहीं
0: जी।
1: कहते हैं कि उनकी सेना में उस समय केवल 500 सैनिक थे।
0: अच्छा,
1: लेकिन गोंड रानी दुर्गावती ने इस कठिन समय में भी साहस नहीं खोया और मुगल सेना का सामना करने के लिए आगे बढ़ी
0: जी।
1: रानी को छोटी सी सेना के साथ युद्ध के लिए पलायन करने की तैयारी देखते हुए उनके जो मंत्री थे आधार कायस्थ, उन्होंने रोका और कूटनीति का सहारा लेने को कहा। इस समय गोंड सेना में सैनिकों की कमी थी, युद्ध की तैयारी थी नहीं
0: जी।
1: और सामने विशाल मुगल सेना का होना चिंताजनक तो था।
0: बिल्कुल,
1: इसलिए यह सलाह दी गई कि इस समय रानी युद्ध के लिए पलायन ना करें
0: जी।
1: लेकिन रानी को यह सलाह तो दी गई कि वह युद्ध में नहीं जाएं, पर रानी के लिए युद्ध में ना जाना कायरता का प्रदर्शन करने जैसा था, यह उनके आदर्शों के भी खिलाफ था।
0: जी।
1: युद्ध से मुंह मोड़ लेना ये तो सवाल ही नहीं उठता था उनके लिए।
0: बिल्कुल, और इसीलिए हम उन्हें रानी दुर्गावती के नाम से आज भी संबोधित
1: जी
0: करते
1: हाँ।
0: हैं।
1: रानी दुर्गावती ने सोचा कि अपमानजनक जीवन जीने से अच्छा है सम्मानजनक तरीके से मर जाना।
0: वाह क्या बात है। तो फिर क्या उन्होंने मतलब ठान तो लिया ही था, तो क्या सामना किया उन्होंने आसफ खां की सेना का?
1: रानी अब गढ़ा राज्य की आन बान की रक्षा के लिए युद्ध में जाने की तैयारी कर चुकी थी।
0: जी।
1: रानी का साहस देखकर अब उनकी सेना में लगभग 2000 सैनिक सम्मिलित हो गए। कहां 500 की सेना थी
0: जी।
1: और लोग अपने आप से आए उनकी सेना में सम्मिलित होने के लिए। तो रानी ने अपनी सेना को तैयार कर लिया और सेना कूच कर गई।
0: जी।
1: जिस ओर मुगल सेना बैठी हुई थी उस ओर उन्होंने 4 पड़ाव पार भी कर लिए।
0: अच्छा।
1: इसकी सूचना आसफ खां को लग गई और वो भी आगे बढ़ रहा था।
0: जी।
1: तो जैसे ही सूचना मिली तो वो दमों में ठिटक गया।
0: अच्छा।
1: वहीं रुक गया।
0: जी जी।
1: उसने अपने संदेश वाहक मुगल दरबार में भेजे
0: जी।
1: अकबर से और अधिक सेना की टुकड़ियां भेजने की मांग की।
0: लेकिन पूजा जी पहले ही उसके पास 10,000 लोगों की सेना थी और रानी तो यहाँ पर सिर्फ 2000 सैनिक लेकर के चलनी थी, तो आसफ खां को ये अंदाजा नहीं था कि रानी के पास सेना कम है, या वो डरा हुआ ज्यादा था?
1: रानी के शौर्य की गाथाएं वो सुन चुका था
0: जी,
1: और गोंड भी बड़े पराक्रमी होते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो संभवतः यही कारण था कि इतना अधिक आंतरिक जानकारियां जुटाने के बाद भी
0: जी।
1: और 10,000 की सेना लेने के बाद भी उसने और टुकड़ियों की डिमांड अकबर के सामने रखी
0: जी।
1: अगर हम ऐतिहासिक ग्रंथ देखें जैसे आईने अकबरी है जिसे अबुल फजल ने लिखा है, तो हमें उसमें पढ़ के पता चलता है कि आसफ खां की सेना में हाथी घोड़े पैदल सैनिक सहित 10,000 की सेना थी।
0: पहले से ही थी।
1: पहले से ही थी। इसके अलावा मुगल शाही आदेश से जो मुगलों के जो इफ्तादार हुआ करते थे, जैसे नाम मिलते हैं हमको मुहब्बिब अली खान, मोहम्मद मुराद खान, वजीर खान, बाबाई काकशाल, नाजिर बहादुर और आक मोहम्मद, ये सभी जो हैं इफ्तादार थे मुगल दरबार के
0: जी।
1: और ये सभी भी अपनी सेनाएं लेकर अब आसफ खान से मिल गए।
0: सैन्य सहायता आसफ खान को मिल गई, तो उसके बाद उनके पास कितने सैनिक हो गए?
1: हाँ, अगर हम तबकाए अकबरी नाम की एक किताब है उस समय की वो देखें तो हमें पता चलता है कि आसफ खां की सेना में घुड़सवार पैदल सैनिक सहित लगभग 50,000 की सेना का उल्लेख है।
0: ओह, कहां रानी के पास सिर्फ 2000 की सेना थी और ये 50,000 लोगों की सेना लेकर आ रहा था, जिसमें पैदल सैनिक भी थे और हाथी घोड़े मतलब सारे लोग थे, तमाम लाव लश्कर मौजूद था।
1: जी हाँ।
0: तो फिर क्या उसने रानी के आने का वहां इंतजार किया या रानी की तरफ कूच किया?
1: रानी दुर्गावती अपनी सेना के साथ दमों की ओर कूच कर रही थी
0: जी।
1: उधर दूसरी ओर तेजी से आता हुआ आसफ खां यह जानकर कि गढ़ा की सेना कूच कर गई है दमों में रुक गया था
0: जी।
1: तो गढ़ा राज्य के मंत्रियों ने रानी दुर्गावती को यह सलाह दी कि किसी सुरक्षित स्थान पर सेना को रुक जाना चाहिए
0: जी।
1: और वहां हमें अपनी सेना का एकीकरण कर लेना चाहिए क्योंकि अभी अभी बहुत सारे सैनिक आकर जुड़े हैं, तो सेना का एकीकरण करना बहुत जरूरी था
0: जी।
1: तो रानी को यह परामर्श ठीक लगा
0: जी।
1: और उन्होंने अपनी सेना को गढ़ा के पश्चिम में स्थित सघन जंगलों की ओर मोड़ लिया
0: जी।
1: इन जंगलों में अनेक वनवासी गोंड राज्य पर आई विपदा की जानकारी पाकर सेना में शामिल होने के लिए अपने आप ही चले आए
0: जी।
1: इस तरह रानी की सेना में स्वेच्छा से अनेक लोग जुड़ने लगे। अब लगभग 2000 की सेना रानी के पास में
0: इस तरह से 2000 लोग हो गए थे 500 से जी।
1: तो यहाँ जंगलों में सेना का एकीकरण करने के बाद रानी ने फिर दक्षिण पश्चिम की तरफ कूच किया
0: जी।
1: और वह एक स्थान पर पहुंची जो नरई के नाम से जाना जाता है।
0: अच्छा।
1: नरई नर्मदा नदी और गौर नदी के बीच की एक घाटी है
0: जी।
1: ये घाटी चारों ओर से पहाड़ियों से घिरी हुई है
0: जी।
1: गढ़ा की सेना ने यहाँ नरई में अपना शिविर गाड़ दिया। अबुल फजल ने भी नरई के बारे में लिखा है, वहां प्रवेश करना और वहां से बाहर आना इस घाटी से बहुत ही मुश्किल था
0: जी।
1: ऐसा अबुल फजल ने लिखा। इस स्थान के चारों ओर ऊंचे पर्वत हैं, सामने गौर नदी बहती है, ये भी अबुल फजल ने लिखा है। दूसरी ओर तो नर्मदा जोर जोर से पहाड़ों से टकराती हुई बहती है, यानी इस दुर्गम स्थान का बड़ा विस्तृत वर्णन अबुल फजल ने आईने अकबरी में किया। और उसने ये भी लिखा कि केवल एक सकरा सा रास्ता है जो बसाहट की तरफ जाता है।
0: तो निश्चित रूप से ये परिस्थितियां, ये जो स्थान था, ये तो रानी दुर्गावती के लिए एक प्लस पॉइंट था वहां पर, और उन लोगों के लिए तो निश्चित रूप से बड़ा ये दुरूह कार्य रहा होगा, क्योंकि वो सब जानते थे कि गोंड जनजाति के लोग हैं, जंगलों का रास्ता जानते हैं, दुर्गम स्थानों को बहुत अच्छे से पहचानते हैं।
1: हर एक राजवंश का अपनी प्रकृति को जानना उसका एक प्लस पॉइंट तो होता ही है
0: जी।
1: साथ ही हर एक राजवंश की अपनी एक तकनीक भी होती है युद्ध की।
0: बिल्कुल।
1: तो इनकी तकनीक में प्रकृति का उपयोग करते हुए लड़ना शुरू से ही शामिल था
0: जी।
1: तो नरई को चुनना रानी की एक स्ट्रेटेजी का एक बहुत अच्छा भाग था
0: जी। तो इससे मालूम चलता है कि जो रानी दुर्गावती थी वो युद्ध की रणनीति बनाने में भी अत्यधिक कुशल थी
1: जी। हाँ।
0: तो श्रोताओं, मतलब इसका के देखिए, जो रानी दुर्गावती थी वो युद्ध नीति में भी बहुत कुशल थी, रणनीति बनाने में बहुत कुशल थी। उन्हें मालूम था कि उनके पास कितनी कम सेना थी। पहले 500 लोग थे और अब तो जो उनके पास सैनिक आकर के भी जुड़े, जैसे कि हमें पुरातत्वविद पूजा जी ने बताया कि जो 2000 लोग भी हुए वो कोई कुशल योद्धा नहीं थे, वो सिर्फ गोंड जनजाति के ऐसे लोग थे जो गढ़ा राज्य के रहवासी थे, और वो रानी की भक्ति से सराबोर होकर, रानी की भक्ति से प्रभावित होकर उनकी सेना में जुड़ गए। तो आगे भी ये बात जारी रहेगी। हम कार्यक्रम इतिहास के पन्नों से सुन रहे हैं। हमारे साथ पुरातत्वविद पूजा सक्सेना जी हैं, जो लगातार हमें बहुत इंटरेस्टिंग जानकारियां दे रही हैं। और अब युद्ध तक बात आ चुकी है, युद्ध का बिगुल बज चुका है, आसफ खान ने धोखा दे दिया है, और अब देखते हैं कि रानी किस तरह से आसफ खान की एक लंबी चौड़ी सेना का मुकाबला करती हैं। उसके लिए आपको सुनना होगा हमारा अगला एपिसोड, जिसके लिए हम आपको जल्द ही मिलेंगे। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। इतिहास के पन्नों से, इतिहास के
2: पन्नों। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम इतिहास के पन्नों से, जिसमें आज का विषय था रानी दुर्गावती के युद्ध का इतिहास। जानकारी दे रही थी डॉक्टर पूजा सक्सेना और इनसे बातचीत कर रहे थे संदीप शर्मा। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर सुनते रहे रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
3: बॉम्बे बॉक्स वर्क, रेशमी मोज़ेक, फारसी जड़ें और ब्रिटिश मार्केटिंग। 19वीं सदी के व्यापारिक कैटलॉग के शांत अभिलेखागार में अक्सर एक जिज्ञासु शब्द मिलता है, बॉम्बे बॉक्स वर्क। एक सामान्य दर्शक के लिए ये ज्यामितीय पैटर्न की एक चमकती हुई सम्मोहक त्वचा की तरह दिखता है। हाथी दांत, सींग और विपरीत लकड़ियों का सूक्ष्म मोज़ेक, जो दस्ताने के बक्से, राइटिंग डेस्क और कार्ड केस पर लिपटा होता है। हालांकि नाम से ये विशुद्ध रूप से ब्रिटिश औपनिवेशिक आविष्कार लगता है, लेकिन इस कला का इतिहास फारसी उत्पत्ति, भारतीय शिल्प कौशल और शाही रीब्रांडिंग की एक कहानी है। भारत में इस तकनीक को सादेली के नाम से जाना जाता था, जो बॉम्बे में ब्रिटिश उपस्थिति से कहीं अधिक पुरानी थी। इसकी उत्पत्ति फारस के शिराज और इस्फहान शहरों में हुई थी, जहां इसे खम्बात बंदी कहा जाता था। ये प्रक्रिया बेहद सटीक और धैर्यपूर्ण थी। शिल्पकार हाथी दांत प्राकृतिक या हरे और लाल रंग में रंगे हुए आबनूस और चंदन की सैकड़ों पतली छड़ों को गोंद का उपयोग करके बंडलों में बांधते थे। इन बंडलों को फिर अविश्वसनीय रूप से पतली परतों में काटा जाता था, जिन्हें लकड़ी के आधारों पर चिपकाया जाता था। यहां एक मुख्य अंतर था। जहां फारसी कारीगर अपने रूपांकनों को रेखांकित करने के लिए पीली धातु यानी पीतल का उपयोग करते थे, वहीं भारतीय कारीगर टिन या चांदी के तार को प्राथमिकता देते थे। ये शिल्प राजनीतिक अशांति से भाग रहे पारसी समुदायों के साथ अरब सागर पार कर भारत आया। पहले सिंध पहुंचा और अंततः 18वीं शताब्दी के मध्य तक सूरत के व्यस्त बंदरगाह तक पहुंचा। दशकों तक सूरत इस उद्योग की असली धड़कन बना रहा, यहां तक कि जब ब्रिटिश राजनीतिक और सैन्य शक्ति बॉम्बे द्वीप की ओर स्थानांतरित हो गई, तब भी विशेषज्ञ कारीगर सूरत में ही रहे। ब्रिटिश अधिकारी वर्षों तक शिकायत करते रहे कि जब कच्चा हाथी दांत बॉम्बे में उतारा जाता था, तब भी उसे काम के लिए वापस सूरत भेजना पड़ता था, क्योंकि वहां शिल्प नेटवर्क की स्थानीयता इतनी गहरी थी। बॉम्बे बॉक्सवर्ग नाम में संक्रमण ब्रिटिश मार्केटिंग का एक मास्टर स्ट्रोक था, जिसने साम्राज्य के बदलते समय को प्रतिबिंबित किया। जैसे जैसे बॉम्बे एक औपनिवेशिक केंद्र के रूप में विकसित हुआ, ये इन वस्तुओं के पश्चिमी बाजारों तक पहुंचने का प्राथमिक आउटलेट बन गया। विक्टोरियन यात्री इन बक्सों से मंत्रमुग्ध थे, उन्हें प्रामाणिक भारतीय कलाकृतियों के रूप में देखते थे। ये शिल्प 1851 की महान प्रदर्शनी में अपने चरम पर पहुंचा, जहां बॉम्बे में बने इन कलात्मक वस्तुओं ने पदक जीते और अंततः महारानी विक्टोरिया की डायमंड जुबली के लिए एक भव्य विस्तृत बॉक्स तैयार किया गया। इस सुंदरता के पीछे एक जटिल वैश्विक व्यापार नेटवर्क था। सादेली में उपयोग किए जाने वाले हाथी दांत की मांग ने हाथी दांत कपास यूरोबोस को चलाने में मदद की। एक वाणिज्यिक सर्किट जहां अफ्रीकी हाथी दांत के बदले भारतीय कपड़ों का व्यापार किया जाता था, ताकि गुजरात की कार्यशालाओं का पेट भरा जा सके। आज बॉम्बे बॉक्सवर्ग एक मृत शब्द है। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में सेल्यूलाइड प्लास्टिक के उदय और बाद में हाथी दांत पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के कारण ये उद्योग ध्वस्त हो गया। फिर भी ये नाम इस बात का भाषाई अवशेष बना हुआ है कि कैसे अंग्रेजों ने एक जीवंत प्राचीन फारसी भारतीय परंपरा पर अपने स्वयं के प्रशासनिक लेबल सफलतापूर्वक थोप दिए।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: वामपम पवित्र प्रतीकों से लेकर साम्राज्य की मुद्रा तक। 17वीं शताब्दी की शुरुआत में अमेरिकी पूर्वोत्तर के दलदली इलाकों और तटों पर एक अजीब गरीब बदलाव हो रहा था। यूरोपीय सिक्कों के आगमन से बहुत पहले इस क्षेत्र के मूल निवासी, जैसे मुंशी समूह क्वाहोग क्लैम के खोल से मोती बनाते थे। इन मोतियों को वामपम कहा जाता था। ये केवल सजावट की चीजें नहीं थीं, ये संधियों को दर्ज करने, कहानियां सुनाने और सामाजिक संतुलन बनाए रखने के लिए उपयोग की जाने वाली पवित्र वस्तुएं थीं। सबसे कीमती गहरे बैंगनी रंग के मोती होते थे, जिन्हें शंख के गहरे हिस्सों से तराशा जाता था। दिलचस्प बात यह है कि इन बैंगनी मोतियों का उत्पादन इंटरैक्टिव डोमेन्स यानी पारस्परिक प्रभुत्व का परिणाम था। पत्थर जैसे सख्त क्वाहोग खोल को नाजुक बेलनाकार मोतियों में तराशने के लिए स्वदेशी कारीगरों को यूरोप से आपूर्ति किए गए धातु के ड्रिल की आवश्यकता थी, जो 1630 के दशक तक हडसन घाटी में आम नहीं हुए थे। इस तकनीकी संलयन ने लॉन्ग आइलैंड के तटीय क्षेत्रों को एक वास्तविक टकसाल में बदल दिया। 1640 के दशक तक डच और अंग्रेजी बसने वालों के लिए एक अजीब आर्थिक वास्तविकता बन गई थी। उपनिवेशों में सोने चांदी की कमी थी और फिर फर, जो कि पशुओं की खाल होती थी, का व्यापार धन का प्राथमिक इंजन था। बसने वालों और स्वदेशी समूहों के बीच व्यापार को सुगम बनाने के लिए वामपम पसंद की मुद्रा बन गया। ये वो पैसा था जिसने सीमावर्ती क्षेत्रों के व्यापार को गति दी, जिसका उपयोग वीवर की खाल से लेकर मक्के और यहाँ तक कि जमीन के विशाल टुकड़ों को खरीदने के लिए किया जाता था। हालांकि डच वेस्ट इंडिया कंपनी और स्वदेशी उत्पादक इस पैसे को दो पूरी तरह से अलग नजरियों से देखते थे, उनके लिए वामपम सामाजिक पारस्परिकता का हिस्सा था, एक उपहार जिसके बदले में दुनिया को संतुलन में रखने के लिए दूसरा उपहार दिया जाना चाहिए। उनके लिए ये वस्तु थी जिसे कर यानी टैक्स के दायरे में लाया और नियंत्रित किया जाना था। सितंबर 1639 में डच डायरेक्टर विलेम कीफ्ट ने नीति में एक कट्टरपंथी बदलाव का प्रयास किया। उन्होंने स्थानीय मुंशी समूहों पर सुरक्षा शुल्क लगा दिया और डच किलों की लागत वहन करने के लिए वामपम और वीवर की खाल के रूप में ट्रिब्यूट की मांग की। मुंशी इस बात से आक्रोशित थे। उन्होंने तर्क दिया कि उन्होंने डचों का स्वागत किया था, उनके संकट के समय उनकी देखभाल की थी और उन्हें अपनी जमीन पर मुफ्त में बसने की अनुमति दी थी। वामपम, जो संतुलन का प्रतीक था, उसे अनचाही सुरक्षा के लिए टैक्स के रूप में मांगना सामाजिक पारस्परिकता की विफलता थी। वामपम के आध्यात्मिक और राजनीतिक मूल्य की यही मौलिक गलतफहमी 1640 में प्रथम डच मुंशी युद्ध का प्राथमिक कारण बनी। जैसे जैसे संघर्ष बढ़ा, लॉन्ग आइलैंड के वामपम उत्पादक एक दुखद बंधन में फंस गए। यूरोपीय बाजार अर्थव्यवस्था में पूरी तरह से एकीकृत होने के कारण उन्हें केवल अपनी जमीन और मोती बनाने के लिए आवश्यक धातु के औजारों तक पहुंच बनाए रखने के लिए डचों को शांति और सैन्य सहायता का वचन देने के लिए मजबूर होना पड़ा। 17वीं शताब्दी के मध्य तक जंगल के वे आध्यात्मिक मोतीशाही अधीनता के हथियार बन चुके थे, जो उन लोगों की बेदखली का रास्ता तय कर रहे थे जिन्होंने उन्हें बनाया था। वामपम उस समय के एक डरावने अवशेष के रूप में आज भी मौजूद हैं। जब पवित्र प्रतीकों को साम्राज्य की ठंडी मुद्रा के रूप में पुनर्गठित किया गया था।
2: नमस्कार, मैं हूँ रेखा भारद्वाज और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
3: नब्बे 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम योग संवाद। इस कार्यक्रम में आज का विषय है योग वशिष्ठ, जीवन मुक्त का स्वरूप। जानकारी देंगे डॉक्टर शशिकांत त्रिपाठी और इनसे बातचीत करेंगी सुनीता सिंह।
4: नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। मैं हूं आपकी रेडियो सखी सुनीता सिंह, लेकर उपस्थित हूं हमारी सनातन यौगिक परंपरा पर प्रकाश डालता कार्यक्रम योग संवाद। श्रोताओं, योग संवाद कार्यक्रम में आज हम चलेंगे उस गहन आध्यात्मिक पथ पर जहां जीवन के बंधनों से परे उसके वास्तविक अर्थ को समझा जा सके। आप जानते ही हैं कि पिछले दिनों हमने योग वासिष्ठ पर चर्चा आरंभ की है इस कार्यक्रम में, और इसके वैराग्य प्रकरण के उस बिंदु पर हम खड़े हैं जहां प्रश्न है कि क्या सचमुच ये जगत वैसा ही है जैसा हम देखते हैं? क्या ये संसार सत्य है या केवल मन की रचना, एक मायाजाल? प्रश्न है कि क्या वासनाएं ही हमें बांधती हैं और उनसे परे ही मुक्ति का द्वार खुलता है? तो आज इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे जीवन मुक्त के स्वरूप पर। कैसी है वो स्थिति जहां मन न बंधता है, न विचलित होता है, जहां व्यक्ति संसार में रहते हुए भी उससे परे रहता है? इस चर्चा के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं योग अध्यात्म और जीवन विज्ञान विशेषज्ञ डॉक्टर शशिकांत मणि त्रिपाठी। नमस्कार शशिकांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में।
5: नमस्कार।
4: पिछले अंक में हमने चर्चा की थी कि वाल्मीकि जी ने भरद्वाज से कहा कि वो राम कथा सुने जिसे सुनकर जीवन मुक्त हो जाएंगे वो।
5: जी।
4: तो मेरे मन में ये एक सवाल था कि जीवन मुक्त की जो स्थिति है वो क्या होती है, ये आप बताएं हमारे सुनने वालों को।
5: देखिए, आजकल राम कथा का जो श्रवण लोग कर रहे हैं
4: जी,
5: वो तात्विक चिंतन पर बात नहीं हो रही है। उन कथाओं को सुन करके उसको अपने जीवन में अंगीकार करने की जो बात आती है, वहां पर आदमी उस प्रयोग में उतरना नहीं चाहता। भरद्वाज जी वाल्मीकि जी से कहते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न और यशस्विनी सीता देवी इस संसार में संकट में रह करके उन्होंने कैसा व्यवहार किया था उसका मुझे वर्णन करिए, ताकि हम वैसा ही व्यवहार करके अपने को दुख से मुक्त कर सकें।
4: जी।
5: अब देखिए, भरद्वाज जी की जिज्ञासा है कि वैसा ही व्यवहार करें। यहां हमने राम के व्यवहार को राम का व्यवहार मान करके अपने व्यवहार को तनिक भी उससे जोड़ने या परिवर्तित करने का प्रयास नहीं किया। परिणाम यह है कि हम संसार संकट में होने के बाद भी और कभी भी उससे मुक्त होने की तरफ हम अग्रसर भी नहीं हो पाते। राम जी का भी ये सवाल था कि जीवन मुक्त क्या होता है और कैसे हम यहाँ व्यवहार करें, क्योंकि व्यवहार करते हुए जो लोग दिखाई देते हैं ये सारे लोग कर्म करने के बाद भी तो दुखी हैं।
4: बिल्कुल।
5: तो ऐसे में कर्म किसी दुख का अंत कर देता है या कर्म से दुख को समाप्त कर सकते हैं, ये अवधारणा राम जी ने कहा ये मेरे समझ में नहीं आया, तो इसलिए उन्होंने कहा कि मैं कैसे व्यवहार करूं ये मुझे बताइए। तो वहां पर वशिष्ठ जी कहते हैं कि तुम जीवन मुक्त की तरह व्यवहार करो। तो ये जो ग्रंथ है ये जीवन मुक्त की स्थिति क्या होती है, उसका स्वरूप कैसा होता है, इन तमाम सारे विषयों पर, ये उसके सूक्ष्मतम रहस्यों पर आपका ध्यान आकर्षित करता है।
4: क्या इसी जीवन में आत्मबोध संभव है, और अगर है तो कैसे?
5: इसके लिए वाल्मीकि जी कहते हैं कि ये ग्रंथ जो योग वासिष्ठ है, इस शास्त्र का ज्ञान होने पर इसी जीवन में आत्म तत्व का बोध हो जाता है, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस शास्त्र को आप पढ़ें और उसके बाद आप

0: भी जो तमाम इंद्रियां हैं, 11 इंद्रियां जिनसे आप व्यवहार करते हैं, वो इंद्रियां उस चेतन तत्व की वजह से क्रियाशील हैं। यानी अवचेतन तत्व का कोई मतलब न गुण है न कोई स्वरूप है, वो निर्गुण निराकार है। क्योंकि कोई पूछे कि आत्मा का क्या आकार है, आज तक विज्ञान इसको खोज नहीं पाया। और बल्कि जिन लोगों ने हार्ड कोर आप कॉन्सियसनेस को जानने की कोशिश भी की, वो वहां तक पहुंचे ही नहीं, और फिर वो शरीर का ही अध्ययन करने में लग गए कि कैसे शरीर में परिवर्तन होता है, किस सोच का कैसा प्रभाव पड़ता है। मनोविज्ञान तो आजकल इसी न्यूरोसाइंस का ही अध्ययन करने में लगा है, जबकि वो मन से शुरू हुआ था, आत्मा से शुरू हुआ था। तो ऐसे में जिस आत्मा की वजह से शरीर की समस्त क्रियाएं हो रही हैं, जो दिखाई दे रही हैं, जिसको आप जान सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन जिसकी वजह से ये कार्यरत हैं, क्रियाशील हैं, उसको तो नहीं जाना जा सका या उसका कोई रूप बताया नहीं जा सकता। तो उन्होंने कहा कि जैसे ये नीलिमा आकाश में दिखती है, लेकिन जो ज्ञानी लोग हैं वो कहते हैं ये नीलिमा आभासित हो रही है, ऐसे ही जो जीवन मुक्त पुरुष है वो संसार को उसी निर्गुण निराकार ब्रह्म में देखता है। यानी सगुण साकार का उसके जीवन पर कोई बहुत गहरा प्रभाव नहीं पड़ता, यही जीवन मुक्ति है। और हम लोग पूरे समय गुण के साथ व्यवहार करते हैं और गुण को ही अपना रूप मान लेते हैं, तो फिर हम दुख को दूर करने के लिए चाहे जितने भी प्रयास कर लें, लेकिन दुख से मुक्त नहीं हो पाते। जीवन मुक्ति का अर्थ होता है दुख का आत्यंतिक अभाव, एकदम अभाव हो जाना। और वो कैसे होगा आपने पूछा, तो वो कहते हैं कि ये ग्रंथ का अगर आपने ठीक से चिंतन किया, श्रवण मनन निधिध्यासन किया, तो निश्चित ही है कि आप जीवन मुक्त हो ही जाएंगे, आत्मबोध आपको हो जाएगा।
1: अच्छा, इस संसार के विषय में भी बहुत सी बात इसमें है कि माया है या भ्रम है
0: जी।
1: तो जो भी दृश्य हमारे सामने है संसार का, उस दृश्य से ही हमारे जो भाव अनुभव हैं वो परिचालित होते हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो मन से जो दृश्य का ये प्रपंच है, इसका अभाव कैसे हो सकता है, कैसे हम इससे प्रभावित ना हो?
0: आप देखिए, जब दृश्य से प्रभावित होकर के आप व्यवहार करेंगे, तो ऐसे में आप कहें कि मैं दृश्य से अप्रभावित कैसे रहूं, क्योंकि आपका तो पूरा जो ध्यान है वो दृश्य का परसेप्शन बनाने में है, उसी के आधार पे आप अपने कॉन्सेप्ट बनाते हैं और व्यवहार करते हैं, तो वहां तो संभव नहीं है। लेकिन अगर आपको इस तत्व का बोध हो चुका है कि ये निर्गुण निराकार ब्रह्म में ये जगत जो है प्रतीत हो रहा है, तो आप इस दृश्य प्रपंच से मुक्त हो सकते हैं। इसके लिए वाल्मीकि जी ने कहा भरद्वाज जी से कि यह दृश्य जगत वास्तव में है ही नहीं। ऐसा बोध होने पर जब मन से दृश्य प्रपंच का मार्जन अर्थात निवारण होता है, तो पूरा अभाव हो जाता है, तब परम निर्वाण रूप शांति का स्वतः अनुभव होने लगता है। अब देखिए कितनी बड़ी बात इन्होंने कही, कहा कि जब दृश्य प्रपंच का निवारण होगा तो स्वतः ही आपके अंदर शांति की अनुभूति होना प्रारंभ हो जाएगी। और यहां पर क्या होता है कि दृश्य प्रपंचों के द्वारा ही हम शांत होने का प्रयास करते हैं। हम सोचते हैं कि दृश्यों को बदल दें, परिस्थितियों को बदल करके भविष्य में हम शांति का अनुभव करना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं कि पूरे समय दृश्य प्रपंच में ही उलझे हुए हैं, और शांति महज हमारा एक ख्याली पुलाव बन के रह जाता है जो ख्यालों में है। कारण क्या है, क्योंकि हम दृश्य प्रपंचों के साथ शांत नहीं हो सकते। शांत होने के लिए दृश्य प्रपंचों का अत्यंतिक अभाव होना चाहिए, और इस अभाव के लिए आपको इस तत्व का ज्ञान होना चाहिए कि ये सब कुछ निर्गुण निराकार। अब निर्गुण निराकार का मतलब देखिए कितनी सुंदर बात है, हालांकि कुछ लोग हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे संत निर्गुणिया संप्रदाय के हुए, लेकिन निर्गुणिया संप्रदाय में भी आप गुणों से ही उस निर्गुण का ज्ञान कर रहे हैं। तो अब निर्गुण का मतलब ये हुआ कि आप दृश्य प्रपंचों के प्रभाव में वैसे ही ना आए, जैसे आप देखते होंगे चलचित्र जब हम देखते हैं, सिनेमा देखते हैं, तो पर्दे पर सारी घटनाएं घटती हैं, लेकिन पर्दा सारी घटनाओं से अछूता है। ठीक ऐसे ही हम अपने जीवन में मन में चलने वाले दृश्य प्रपंच, क्योंकि मन में दृश्य प्रपंचों का ही हमेशा संचार प्रभाव रहेगा, तो यह भी विचार करें कि ये सब एक पर्दे पर चल रही एक प्रक्रिया है, जहां पर विभिन्न तरह के लोग अपने अपने पात्र का अभिनय कर रहे हैं, और इसको तो कई
1: मैं वो कहने जा रही थी, किसी दृष्टि से देखें कि ये जो दुनिया है, रंगमंच है, हम सभी अपनी अपनी भूमिकाओं में हैं, इस दृष्टि से देखना ही इस प्रपंच से दूर होना है।
0: बिल्कुल ठीक कहा आपने। आप एक अभिनेता की भांति से, अभिनेता जब किसी दृश्य को अपने अभिनय में उतारता है, तो ऐसे उतारता है जैसे लगता है उसके जीवन की ही घटना है, उसके जीवन में वो हो रहा है, लेकिन विवेकानंद जिसको कहते थे, कहते थे कि जिस प्रकार जैसे एक अभिनेत्री अगर एक विधवा की भूमिका निभा रही हो तो जैसे ही उसका जो रोल है वो पूरा होता है तो वो प्रसन्न होकर हंसने लगती है, लेकिन वही एक महिला जो अपने जीवन में विधवा हो गई है वो उसको जीवन भर उस दुख के साथ जुड़ी रहती है। तो उसने उस दुख का अभिनय में प्रयोग किया और यहां हमने उसको अभिनय ना मान करके जीवन का यथार्थ मान लिया, यानी दृश्य प्रपंच को ही हमने यथार्थ मान लिया जबकि वो भी एक दृश्य था। जो इन शास्त्रों का लोग चिंतन मनन कर रहे हैं उनके जीवन में इस तरह की घटनाएं, जैसे राम जी को ही लें, जैसे भरद्वाज जी ने पूछा कि कैसे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न और जगत माता जो सीता हैं संसार के तमाम कष्टों के बाद भी वो इस संसार के कष्ट को सह सके, तो वो सहने का सामर्थ्य कहां से आया? वो सामर्थ्य आया उस निर्गुण निराकार के चिंतन से, क्योंकि वो उस स्वरूप को जानते थे। अगर वो उस दृश्य प्रपंच का हिस्सा बन गए होते तो आप आज भी राम कथा का एक बार चिंतन करके देखें तो उन दुखों को हम अपने जीवन में अगर मतलब घटित होता देख लें तो शायद हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे,
1: बिल्कुल, बिल्कुल,
0: है ना। तो वो कथा है ये कि अगर उसको आप अपने जीवन में देखें तो उन्होंने भी तो व्यवहार किया और एकदम कहते हैं आदर्श व्यवहार किया, कि ऐसा व्यवहार किया कि अगर भगवान भी धरती पे आए तो वो शायद उन्हीं जैसा व्यवहार करेगा, उनसे श्रेष्ठ व्यवहार नहीं करेगा। ये उनकी जीवन मुक्तता है,
1: बिल्कुल
0: जी।
1: अच्छा, मोक्ष की चर्चा बहुत होती है, इस ग्रंथ में भी मोक्ष की चर्चा है, तो मैं चाहती हूँ कि हमारे सुनने वालों को आप बताएं कि उत्तम मोक्ष क्या है।
0: उत्तम मोक्ष का अर्थ है कि वासना का आत्यंतिक अभाव। वासना शब्द पर जरा हम ध्यान दें कि हम मूल रूप से विषयों में वास करते हैं, हमारी समस्त इंद्रियां जो हैं, इंद्रियों का जो प्राण है वो उसके विषय हैं। बिना विषयों के उत्प्रेरणा के आप देखेंगे आपकी इंद्रिय न किसी विषय के प्रति आसक्त होगी न किसी के प्रति द्वेष भाव रखेगी, तो अंततः ये राग और द्वेष जो भाव उत्पन्न हो रहा है उस विषय के साथ जो सुख और दुख की अनुभूति हुई है उसी स्मृति के आधार पर हो रहा है। तो वासना का मतलब कि अब आपका वास विषयों में नहीं है, यानी विषय का जो अत्यंतिक अभाव है वो है उत्तम मोक्ष। मोक्ष लोग सोचते हैं कि ये शरीर छूटने के बाद कोई ऐसा लोक है या मन की कोई ऐसी अवस्था है, मन की अवस्था नहीं है, मन का एक ऐसा बोध है जिस बोध में मन शांत होता है। शांत मन कब होता है? जब विषयों का अत्यंतिक अभाव है। तो कई बार क्या होता है कि हम शब्दों का अर्थ अपने हिसाब से या आसपास के लोगों को देखते हुए ग्रहण कर लेते हैं, इसीलिए आचार्य शंकर कहते थे कि इसके लिए श्रुति प्रमाण है। तो ये श्रुति ग्रंथ है कि आप इसमें जाएं, चिंतन करें और तब आप जानें कि वास्तव में मोक्ष क्या है। तो जो उत्तम मोक्ष है वो विषयों का एकदम अभाव हो जाना, यानी विषयों में वासना, कहते हैं वासना कहाँ है? विषयों में है,
1: विषयों
0: है ना। तो विषय जब पूरी तरीके से आपको आकर्षित और विकर्षित न कर पाए, राग द्वेष की जो प्रवृत्ति है वो शांत हो जाए, तो आप उत्तम मोक्ष को प्राप्त हो चुके, ऐसा वाल्मीकि जी का कहना है।
1: तो विषयों में वासना हो, ये आपने बताया कि ये वासना है जिससे मुक्ति की बात की। अच्छा, वासना के भी प्रकार हैं क्या?
0: हाँ, वासना के बिल्कुल प्रकार है। आपने अच्छा सवाल किया, तो ग्रंथ में भी ये बात आती है कि वासना मूल रूप से दो प्रकार की होती है, शुद्ध वासना और अशुद्ध वासना, मलिन वासना जिसे कहते हैं। तो इसी प्रकार मतलब आप देखेंगे जितनी भी आपकी विषयों में राग द्वेषात्मक प्रवृत्ति है, इसको अगर मूल रूप से आप देखें तो जो द्वेष वाला हिस्सा है वो मलिन वासना है, जो राग वाला हिस्सा है वो शुद्ध वासना है।
1: मैं चाहती हूँ इसको शुद्ध वासना और मलिन वासना को थोड़ा विस्तार से आप हमारे सुनने वालों के लिए बताएं।
0: मलिन वासना जन्म की हेतुभूत है, यानी जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में अर्जुन
1: जी,
0: से
1: जी।
0: अब आप देखिए, वो कहते हैं कि जिसने जन्म लिया उसके साथ एक चीज तो निश्चित हो गई ना, मृत्यु। और देखें उस पूरे जीवन यात्रा में हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि आपको लगता है कि आप जन्मदिन मना रहे हैं, लेकिन सच ये है कि आप मृत्यु के प्रति अग्रसर हैं, आपकी पूरी यात्रा मृत्यु की तरफ बढ़ रही है। तो कहते हैं जन्म मृत्यु जरा बुढ़ापा भी, बुढ़ापे की तरफ भी बढ़ रहे हैं हम, और व्याधि तो शरीर में है ही, ठीक है। तो ये दुख और दोष, यानी शरीर में जो ज्ञानी पुरुष है, जो जीवन मुक्त है या जिसने उत्तम मोक्ष की प्राप्ति कर ली है, वो हमेशा उसमें दुख दोष का दर्शन करता है। तो ये मलिन वासना है, ये वासना आपके जन्म की हेतु भूत है, यानी इसी वजह से व्यक्ति का जन्म होता है, और जन्म होता है तो फिर जन्म के भोग भी भोगने पड़ते हैं, जन्म होता है तो कर्म भी करने पड़ते हैं। ये मलिन वासना का प्रभाव है। और एक जो शुद्ध वासना है वो जन्म का नाश करने वाली है। अब ये देखिए, जन्म का नाश करने वाला मतलब आपको मोक्ष देने वाली है, फिर आपके अंदर कोई ऐसा भाव न रहे कि जिसको भोगने के लिए, जिसकी आसक्ति या जिसके द्वेष की वजह से आप फिर जन्म ग्रहण करें। तो ये शुद्ध वासना ऐसी वासना है जो आपको उत्तम मोक्ष दे देती है। तो ये दो प्रकार की वासना है। लेकिन अब उत्तम मोक्ष के लिए जो प्रयास है, इस पर भी बड़ी गहरी मतलब आगे ग्रंथों में बात आएगी कि कई बार क्या होता है कि हम लोग देखते हैं कि हम लोग कई बार मोक्ष के लिए ही कर्म करने पर तत्पर हो जाते हैं। तो वो भी एक प्रकार की शुद्ध वासना भी एक प्रकार का बंधन बन जाती है। तो इसमें हमें सतर्क होना है कि अगर शुद्ध वासना, जैसे आपने अरिष्टनेमी की बात देखी, अरिष्टनेमी कहते हैं कि अगर तुम्हारे स्वर्ग में जो अपने से ऊंचे हैं उनके प्रति असहिष्णुता, जो अपने बराबर हैं उनके प्रति स्पर्धा का भाव, और जो अपने से नीचे हैं उनको देख करके संतोष होता है, तो ऐसे स्वर्ग की आकांक्षा हमें क्यों हो?
1: ऐसी तो धरती भी है,
0: ऐसी धरती है। तो भाई कितना सुंदर है कि मैंने तुमने इसी धरती के चित्त से स्वर्ग को भी निर्मित किया, और एक ऐसा स्वर्ग निर्मित किया जिसको आप इस धरती पर प्राप्त होने से वंचित रह गए। तो वहां भी आपने एक वासना बना ली। तो स्वर्ग भी एक तरह से देखें तो वासना ही है, कह सकते हैं एक शुद्ध वासना है जिसके लिए दान धर्म तप और तमाम क्रियाएं की जाती हैं। लेकिन जब अरिष्टनेमी जैसा, जिसको आत्मज्ञान के लिए इंद्र ने कहा देवदूतों से कि आप ले जाओ, अब तो ये आत्मज्ञान का पात्र है। आत्मज्ञान, जो आपने भी पूछा कि मतलब क्या इस जीवन में आत्म तत्व का बोध हो सकता है, तो आत्म तत्व के बोध का अधिकारी वही व्यक्ति होता है जिसकी शुद्ध वासना में भी अब कोई रुचि नहीं रह जाती। मलिन वासना तो वो हटा ही चुका है, लेकिन जो जन्म का नाश करने वाली जो शुद्ध वासना है, ये भी करके वो मुक्त हो गया। मतलब अब उसको जन्म का नाश करने वाली वासना के लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, वो मुक्त है, वही उत्तम मोक्ष है।
1: जी जी जी। अच्छा, ये जो ग्रंथ है भगवान श्री राम के जीवन का एक महत्वपूर्ण समय है, किशोरावस्था का एक विशेष बिंदु पर वो खड़े हैं, जहां से वैराग्य उनके भीतर आता है और योग वासिष्ठ खड़ा है ग्रंथ जिस जमीन पर।
0: जी जी।
1: तो मैं जानना चाहती हूँ कि हम वहां पहुंचे जहां भगवान श्री राम गुरुकुल से वापस आते हैं, और पहली याचना अपने पिता से वो क्या करते हैं।
0: पहली याचना उन्होंने अपने पिता से कही, श्री राम जी कहते हैं कि हे स्वामी महाराज, मेरे मन में तीर्थों, देव मंदिरों, वनों और आश्रमों का दर्शन करने के लिए बड़ी उत्कट आकांक्षा हो रही है।
1: जी।
0: आपके समक्ष ये मेरी पहली याचना है। आप इसे सफल करने योग्य हैं, और संसार में ऐसा कोई याचक नहीं है जिसे अभिष्ट वस्तु देकर आपने उसका अनादर किया। तो ऐसे में मुझे ये अवसर दें कि मैं तीर्थाटन करूं। अब देखिए, हम लोग भी तीर्थाटन करते हैं।
1: जी जी।
0: और हम लोग वहां भी अपेक्षा लेके जाते हैं संसार की, कि संसार की सिद्धि हो, या जैसे संसार के लोगों की यात्रा आप देखें, जहां भी कहीं लगता है कि हमारे मनोकामना की सिद्धि होगी, तो हम तीर्थ यात्रा करते हैं। यहाँ राम जी निष्काम होने के बाद तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं। कह सकते हैं ये ज्ञान तो है उनको, लेकिन वो कहते हैं मैं देखना चाहता हूँ। तो कहते हैं ज्ञान जब तक व्यवहार का विषय नहीं है, तब तक आपको मैं कहूं कि आपने उसकी लर्निंग कर ली या उसका आपको अधिगम हो गया, ये मनोविज्ञान भी नहीं मानता। कोई भी ऐसा ज्ञान जो आपके व्यवहार को परिमार्जित कर दे, व्यवहार को परिवर्तित कर दे, रूपांतरित कर दे, तब तो उस ज्ञान का प्रभाव आप पर हुआ। अन्यथा आपका व्यवहार जैसा था वैसा ही है, तो आपने ज्ञान लेकर के किया क्या? पर उपदेश कुशल बहुतेरे, पर सिखवन के बुद्धि घनेरे। तो वो कहानी बन गई कि आदमी उपदेश कर रहा है किसके लिए? दूसरों के लिए। बदलाव किसमें चाहता है? दूसरों में। है ना। तो अब ऐसे में तो सारे लोग चाह रहे हैं, तो कौन बदलेगा? हर वो आदमी जिसमें आप बदलाव चाहते हैं, वो भी आप में बदलाव चाहता है ना। और ये चाहते हैं फिर हमेशा अधूरी रहती है, कोई पूरी नहीं होती। तो यहाँ राम जी कहते हैं कि मैं देखना चाहता हूँ कि जिस ज्ञान को मैंने अर्जित किया इन तीर्थों में, जहां पर ज्ञानी लोग ही रहते हैं, क्योंकि वहां पर तो ज्ञानी ही होंगे, या कहीं ना कहीं संसार में उनकी इच्छाएं पूरी नहीं होंगी तो तीर्थों में आए होंगे, तो देखें तीर्थों में इनका व्यवहार कैसा है। संसार में तो व्यवहार हम देख ही रहे हैं।
1: जी, जी, जी।
0: तो वहां जब जाने की इच्छा जाहिर करते हैं, तो ये उन्होंने अपने पिता से पहली याचना की थी।
1: जी। और फिर इसके बाद वो तीर्थाटन के लिए गए।
0: ज्ञान का व्यवहारिक पक्ष देखना चाहते थे।
1: तो उन्होंने देखा। तो तीर्थ यात्रा के बाद जब वो लौटे, तो इस तीर्थ यात्रा का क्या प्रभाव रहा उनकी दिनचर्या पर?
0: दिनचर्या देखिए, जब यात्रा करके लौटते हैं तो उनकी दिनचर्या पूरी तरह से बदल जाती है। उस समय उनकी उम्र लगभग 16 वर्ष की है।
1: जी, जी
0: जी। और भरद्वाज जी से वाल्मीकि जी कहते हैं कि राम लक्ष्मण जब वहां से लौट के आए, तो राम जी अब तीर्थयात्रा के बाद अपने घर में ही रहते हैं, दिन ब दिन कृश होते जा रहे हैं, कृश मतलब कमजोर होते जा रहे हैं,
1: कमजोर होते जा रहे हैं जी।
0: और भरद्वाज जी कहते हैं कि दशरथ जी बार बार स्नेहयुक्त मधुर वाणी से पूछते हैं कि बेटा तुम्हारे मन में कैसी बड़ी भारी चिंता पैदा हो गई है। वे उत्तर देते हैं, पिताजी मुझे कोई कष्ट नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, फिर भी शरीर कृश हो रहा है, फिर भी दिनचर्या बिल्कुल ऐसी है जैसे आदमी उत्साहित होकर अपने जीवन को जीता है, वो उत्साह नहीं है। अब यहाँ पर आप देखें तो ऐसा तब भी होता है जब व्यक्ति मनोरोगी हो जाए, मन में कोई रोग हो जाए।
1: जी, जी, जी।
0: अब ये मन में रोग नहीं है, मन में किसी विषय को लेकर उसके तत्व का चिंतन चल रहा है, ये कह सकते हैं उत्तम वैराग्य है, उत्तम मोक्ष की तरफ चिंतन चल रहा है।
1: जी, जी।
0: राम की स्थिति सामान्य लोगों की स्थिति नहीं है। तो कहते दशरथ जी कहते हैं कि राम क्यों खिन्न हैं? ये पूछते हैं वशिष्ठ जी से कि गुरु जी जरा बताइए कि राम जब से तीर्थयात्रा से आए हैं ये खिन्न क्यों रहते हैं? इसमें कुछ कारण है जिसके लिए आपको दुख करने की जरूरत नहीं है। ये वशिष्ठ जी कहते हैं कारण तो है लेकिन आप उसके लिए दुखी मत होइए, क्योंकि राम को दुख से ये खिन्नता नहीं आई।
1: जी, जी, जी,
0: ये राम को जो खिन्नता आई है उसका कारण कुछ और है,
1: कुछ और
0: वो है। हम देख पा रहे हैं क्योंकि राम अब योग के अधिकारी हैं, जैसे अरिष्टनेमी अधिकारी हुए थे आत्मतत्व के लिए। तो ऐसे में कहते हैं कि राम की स्थिति अब अलग है, अब राम आत्मबोध की तरफ बढ़ेंगे, उनकी दिनचर्या में जो ये परिवर्तन आया है ये परिवर्तन एक चिंतन या तत्व ज्ञान से आया है। और भगवान गीता में कहते हैं अर्जुन से कि तुम प्रश्न परिप्रश्न उससे करो जो तत्वदर्शी हो, उपदेशन तिथे ज्ञानम ज्ञानत तत्वदर्शन। तो कहते हैं कि ज्ञानी जो होता है वो तत्वदर्शी होता है। अच्छा, तत्वदर्शन आप किताबों से पढ़ के भी कर सकते हैं लेकिन वो ज्ञान नहीं है, क्योंकि आपने उसको व्यवहारिक रूप से अंगीकार नहीं किया, आपका जीवन उस ज्ञान से स्वयं प्रकाशित नहीं हो पाया। तो फिर आप दूसरों के प्रकाश की वजह कभी नहीं बन सकते। और यही एक वजह है भी कि आप देखते होंगे कि अच्छी बातें तो बहुत की जा रही हैं लेकिन अच्छी बातों से अच्छे लोगों का निर्माण नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अच्छी बातों से सबसे पहले आपके व्यक्तित्व में परिवर्तन आना है, आपके व्यवहार में परिवर्तन आना चाहिए। और आपका व्यवहार अगर परिवर्तित होगा तो व्यवहार लोगों के आकर्षण का कारण बनेगा, चुंबकीय प्रभाव रखेगा। कहते हैं ना आप लोग कि उसके व्यक्तित्व में एक चुंबकीय प्रभाव
1: जी,
0: है।
1: जी, जी,
0: उसके सानिध्य में आने के बाद हिंसा करने की प्रवृत्ति ही नहीं हो सकती
1: जी,
0: आपके अंदर।
1: हाँ।
0: तो वो उसका जीवन व्यवहार है, वो जीवन मुक्त की स्थिति है।
1: अच्छा, एक बात मेरे मन में है शशिकांत जी,
0: जी
1: कि विश्वामित्र जो हैं
0: जी
1: वो आते हैं राजा दशरथ के पास,
0: ठीक है,
1: और श्री राम को मांगते हैं जब श्री राम की ये स्थिति है
0: जी।
1: तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि विश्वामित्र स्वयं सक्षम थे फिर भी उन्होंने अपनी रक्षा के लिए
0: जी
1: श्री राम को क्यों मांगा?
0: उन्होंने रक्षा के लिए राम को इसलिए मांगा कि वो पूरा श्रेय जो है राम को देना चाहते थे।
1: अच्छा।
0: हाँ, बहुत सारा जो उन्होंने तप करके अस्त्र इकट्ठे किए थे, शस्त्र इकट्ठे किए थे, चूंकि उसके पात्र राम थे, कहते ना कि शक्ति हमेशा पात्र के पास होनी चाहिए, सुपात्र के पास होनी चाहिए। तो उनको ये पता चल गया। अब सोचिए दशरथ जी कह रहे हैं कि आप चिंता मत करिए, हम पूरी अपनी सेना लेकर के हम आपकी रक्षा करेंगे, राम अभी खुद ही कृश हो गए हैं,
1: हाँ,
0: बीमार हैं, उम्र कितनी है,
1: हाँ,
0: आप इनको क्यों ले जा रहे हैं?
1: जी, जी,
0: और दशरथ जी का राम में बहुत आसक्ति थी, कहते हैं चारों पुत्र तो मेरे पास हैं लेकिन ये जो राम है ये सबसे अधिक प्रिय मुझे है, क्योंकि राम जी का व्यक्तित्व ऐसा था कि वो सहज ही आकर्षित कर लेता था। तो ऐसे में दशरथ जी के अंदर भी वैराग्य हो राम को त्याग करके, बाकी पुत्रों को मांगते तो शायद दशरथ जी को देने में उतनी खलल नहीं होती जितना राम जी को लेके हुआ। तो ये वैराग्य प्रकरण पूरी तरह से वैराग्य की ही झांकी प्रस्तुत कर रहा है कि दशरथ जी का जो राम जी में आसक्ति है उस आसक्ति से भी मुक्त किया जाए।
1: दशरथ जी की आसक्ति का जिक्र वहां भी आता है जब भगवान श्री राम रावण का वध कर देते हैं
0: जी,
1: और सारे देवी देवता आ जाते हैं, इसमें दशरथ भी आते हैं, लेकिन उनका मोह उस वक्त भी है श्री राम से।
0: हाँ,
1: हाँ, ये हाँ, अद्भुत बात
0: बिल्कुल
1: है।
0: अब एक बात देखिए, वो कहते हैं दशरथ जी से कि हे पृथ्वी नाथ, वो पृथ्वी के नाथ हैं।
1: अच्छा।
0: और ये जो कहते हैं निशाचर, कहते हैं कि मैं इनको अपने शोक से साप देना नहीं चाहता। अब देखिए कितनी सुंदर बात है, अगर मैं साप दूं तो ये भस्म हो जाए, लेकिन शाप देना मैं नहीं चाहता, क्योंकि शाप दे करके मैं भी अपनी स्थिति से गिर जाऊंगा, क्योंकि हम तो जीवन मुक्त की स्थिति में राम को विकसित करना चाहते हैं।
1: जी, जी, जी।
0: तो ऐसे मैं नहीं देना चाहता, और आपके प्रसाद से यज्ञ को निर्विघ्न रूप से मैं चाहता हूं कर सकूं, जिससे जो संकट है मेरा संकट क्या, वो जगत का संकट है। अच्छा एक बात और भी देखिए, यज्ञ का विध्वंस राक्षस करते हैं
1: जी,
0: है ना
1: जी।
0: तो इसका अर्थ ये हुआ कि जब भी प्रकृति में कोई विध्वंसकारी सत्ता उत्पन्न हो तो वो प्रवृत्ति ही राक्षसी है, और उसकी रक्षा के लिए हमेशा जो ऋषि हैं या जो जीवन मुक्त लोग हैं या जिनको ये इन शास्त्रों का श्रवण चिंतन है वो उसकी चिंता करते हैं और फिर वो उसको सुरक्षित करते हैं, जगत की रक्षा करते हैं। तो राम जी को वो सबसे योग्य पाते थे और उनके पास जो अर्जित तमाम शक्ति था वो राम जी को देना चाहते थे, क्योंकि राम जी के पास वो शक्ति सुशोभित होती, बाकी लोगों के पास वही शक्तियां चली जाएं तो निश्चित वो विनाश का कारण बनेंगी। और इसका वर्तमान समय में अभी जब हम बात कर रहे हैं तो वैश्विक दुनिया जिस तरफ बढ़ रही है, आप देखिए,
1: मैं कह नहीं जा रही थी कि जो युद्ध की जो स्थितियां दिखाई देती हैं रह रहकर, वो एक राक्षसी प्रवृत्ति ही तो है, प्रवृत्ति है।
0: तो ऐसे में देखें तो ये क्या, एक तरह से ये जो प्रवृत्ति है ये आसुरी प्रवृत्ति है, और इस प्रवृत्ति को दैवी प्रवृत्ति यानी अहिंसा सत्य और इसी के द्वारा इसको रोका जा सकता
1: रोका
0: है,
1: जा सकता जी, है जी,
0: तो वो वशिष्ठ जी कहते हैं कि राम को आप इन्हें दीजिए, चिंता मत करिए, ये बहुत शक्ति संपन्न है, ऐसे इनके पास ऐसे ऐसे शक्ति हैं जो शायद ही कोई अर्जित कर पाए जो विश्वामित्र के पास है
1: जी, जी,
0: और वो स्वयं सक्षम है उन राक्षसों का वध करने में, लेकिन राम जी को अपनी वो शक्तियां देना चाहते हैं क्योंकि राम उसके पात्र हैं, इसलिए आप राम की चिंता मत करिए
1: जी। तो उसका अंतर्निहित जो एक रहस्य है वो ये है कि राम की पात्रता है, इसलिए विश्वामित्र उनको मांगने के लिए आए हैं जी जी। तो बहुत ही सुंदर तरीके से आपने हमारे श्रोताओं के समक्ष इस चर्चा को रखा, और अब मैं चाहती हूँ कि चूंकि समय हो रहा है तो भगवान श्री राम के वैराग्य की बिंदु पर हम पहुंचे हैं, तो यहीं से अगले अंक में हम चर्चा शुरू करेंगे। आज आप हमारे बीच उपस्थित हुए, आपका हृदय से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद,
0: नमस्कार।
1: तो श्रोताओं, योग संवाद कार्यक्रम में आज हमने जीवन मुक्त के स्वरूप पर चर्चा की। उम्मीद है आज का ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। चलते चलते आपको हम बता दें कि विशेषज्ञ के तौर पर इस कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित थे योग अध्यात्म और जीवन विज्ञान विशेषज्ञ डॉक्टर शशिकांत मणि त्रिपाठी, मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा का था, परिकल्पना अदिति गौड़ की, ध्वनियांकन अमित कुंदानी का, समन्वय सहयोग सतीश बाथम का, और आपसे बातचीत कर रही थी मैं सुनीता सिंह। बहुत जल्द अगले अंक में फिर आपसे भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दें, नमस्कार। आप सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम योग संवाद, जानकारी दे रहे थे डॉक्टर शशिकांत त्रिपाठी और इनसे बातचीत कर रही थी सुनीता सिंह। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर सुनते रहें रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर यह रेडियो आजाद हिंद है। अब समय है विशेष कार्यक्रम का। इस कार्यक्रम में आज हम अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस पर डॉक्टर लता मुंशी से भगवती सक्सेना की बातचीत आपको सुनवा रहे हैं।
1: नमस्कार श्रोताओं, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद से प्रसारित किए जा रहे कार्यक्रम। स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम में। श्रोताओं, सौंदर्य, कल्पना और सृजनात्मकता की अभिव्यक्ति है हमारी ललित कलाएं, जिन्हें चुनकर, जिनमें रमकर हमारे अंतस को शांति मिलती है और कहीं न कहीं इस सुंदर जीवन को भी हम अनुभूत करते हैं। ललित कलाएं केवल व्यवहारिक उपयोग के लिए ही नहीं बल्कि कलात्मक आनंद के लिए होती हैं। इन्हीं ललित कलाओं में संगीत, मूर्तिकला, चित्रकला, वास्तुकला और साहित्य जैसी प्रमुख विधाएं हैं। इनमें भी सर्वश्रेष्ठ ललित कला है संगीत। गीतम वाद्यम तथा नृत्यम त्रयम् संगीत मुच्चयते, अर्थात गीत, वाद्य और नृत्य के समवेत रूप को हम संगीत कहते हैं। श्रोताओं, जहाँ गायन वादन हमारे अंतस में उतर कर हमें ब्रह्मानंद की अनुभूति कराता है, वहीं नृत्य भी दर्शकों को आनंदित करने और भावनात्मक प्रभाव छोड़ने की अनुपम विधा है। और हम आपको बताना चाहेंगे कि 29 अप्रैल को हर साल अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है, तो आज के दिन हम भी थिरकने को तैयार हैं, अपने मन को उल्लासित, आह्लादित करने को तैयार हैं। आज के दिन को मनाने के पीछे का सांस्कृतिक और शैक्षिक महत्व जानेंगे हमारी आज की अतिथि से, सुप्रसिद्ध भरतनाट्यम नृत्यांगना और नृत्य गुरु डॉक्टर लता मुंशी से। हमारे साथ आज उपस्थित हैं डॉक्टर लता मुंशी हमारे स्टूडियो में। लता जी, आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार।
2: नमस्कार।
1: सबसे पहला प्रश्न हम आपसे यही करना चाहेंगे कि आज हम अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मना रहे हैं, तो इसे क्यों मना रहे हैं? यूं तो गायन वादन नृत्य से हम सभी आम तौर पर परिचित होते हैं, लेकिन इस दिवस को मनाने के पीछे क्या महत्व है आज के दिन का?
2: सच कहूं तो आज हम लोग इस परंपरा को हम लोग मनाते हैं कि नृत्य दिवस के रूप में 29 अप्रैल को, लेकिन अगर सच कहूं जो पारंपरिक बात होती है, जो वेदों की बात होती है, पुराणों की बात होती है, तो नृत्य हमारे जीवन में आदिकाल से चला आ रहा है
1: जी।
2: और बिना नृत्य के मुझे लगता है जीवन की कल्पना करना भी असंभव है। और हम लोगों ने अपने शास्त्रों में यही पढ़ा है, ग्रंथों में, कि हमारे आदि गुरु, नृत्य गुरु भगवान शिव, हमारे नृत्यों का जन्म उनसे ही माना जाता है
1: जी।
2: नटराज से ही हम लोग नृत्य का जन्म मानते हैं। और अब अगर मैं ये कहूँ कि उनके जन्म के बारे में, तो वो तो स्वयंभू हैं, तो निश्चित रूप से जो नृत्य है वो आदि काल से चला आ रहा है। और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि नृत्य तो हर दिन होना चाहिए, मतलब हर दिन नृत्य दिवस होना चाहिए
1: जी, जी।
2: लेकिन फिर भी लगभग 1982 से शुरू हुआ है और 29 अप्रैल को नृत्य दिवस के रूप में मनाया जाना शुरू हो गया है। और इसकी वजह यह है कि एक प्रसिद्ध फ्रांसीसी नर्तक जीन जॉर्जेस नोवेर का जन्मदिन इसी दिन हुआ था, 29 अप्रैल को, तो उन्हीं के नाम पर, उन्हीं की याद में, उन्हीं के वजह से ये नृत्य दिवस के रूप में हम इस दिन को मनाने लगे हैं
1: जी जी।
2: 29 अप्रैल का जो इतिहास है वो ये है।
1: अच्छा, वास्तव में हमारी कलाएं हमारी संस्कृति को परिलक्षित करती हैं। कला सभी धर्मों का सम्मान करना भी सिखाती है। कहते हैं ना कि कला का कोई धर्म नहीं होता, कला सबकी होती है और सब कला के होते हैं, सबके अंदर कला विद्यमान होती है, हमें एकजुट करती है। तो इस विचार पर आप क्या कहना चाहेंगी?
2: निश्चित रूप से कला एक बहुत ही सुंदर कार्य है और उसका कोई धर्म, कोई जाति, कोई अलग से वर्ग भेद नहीं है। तो मुझे लगता है कि कला में बहुत सारी कलाएं हैं, क्योंकि मैं नृत्य कला से जुड़ी हुई हूँ। मैं अपनी कला के बारे में जो बात करूँगी कि एक बहुत ही आनंद देने वाला विषय है ये, और सच कहूँ तो अध्यात्म से बहुत ज़्यादा गहरा जुड़ा होने से की वजह से इस कला के माध्यम से हम बहुत सारी चीज़ों को, जीवन के जो बहुत महत्वपूर्ण पहलू हैं, जो हम शायद वैसे ग्रंथों में, वेदों में, पुराणों में उतना गूढ़ रहस्य के साथ समझना हमारे लिए, आम जनता के लिए मुश्किल हो सकता है, वो सभी बातें हम इस नृत्य कला के माध्यम से बहुत आसानी से समझ और सीख जाते हैं। तो ये जो कलाएं हैं, ये हमारी जो परंपरा है, जो हमारे संस्कार हैं, उनको भी बहुत हद तक आज की पीढ़ी तक लाने का जो श्रेय है इन कलाओं को है।
1: मैम, नृत्य करना अपने आप में आनंद का विषय तो है ही, ये कला कौशल भी है, तो नृत्य कला को आप कैसे परिभाषित करेंगी?
2: अगर मैं नृत्य को परिभाषित करूं तो वो सीधे सीधे शब्दों में कि आनंद की चरम सीमा ही नृत्य है।
1: जी,
2: जब आनंद ही नृत्य है, उसकी चरम सीमा आनंद होता है।
1: जी,
2: तो मुझे लगा वही नृत्य है, तो सोच लीजिए कि नृत्य से कितना आनंद प्राप्त होता होगा।
1: क्या बात है।
2: क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि हर व्यक्ति जो इस संसार में आया है, स्त्री हो, पुरुष हो, बूढ़ा हो, जवान हो, बच्चा हो, सब कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, किसी ना किसी रूप में नृत्य जरूर करते हैं।
1: बिल्कुल।
2: और अगर मैं उसको इस तरह से परिभाषित करूं कि जब हम जन्म लेते हैं, जब एक शिशु दुनिया में आता है, माँ के गर्भ से जब बाहर आता है, तो वहीं से उसका नृत्य का जीवन शुरू हो जाता है।
1: बिल्कुल।
2: और उसको मैंने इस तरह से समझा है कि जब शिशु जन्म लेता है तो जो सबसे पहला उसका मूवमेंट होता है या उसके जो हलचल होती है उस बालक की, वो हाथ पैर हिलाता है जन्म लेने के बाद। और हमारे शास्त्रों में नृत्य की जो विधा है उसको हम लोग अभिनय के चार भेदों में बांटते हैं।
1: जी।
2: तो पहला अभिनय होता है आंगिक अभिनय।
1: बिल्कुल।
2: तो दूसरा होता है वाचिक अभिनय, तीसरा आहार्य अभिनय, और चौथा होता है सात्विक अभिनय। तो उसको उस तरह से अगर आप समझें कि जब शिशु जन्म लेता है तो सबसे पहले जो उसके हाथ पैर चलते हैं, हिलते हैं, वही उसका आंगिक अभिनय होता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
2: और निश्चित रूप से उसके बाद जो सेकंड स्टेप होता है, उसमें डॉक्टर सबसे पहले ये चेक करते हैं कि बच्चा रोया कि नहीं, क्योंकि जब तक बच्चे के गले से कोई आवाज ना निकले, बच्चा स्वस्थ है ऐसा डॉक्टर नहीं मानते। ये साइंस है
1: जी।
2: वो सबसे पहले बच्चा पैदा होते से उसको किसी तरह से भी उसकी आवाज गले से निकले, इसके लिए कोशिश करते हैं। कुछ बच्चे नॉर्मली रोने लग जाते हैं और कुछ बच्चे नहीं भी रोते हैं, जिन्हें खूब कोशिश करके रुलाया जाता है। तो जो आवाज गले से जो साउंड निकलता है वही वाची का अभिनय है, और वो पैदा होते से बच्चे के जन्म के साथ जुड़ जाता है। उसके बाद जब बच्चा रो लेता है तो ये मान लिया जाता है बच्चा स्वस्थ है, और उसको फौरन नहला धुलाकर एक साफ सुंदर कपड़े में फौरन लपेटते हैं।
1: जी जी।
2: क्योंकि गर्भ से बच्चा जब बाहर आता है तो दोनों के तापमान में जो फर्क होता है, उसको संभालने के लिए या उसको बर्दाश्त करने के लिए उसी तरह का माहौल गर्म किया जाता है, एकदम खुले में नहीं रखते। तो मुझे लगता है कि जो पहला वस्त्र उसको लपेटा जाता है वही उसका आहार्य अभिनय होता है।
1: जी।
2: क्योंकि आहार्य अभिनय का अर्थ ही यही है कि हम जो सजावट करते हैं, जो वस्त्र आभूषण पहनते हैं, वो आहार्य अभिनय है। तो उसका तीसरा स्टेप वहाँ आ जाता है।
1: बिल्कुल।
2: और चौथा जो अभिनय है, सात्विक अभिनय, वो बहुत ही समझ के बाद डेवलप होता है। और सात्विक अभिनय अभिनयों में भी सबसे कठिन होता है, क्योंकि उसमें समझ के, आप जब उसको समझ लेते हो किसी बात को, तब वो अभिनय या वो भाव उत्पन्न होता है जिसको हम सात्विक कहते हैं। तो वो बच्चे को थोड़ा सा समझना होता है, उसके बाद वो भाव या अभिनय वो आता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि हर व्यक्ति के साथ में नृत्य जन्म से ही जुड़ जाता है और वो मृत्यु तक, अंत तक रहता है। क्योंकि जीवन में ऐसे कई पड़ाव आते हैं, आज बहुत अच्छा रिजल्ट आया तो, आज घर में नया सामान आया है तो, नया घर लिया है तो, ऐसे कई सारे क्षण आते हैं जीवन में जब हम अधिक खुश होते हैं, बहुत ज़्यादा।
1: जी जी।
2: कोई भी माँ बाप बेटे बेटी की शादी में बहुत खुश होते हैं, बच्चों के जन्म में बहुत खुश होते हैं, और वो खुशी या वो आनंद प्रकट करने के लिए हम सब नृत्य करते हैं। वो कैसा भी नृत्य हो, कुछ भी हो, जरूरी नहीं कि वो कोई शास्त्रीय विधा हो।
1: जी जी।
2: पर वो जो दिल से जो आनंद निकलता है वो होता है, और वही नृत्य है।
1: बहुत ही सुंदर व्याख्या आपने की है मैम। और यूं तो हम देखें अपने आसपास तो हमारी प्रकृति ही नृत्य कर रही है, फूलों का हंसना, चिड़ियों का चहचहाना, नदियों की कलकल एक कहीं ना कहीं नृत्य का ही हिस्सा है, जो अपनी प्रसन्नता इस तरीके से प्रकृति व्यक्त करती है। अच्छा, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे भारतीय शास्त्रीय संगीत की हम बात करते हैं तो उसमें अलग अलग रागों को गा करके मानसिक चिकित्सा की जाती है और बड़े बड़े असाध्य रोगों पर आजकल काम किया जा रहा है और उसका परिणाम भी एक सकारात्मक हमें मिल रहा है। नृत्य की अगर हम बात करें तो नृत्य में भी अलग अलग मुद्राएं नृत्य के दौरान की जाती हैं, अलग अलग चेहरे की भाव भंगिमाएं होती हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर देखें तो नृत्य करने के क्या क्या स्वास्थ्य लाभ हो सकते हैं, जैसे संगीत जो है हमारा सीधा मन पर असर डालता है और नृत्य जो है वो सीधे तौर पर शरीर पर असर डालता है।
2: बहुत सुंदर सवाल किया है बेटा आपने, और सच कहूँ तो बहुत साइंटिफिकली
1: जी,
2: सिर्फ अध्यात्म और फिलोसफी की बात नहीं करूँगी, साइंटिफिकली जो बात है वो मैं करूँगी, क्योंकि मुझे लगता है आज की जनरेशन हर चीज़ को एकदम लॉजिकली समझना चाहती है। तो डांस का जो सबसे पहला स्टेप होता है वो आपका होता है पद संचालन
1: जी,
2: और जब पद संचालन हम करते हैं तो ये आज के समय में सभी लोग जानते हैं कि हमारे बॉडी में कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिसको हम प्रेशर पॉइंट्स की तरह से आजकल एक पूरी मतलब चिकित्सा प्रणाली विकसित हो चुकी है
1: जी,
2: जिसमें प्रेशर पॉइंट्स पे एक्यूप्रेशर और एक्यूपंचर दो तरह से उसका इलाज या उससे स्वास्थ्य लाभ दिया जाता है। तो चूंकि वो विधा जो डॉक्टर की करते हैं वो बिल्कुल अलग है, लेकिन वही बात मैं कहूंगी कि एक्यूप्रेशर जो है हमारे पैर के पंजों में हमारे शरीर के बहुत सारे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स के पॉइंट्स हैं। तो जब हम पैर जोर से जमीन पर मारते हैं तो वो सारे पॉइंट्स जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं,
1: बिल्कुल,
2: और जब वो पॉइंट्स पर प्रेशर पड़ता है तो उस पॉइंट्स का शरीर के विभिन्न अंगों पर जो उस जहाँ से वो कनेक्टेड होते हैं उस पर उसका इफेक्ट जाता है। तो अगर मैं कहूँ कि आपके डाइजेशन सिस्टम को, आपके हार्ट को, आपके लंग्स को, आपके ब्रेन को, और सच कहूँ तो आपकी स्किन और आपके बाल, आपकी आँखें, हर अंग उससे प्रभावित होता है, और प्रभावित से मेरा मतलब है हेल्दी होता है वो
1: जी,
2: एक
1: जी।
2: हेल्थ आपकी अच्छी इम्प्रूव होती है। दूसरा एक जो बहुत सीधा सीधा सा जो कारण है वो मैं आपको बताऊंगी, जब हम डांस करते हैं तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन बहुत फास्ट हो जाता है, हार्ट बीट बहुत बढ़ जाती है, और मुझे लगता है कि शरीर के हर पार्ट्स को अच्छी तरह से काम करने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है उसका ब्लड सप्लाई,
1: बिल्कुल,
2: क्योंकि थ्रू ब्लड वो हर पार्ट्स पे जाके वो जब पहुंचता है तो वो अंग आपका बहुत प्रॉपर वे में बहुत स्ट्रांगली वर्क करने लगता है। जैसे ब्रेन की बात करूं तो मैं मोस्टली आजकल के जितना भी वर्किंग स्टाइल है वो सब बैठ के की जाती है, कई कई बार तो घंटों बैठते हैं,
1: बिल्कुल,
2: तो मुझे लगता है ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे ये होता है कि ब्लड सप्लाई जो आपका है वो ब्रेन तक प्रॉपरली नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि पूरा जो प्रेशर है वो नीचे की तरफ हो जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि डांस तो खैर बहुत इफेक्ट करता है, क्योंकि डांस करते समय या डांस के बाद इतना फ्रेश फील होता है, और वो फ्रेशनेस या जो रिलैक्सेशन फील होता है वो सिर्फ इसलिए क्योंकि ब्लड जो हमारे पूरे शरीर में मूव करता है फोर्सफुली, तो हमारे पूरे शरीर के अंग जो हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं या प्रॉपरली वर्क करने लगते हैं, जिसका बहुत गहरा असर हमारे पूरे स्वास्थ्य पर पड़ता है,
1: बिल्कुल।
2: और अगर मुझे लगता है इस तरह का वर्किंग है आपका, वर्किंग नेचर अगर बैठने का है या पढ़ाई के लिए भी, तो मैं आज के जनरेशन को यही बोलूंगी कि आप पढ़िए, आप काम कीजिए, लेकिन हर एक घंटे के बाद आप प्लीज उठ जाइए और समथिंग, कुछ भी, कुछ नहीं तो आप अपनी जहां आप बैठे हो, जहां आप खड़े हो, आप सिर्फ अपने पैरों को उठा के जोर जोर से जमीन पर मारिए, उससे आपका जो ये जो प्रॉब्लम है ये काफी हद तक ठीक होगी, आपका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा और आपका हेल्थ अच्छी रहेगी। और एक और बात मैं जो डांस सिर्फ डांस में होती है जो, क्योंकि हो सकता है कुछ लोग कहें कि ये जो आप बातें बता रहे हो वो हम योगा में भी प्राप्त कर लेते हैं
1: जी, जी।
2: या हम जिम एक्सरसाइज में प्राप्त कर लेते हैं या और भी जो थेरेपीज हैं या अलग तरह की चीज़ें हैं उससे हम ले सकते हैं हेल्थ के लिए, स्वस्थ रहने के लिए, लेकिन डांस फिजिकल एक्सरसाइज के साथ साथ मेंटल एक्सरसाइज भी है, और वो मेंटल और फिजिकल एक ही टाइम पर, एक ही समय पे, मूमेंट पे एक साथ होती है
1: जी,
2: जो किसी और एक्सरसाइज में नहीं होती, क्योंकि डांस जो है वो तालों से बंधा है, ताल में बंधा रहता है, लय में बंधा है। तो जब हम डांस करते हैं तो हमें डांस करते करते ही इस बात का ध्यान रखना होता है कि हमारा कितने ताल का बीट्स है।
3: बिल्कुल,
2: 8 मात्रे का है, 16 मात्रे का है, 6 मात्रे का है, जैसा एक मीटर होता है वो हमको ध्यान रखना है। अगर वो ध्यान मैंने नहीं रखा किसी भी डांसर ने तो वो सम छोड़ देगा।
3: बिल्कुल,
2: और सम छोड़ देगा तो उसका जो डांस है वो बेअसर हो जाएगा या खराब हो जाएगा।
3: जी जी, जी।
2: इसके साथ साथ एक एक सेकंड्स में हमारी पोजीशन शरीर की बदलती है। जैसे एक सेकंड पहले मैं खड़ी हूँ और एक सेकंड के बाद मुझे जंप करके साइड में जाना है।
3: जी।
2: अगर मैं मेंटली अलर्ट नहीं हूँ, अवेयर नहीं हूँ, तो मैं जंप करके साइड में नहीं जा सकती।
3: बिल्कुल,
2: क्योंकि सब कुछ यहाँ से होता है, माइंड से, ब्रेन से, दिमाग से।
3: जी जी।
2: मुझे पहले से मेरे ब्रेन को ये मैसेज देना होता है कि वो मेरे बॉडी को साइड में जंप करके वहां ले जाएगा। तो उस समय जो ब्रेन है, शरीर के साथ साथ ब्रेन बहुत एक्टिव रहता है और मुझे कब बैठना है, कब जंप करना है, कब मुझे साइड में जाना है, एवरी, क्योंकि डांस में एक एक सेकंड में पोजीशन आपकी बदलती है।
3: बिल्कुल,
2: सेकंड मतलब मैं बोल रही हूँ तो उसमें वहाँ कहाँ इतना टाइम रहता है कि आप सोच के इसको करोगे।
3: सही बात है,
2: वो तो इमीडिएटली इफेक्ट होना है।
3: बिल्कुल बिल्कुल।
2: अब ये सब होने के बाद में ये सब चलता रहता है, पूरी तरह से एक्टिवेट रहता है ब्रेन एंड बॉडी। तीसरा जो और एक चीज हमको ध्यान रखनी होती है, मैं क्या प्रस्तुत कर रही हूँ, मतलब नृत्यांगना क्या दिखा रही है
3: जी,
2: उसका भाव क्या है, उसका अभिनय क्या है, उसका सब्जेक्ट क्या है, वो भी, क्योंकि हर भाव का रस भाव अलग होता है।
3: बिल्कुल।
2: मैं किस भाव में हूँ, किस रस को प्रदर्शित कर रही हूँ, उस रस के अनुसार मेरी भाव भंगिमाएं, मेरे अभिनय निकल रहा है कि नहीं, वो कैसे होगा, वो पहले मुझे मन पर, वो जो सात्विक अभिनय की बात मैं करती हूँ ये वो है, पहले मुझे उस भाव को, उस रस को हृदय में समझना होगा।
3: बिल्कुल,
2: मतलब पहले समझ के हृदय में महसूस करना होगा। जब मैं महसूस कर लूंगी तभी मैं वो भाव प्रदर्शित कर पाऊंगी। खासतौर से जैसे करुण रस अगर मैं दिखाती हूँ, अगर मेरे हृदय में वो भाव नहीं समझा या नहीं आया, वो फीलिंग नहीं आई, तो मेरे चेहरे पे असली करुण रस नहीं आएगा।
3: बिल्कुल।
2: जब मैं महसूस करूंगी तब वो असली करुण रस निकल जाएगा मेरी आंखों से, मेरे चेहरे से, और वही सच्ची रसानुभूति होगी।
3: बिल्कुल।
2: और जब रसानुभूति होगी तब उसी रसानुभूति में दर्शक भी भाव विभोर होगा, अन्यथा नहीं होगा।
3: बिल्कुल, क्या बात है, बहुत गहरी बात आपने हमें बताई, नृत्य में कितना कुछ छुपा है। अच्छा मैम, आपसे ये जानना चाहेंगे कि हमारे भारत में नृत्य विधा की अलग अलग शैलियां हैं, हमारी जम्मू तवी से कन्याकुमारी तक देखें हम, उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम की ओर अगर हम देखें तो अलग अलग नृत्यों के रूप हमें दिखते हैं, कथक है, भरतनाट्यम है, या अगर हम मुंबई चलें तो फिल्म संगीत जो आम जन में बड़ा रचा बसा है और लोग थिरकते हैं, ये तीनों अलग हैं, इनकी प्रस्तुतियाँ मुद्राएँ अलग हैं, इन तीनों को आप कैसे समझाना चाहेंगे?
2: वैसे तो सच कहूँ तो जो शास्त्रीय नृत्य है
3: जी
2: वो शैलियाँ अलग अलग हैं, लेकिन उनका जो बोलना चाहिए मुझे, उसका जो मूल है
3: जी
2: वो सब एक है। क्योंकि जैसे मैंने बात की कि नृत्य जो है वो ताल और लय पर आधारित है, तो सभी शास्त्रीय नृत्य जो हैं वो ताल और लय पर आधारित हैं। और सच कहूँ तो ये जो शैलियाँ बनी हैं ये प्रांत हमारे जो देश में अलग अलग कल्चर है, जैसे मध्य प्रदेश का अपना एक कल्चर है
3: जी,
2: तो उत्तर प्रदेश का अपना एक अलग कल्चर है, मणिपुर का अलग कल्चर है, राजस्थान का अलग है, और उसी तरह से साउथ के भी सब अलग अलग हैं
3: जी।
2: तो जहाँ तक मैंने इस कला को समझा है, नृत्य तो नृत्य है
3: जी,
2: सिर्फ चूंकि वो जो तमिलनाडु में हो रहा है और वहाँ की जो सांस्कृतिक परंपरा है
3: जी,
2: उसके अकॉर्डिंग, उसके अनुसार उस नृत्य का पूरा ढांचा बना है। तो चूंकि चेन्नई में लोग तमिल बोलते हैं
3: जी,
2: उनका खान पान अलग है, उनका वेशभूषा रहन सहन का तरीका अलग है
3: जी,
2: तो वो पूरा असर आपको भरतनाट्यम नृत्य शैली में दिखता है। वही बात मैं अगर मोहिनीअट्टम की करूं, मोहिनीअट्टम केरल का डांस है
3: जी,
2: कहने को दोनों साउथ के प्रांत है, वो केरल है, वो तमिलनाडु, लेकिन मोहिनीअट्टम जो कि केरल का है, तो मोहिनीअट्टम में केरल की जो सांस्कृतिक विरासत है या जो परंपराएं हैं वो पूरी परिलक्षित होती हैं। तो मेरा ऐसा सोचना है कि हर प्रांत में उस नृत्य शैली का भरपूर असर है, इसीलिए शायद ये नृत्य शैलियाँ बनी हैं, जो उड़ीसा में डेवलप हुई, जो वहाँ जन्मी और विकसित हुई वो ओडिसी नृत्य शैली हो गई, जो तमिलनाडु में जन्मी वहाँ परिपक्व हुई तो वो भरतनाट्यम बन गई, केरल में मोहिनीअट्टम कथकली के नाम से प्रसिद्ध हो गई, और नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत में, चूंकि जिस तरह से काम होता रहा या अपने यहाँ की जो सांस्कृतिक विरासत थी उसके अनुसार वो कथक के रूप में विकसित हुई है।
3: बिल्कुल।
2: तो सभी नृत्य शैलियों में मुद्राएं, मुद्राओं का प्रयोग उसी तरह से होता है, ताल का प्रयोग उसी तरह से होता है, लय का प्रयोग उसी तरह से होता है। इसको अगर मैं बहुत अच्छे ढंग से समझा सकती हूँ तो मैं ये बोलूंगी, जैसे नमक, मिर्ची, हल्दी, धनिया, मसाले हम लोग खाने में उपयोग करते हैं, हर प्रांत में यही मसाले उपयोग करते हैं, लेकिन उनको उपयोग करने का तरीका अलग होता है, तो उनकी डिश अलग बनती है, हमारी डिश अलग बनती है। यही एक तरीका है, हम उन मुद्राओं को किस तरह से उपयोग करते हैं, वो उन मुद्राओं को किस तरह से उपयोग करते हैं, उससे वो अलग अलग शैलियाँ बन गई और विकसित होती गई। तीसरा, आपकी एक बात थी बॉलीवुड वाला, तो बॉलीवुड का मुझे कोई शास्त्र या कोई शास्त्रीयता नजर नहीं आती है वहाँ पर। पहले की अगर मैं बात करूँ, आज से मतलब 70 के या 80 के दशक की बात करती हूँ, तो नृत्य बहुत सुंदर था, बहुत खूबसूरत था, उसमें बहुत सारे फिल्म का नृत्य की बात कर रही हूँ मैं, बॉलीवुड की
3: झलकती थी, कहीं
2: शास्त्रीयता झलकती थी, सौम्यता झलकती थी, सुंदरता झलकती थी।
3: जी जी।
2: और मुझे लगता है कि अगर सुंदरता, सौम्यता और शास्त्रीयता नहीं दिख रही है तो वो नृत्य तो हम मैं नहीं कह सकती, क्योंकि सौंदर्य का होना, लेकिन वो सौंदर्य किस तरीके से आप दिखा रहे हो बहुत जरूरी है।
3: जी जी।
2: तो उन नृत्यों में बहुत सुंदरता थी, बहुत कलात्मकता थी, बहुत रचनात्मकता थी, जो कलाओं के लिए बहुत जरूरी है।
3: जी।
2: और ऐसा बहुत सुंदर सारे बॉलीवुड के संगीत और नृत्य दोनों हुए हैं।
3: बिल्कुल।
2: लेकिन अगर मैं इधर बात करती हूँ कि 90 के बाद से जो समय आया, धीरे धीरे परिवर्तन हुआ, होते होते होते आज जिस जगह पे हम जाके खड़े हैं, मैं आज की बात करती हूँ, तो नृत्य को लेकर कहूँगी बहुत खराब, मतलब शायद ये नृत्य के विनाश की चरम सीमा होनी चाहिए, क्योंकि आज का जो नृत्य मैं देखती हूँ तो कई बार मैं ये सोच में पड़ जाती हूँ कि क्या सचमुच ये नृत्य ही है, इसी को नृत्य कहते हैं, नृत्य की जो परिभाषा विद्वानों ने रची बसी है, बचाई है, वो परिभाषा यहाँ कहाँ है, कहाँ दिख रही है।
3: और कहीं ना कहीं मैम कि हम ये भी कह सकते हैं कि आध्यात्मिक पक्ष से हम हट रहे हैं,
2: सिर्फ आध्यात्मिक नहीं, सांस्कृतिक पक्ष,
3: सांस्कृतिक
2: हमारी
3: पक्ष
2: जो परंपरा है, जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है, हम सभी चीजों से दूर होते जा रहे हैं। और एक अजीब सा बोलना चाहिए कि एक प्रतियोगिता सी है कि मैं ऐसा क्या कर दूं कि सबका ध्यान मेरी तरफ अट्रैक्ट हो, एक आकर्षण का केंद्र बनने के लिए कई बार जो आज की युवा पीढ़ी है वो सब कुछ छोड़ के, सब कुछ भूल कर कुछ भी करने के लिए तैयार है, क्योंकि उसको सेंटर ऑफ द अट्रैक्शन बनना है, पॉपुलर होना है। ये एक जुनून की तरह आज के समय में दिमाग पे चढ़ा हुआ है, खासतौर से जो मोबाइल पे जो मैं डांस आते हैं और जो लोग मुझे अच्छा ये लगता है कि सब डांस कर रहे हैं, लेकिन कैसा डांस कर रहे हैं वो तो मैं कभी कभी बहुत डर जाती हूँ। हे ईश्वर, इस डांस को ऐसा भी देखना पड़ेगा, ये मैंने कभी नहीं सोचा था।
3: मैम, आपने जैसे युवा वर्ग की बात की, आज के जो चलन में नृत्य चल रहा है, किसी भी कला को सीखते समय धैर्य, अनुशासन और निरंतरता बेहद जरूरी है। आजकल का जो युवा वर्ग है उसे आप क्या सीख देना चाहेंगी?
2: सीख क्या बोलूं बेटा, मैं तो एक ही बात कहूंगी आज की पूरी युवा पीढ़ी से
3: जी,
2: कि प्रतिभा की कतई कमी नहीं है। पीढ़ी दर पीढ़ी आज की जो जनरेशन है वो अत्यधिक प्रतिभावान है
3: जी।
2: मतलब इतना कभी कभी देख के हम दंग रह जाते हैं, चकित रह जाते हैं, छोटे छोटे बच्चों में जिस तरह की प्रतिभाएं दिखती हैं तो हमारी कल्पना से विपरीत हैं वो
3: जी जी।
2: लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है जो उन्हें सर्वोच्च शिखर तक पहुंचने से रोकता है, और वो है संयम, अगर मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूं कि आज की जनरेशन का जो संयम है वो ऐसा है कि वो जो हम रोड पर जब गाड़ी लेके चलते हैं और ट्रैफिक लाइट्स होता है, आज की युवा पीढ़ी उस लाइट में, उसमें कुछ सेकंड्स, कुछ मिनट का वेट करना होता है, वो भी व्यवस्था इसलिए बनाई गई है ताकि पूरा यातायात व्यवस्था व्यवस्थित रहे, सुचारू रहे। पर मैंने कई बार देखा है कि युवा जो पीढ़ी है, जो मोटरसाइकिल, कार, किसी भी पे है वाहन पे, उनको उस सेकंड्स और मिनट रुकने में भी उनको मुश्किल होता है। कभी तो वो रुकते ही नहीं है और कभी रुकते हैं तो आधी देर रुकते हैं, आधी देर में निकाल देते हैं।
3: बिल्कुल,
2: उस निकलने के चक्कर में वो बहुत बार बहुत रिस्क लेते हैं। वो कहीं से भी मोड़ के, कहीं से भी घुस के लेके गाड़ी को निकालना चाहते हैं। तब मुझे समझ में आता है कि ये और कुछ नहीं, इस संयम की कमी है।
3: संयम की कमी।
2: और सच कहूँ तो वही लोग जो किसी तरह से भाग भूख के आगे निकल के चले जाते हैं, हम खड़े होके देखते रहते हैं, अगले लाइट पे या अगले चौराहे पे वही लोग मुझे नजर आते हैं खड़े हुए। तो वो जो जल्दबाजी उन्होंने की या जो इतनी मेहनत की या इतना अपनी जान की रिस्क लेके निकाल गए, उससे उनको कोई फायदा नहीं होता। ये बात उनको ज़रूर समझना चाहिए कि ये हड़बड़ी, ये जो भाग दौड़ है, ये संयम तोड़ना है, इससे कभी फायदा नहीं होगा, बल्कि नुकसान ज़रूर हो सकता है। अगर वो थोड़ा भी संयमित रहेंगे तो उनको बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छा फायदे होंगे।
3: बिल्कुल।
2: तो मैं आज की जो युवा पीढ़ी है उनको बस एक ही चीज़ कि थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा सा धैर्य और रेगुलरिटी, नियमित कोई भी काम को करने की, क्योंकि आजकल बच्चे, युवा पीढ़ी बहुत जल्दी किसी चीज़ को करते करते उकता जाते हैं।
3: और मैम एक सवाल ये भी होता है, बच्चों का खुद का भी होता है और उनके परिजनों का भी होता है कि सीखना चाहते हैं तो कितने दिन में हम सीख जाएंगे, कितना समय हमें लगेगा। तो इस प्रश्न का सटीक उत्तर आपके शब्दों में क्या हो सकता है, क्योंकि सुनकर के बड़ा हास्यास्पद लगता है ये वाक्य कि हम कितने समय में सीख जाएंगे।
2: बिल्कुल सही कहा तुमने, और ये बच्चे तो नहीं करते हैं ये सवाल, निश्चित रूप से पेरेंट्स करते हैं
3: जी।
2: और अभी जो बात मैंने इसके पहले जो कहा था, धैर्य की कमी
3: जी, जी,
2: उतावलापन या जल्दबाजी, अगर मैं आज एक बात जरूर कहूंगी आज के पीढ़ी के पेरेंट्स के लिए, क्योंकि हर बार हमारा जो संदेश है या हम जो कहना चाहते हैं बच्चों से नहीं, उनके पेरेंट्स से भी, उनके अभिभावकों से भी मुझे एक बात कहनी है कि मैंने यही पढ़ा है और सबने पढ़ा होगा कि अभिमन्यु को उनके गर्भ में ही चक्रव्यूह में कैसे जाना है वो उन्होंने सीख लिया था, मतलब कैसे उससे निपटना है। तो अगर गर्भ में रहते हुए शिशु का इतना असर होता है तो मैं चाहूंगी कि वो पेरेंट्स जो अभी माँ बाप बनने वाले हैं या बन रहे हैं, वो गर्भ से ही अपने अंदर धैर्य, संयम, नियमितता रखेंगे तो निश्चित रूप से वो जो बच्चे, आज की पीढ़ी के नए बच्चे जो पैदा होंगे, जो आएंगे, वो भी शायद धैर्यवान बन जाएंगे। और फिर अगर नहीं है तो हमें उनको बचपन से इस बात की शिक्षा देनी होगी कि धैर्य कितना ज़रूरी है लाइफ में, कितना उसका फ़ायदा है। तो ये तीन चीज़ें अगर आपने जीवन में अपना ली, और ये तीन चीज़ें सबके जीवन में बहुत कुछ ला सकती हैं, धैर्य, संयम और नियमितता, रेगुलरिटी। बस हमको इन्हीं बातों पे ध्यान रखना है। फिर कब होगा, कैसे होगा, आप भूल जाइए, सब कुछ होगा, बहुत जल्दी होगा, बहुत अच्छा होगा।
3: विशेष रूप से हम उन परिवारों की भी बात कर रहे हैं यहाँ पर, जब कहीं कोई बच्चा गायन, वादन या नृत्य चुनता है तो उसे ये कहा जाता है कि इसे साइड में रखो और तुम पढ़ाई या नौकरी पर ध्यान दो, यानी इस तरह का प्रेशर ज़्यादा होता है बच्चे पर। और दूसरा एक पक्ष ये भी होता है कि कई बार बच्चे में कला के प्रति समर्पण बहुत अधिक होता है। अब इस स्थिति में होता है कि बच्चा या तो नौकरी या अन्य विकल्प को चुनकर अपनी कला को मार देता है, या फिर विरोध करके कला को चुनता है और अपनों की अवहेलना झेलता है, और उसे साबित करते करते एक लंबा समय लग जाता है। आप क्या कहना चाहेंगी उन परिजनों से कि कला के क्षेत्र का भविष्य कैसा है?
2: उन परिजनों को बिल्कुल साफ शब्दों में कहना चाहती हूँ कि अगर बच्चे में आपको कला के प्रति रुझान दिख रहा है तो उसको बिल्कुल एनकरेज करिए, प्रोत्साहित कीजिए कला को सीखने के लिए। कला को सीखना या समझना या करना हर व्यक्ति के जीवन में होना एक सौभाग्य की बात है, क्योंकि ये सौभाग्य, मैं तो ये सीधे सीधे कहती हूँ कि ये एक ईश्वर का आशीर्वाद है। अगर आपके जीवन में, किसी भी बच्चे के जीवन में ये शौक है और वो करना चाहता है, तो वो ईश्वर से मतलब उसको कुछ प्राप्त है, ईश्वर उसको कुछ देकर उसने पृथ्वी पर भेजा है, उसको बहुत प्रोत्साहित करना चाहिए। क्योंकि आज का जो समय है वो कला, अगर वो सीखता है, कहाँ तक सीखता है, कितना कर पाता है, अगर उसका डिवोशन है, उसकी मेहनत है, उसकी लगन है, तो निश्चित रूप से एक बहुत अच्छा कलाकार बन जाएगा। और आज भी हमारे देश में सौभाग्य से कला और कलाकारों का बहुत सम्मान है
3: जी।
2: सिर्फ सम्मान नहीं है, सच कहूँ तो नाम, पैसा, शोहरत, जो हर व्यक्ति की एक का सपना होता है, वो सब कुछ कला में है, बशर्ते कि आपने उस पायदान की कला सीख ली है जहाँ आपको ये सब मिले। और अगर सचमुच आपकी मेहनत ऐसी है और कर रहे हैं, तो दावे से कह सकती हूँ कि आपको वो सब कुछ मिलेगा। अगर आप बहुत बड़े कलाकार नहीं भी बन पाते हैं, तो एक बहुत अच्छे गुरु बन सकते हैं।
3: बिल्कुल,
2: आप अपनी संस्था चलाइए, गुरु बन जाइए, और अपने द्वारा कितने शिष्यों को सिखा सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। तो दो बातें फिर वहां पर होंगी
3: जी।
2: आपका जो मतलब सेल्फ सेटिस्फेक्शन की बात करूं
3: जी, जी।
2: उस बच्चे की, वो सबसे ज्यादा उसको होगा। दूसरा, संस्था चलाने से पता नहीं कितने विद्यार्थियों को तैयार करेगा, जो एक देश के लिए, समाज के लिए बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। तीसरा, उसको निश्चित रूप से पैसा भी मिलेगा, क्योंकि जो काम करेगा तो उसके बदले में उसको पैसा मिलेगा
3: जी।
2: और अगर अच्छा गुरु है तो उसे शोहरत भी मिलेगी। तो फिर वही बात कहूंगी कि जिस चीज के पीछे आज पूरी दुनिया दौड़ रही है, नाम, पैसा, शोहरत, वो सब मिलेगा। और आज के दौर में एक और वो भी नहीं हो पाया, तो फिर टीवी है, फिल्म है, ये लाइनें इतनी है, ओटीटी है, इतना अधिक फैल गया है ये सारा दौर कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम वो कर ही लेगा। तो मुझे लगता है कि कला के साथ में जीना बहुत सुंदर है, क्योंकि कला सिर्फ कलाकार नहीं बनाती, कला इंसान को इंसान बनाती
3: है। क्या बात है,
2: एक संवेदनशील इंसान, एक सेंसिटिव इंसान, एक बहुत मतलब जो जिसके लिए आज हम सब लोग परेशान हैं कि पूरी दुनिया से इंसानियत खत्म हो रही है, उसको बचाने के लिए, उसको बनाने के लिए अगर एक व्यक्ति 10 लोगों को भी कला सिखाता है और एक अच्छा इंसान बना देता है, तो मुझे लगता है इससे बड़ा समाज के लिए अच्छा क्या होगा। तो मुझे लगता है कि कला से ये तो ज़रूर फ़ायदा होगा, और ये शायद मेरे हिसाब से सबसे बड़ा योगदान है।
3: बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात डॉक्टर लता मुंशी अभी आपने कही। और वाकई में कला जो है वो व्यक्तित्व को गढ़ती है, व्यक्ति के संस्कार को गढ़ती है। और कहते हैं ना कि हम मनुष्य से देवत्व को जब प्राप्त करते हैं, तो निश्चित रूप से कला हमें उस मुकाम तक पहुंचाती है। डॉक्टर लता मुंशी, आप हमारे स्टूडियो में आई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, आज हम बात कर रहे थे अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस पर। हमारे साथ हमारी स्टूडियो में आज अतिथि थी सुप्रसिद्ध भरत नाट्यम नृत्यांगना और नृत्य गुरु डॉक्टर लता मुंशी। इसी के साथ आज का हमारा ये विशेष कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। श्रोताओं, इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया संतोष कुमार वर्मा ने, परिकल्पना थी अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी का, समन्वय सहयोग किया सतीश बाथम ने। आपके साथ मैं थी आज आपकी रेडियो मित्र भगवती सक्सेना। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद के कार्यक्रमों को। देश का चैनल, देश के लिए।
0: अभी आप सुन रहे थे अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस पर हमारा विशेष कार्यक्रम, जिसमें नृत्यांगना डॉक्टर लता मुंशी से भगवती सक्सेना की बातचीत हमने आपको सुनवाई। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर सुनते रहे रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
4: कुछ याद उन्हें भी कर लो।
5: मैं हूं मधुश्री, सुनते रहिए 90.8 रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
4: जो लौट के घर न आए।
0: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद है। आइए सुनते हैं विगत दिवस भोपाल में आयोजित भारत सांस्कृतिक यात्रा की रेडियो रिपोर्ट।

0: बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुति आज के कार्यक्रम की।
1: ये थी आज की रेडियो रिपोर्ट। अगली रेडियो रिपोर्ट तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे भोपाल में आयोजित भारत संस्कृति यात्रा की रेडियो रिपोर्ट। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर यह रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल देश के लिए।

गंदे हाथों से कभी खाना मत खाना, कीटाणु पेट में चले जाएंगे और तुम बीमार हो जाओगे। इसीलिए तो खाना बनाने के पहले और खाने से पहले हाथों को धोना जरूरी है। धुलकर

शौच के बाद हाथों को साबुन से ही धोना। नाखूनों को साफ रखो, तुम बीमार नहीं होगे। पीने का पानी और खाने का सामान अच्छी तरह से ढककर रखना बहुत जरूरी है।

पानी अनमोल है, यह सबको जीवन देता है। पानी साफ ना हो तो यह बीमार कर देता है। इसीलिए परिवार को स्वस्थ रखने के लिए पीने का पानी साफ रखना बहुत जरूरी है।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर ये रेडियो आजाद हिंद है। आइए सुनते हैं सांस्कृतिक समाचारों पर आधारित कार्यक्रम परिक्रमा माँ अ हार्टबीट ऑफ एवरी होम। इस शीर्षक से माता पर केंद्रित चित्रकला प्रदर्शनी का आयोजन भोपाल स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में किया जा रहा है, जिसमें मध्य प्रदेश के 32 कलाकारों की करीब 50 पेंटिंग्स प्रदर्शित की गई हैं, जिनमें माँ के विविध रूप और संवेदनाएं उभर कर सामने आई हैं। रविंद्र भवन में आयोजित भारत संस्कृति यात्रा में भारतीय कला और संस्कृति की विविध रंगतें देखने को मिली। पहले दिन प्रातः सत्र की शुरुआत शास्त्रीय संगीत से हुई। शास्त्रीय गायन में श्वेता पुराणिक जोशी ने रागदारी संगीत की समृद्ध परंपरा को प्रस्तुत किया। इसके बाद डॉक्टर चंदन मंडल ने संतूर वादन प्रस्तुत किया और सायंकालीन सत्र में पद्मश्री पंडित रोनू मुजुमदार ने बांसुरी वादन प्रस्तुत किया। भोपाल में इंडिपेंडेंट सिनेमा और बहुआयामी कला अभिव्यक्तियों का संगम होने जा रहा है। सिनेकारी का 8वां संस्करण 2 और 3 मई को अलियांस फ्रांसिस में आयोजित होगा। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम परिक्रमा 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। ये रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल देश के लिए।
1: नमस्कार आदाब, मैं हूँ पिनाज मसानी और आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद।
2: दिल में रख लो कि निगाहों में बसा लो मुझको, दिल में रख लो कि निगाहों में बसा लो मुझको।

0: रेडियो आजाद हिंद के सभी सुनने वालों को नाज मसानी की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं।
1: नब्बे दशमलव आठ मेगाहर्ट्ज पर यह रेडियो आजाद हिंद है। प्रस्तुत है कार्यक्रम आजाद हिंद। महापुरुषों और स्वाधीनता संग्राम सेनानियों के जीवन पर केंद्रित इस कार्यक्रम में आज की कड़ी स्वाधीनता संग्राम सेनानी शेख भिखारी को समर्पित है।

स्वाधीनता संग्राम स्वराज पर एकाग्र कार्यक्रम आजाद हिंद, ज्ञात अज्ञात स्वाधीनता संग्राम सेनानियों, रणबांकुरों, जननायकों की क्रांति कथाएं और आजादी के यादगार तराने।

आजादी की यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्र वंदना के विविध स्वर जन गर्जे। अंग्रेजी राज के दमन, लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति ऑडियो एल्बम का संग्रह जन गर्जे।

0: नमस्कार श्रोताओं, मैं और इतिहास फिर हाजिर हैं आपके लिए एक और महान देशभक्त की रोचक कथा लेकर। आज हम बात करेंगे छोटा नागपुर क्षेत्र में ओर मांझी के राजा उमराव सिंह के देशभक्त दीवान शेख भिखारी की, जिन्होंने सन 1857 की भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की महत्वपूर्ण क्रांति में उल्लेखनीय योगदान दिया।
1: शेख भिखारी ओर मांझी से 9 किलोमीटर पूर्व अनगढ़ा थाना के खुदिया लोटवा गांव में पैदा हुए थे। उन्होंने बचपन से ही युद्ध कला सीखी थी, साथ ही साथ पूर्वजों के अनुभव से प्रशासनिक कुशलता भी हासिल की थी।
0: आज यानी 8 जनवरी और सन 1858 को ही शेख भिखारी शहीद हुए थे। उनकी बहादुरी और प्रशासनिक क्षमता के शौर्य से प्रभावित होकर ओर मांझी खटंगा के राजा उमराव सिंह ने उन्हें अपनी रियासत का दीवान और भंडारी बना दिया था।
1: 1857 की क्रांति में छोटा नागपुर में डोरंडा के सैनिकों ने 31 जुलाई को जमादार माधव सिंह और सूबेदार नादिर अली खां के नेतृत्व में चुटुपालू घाटी में सबसे पहला क्रांति बिगुल बजाया। ये घाटी राजा उमराव सिंह की जमींदारी में ही आती थी।
0: शेख भिखारी सैनिकों के इस कार्य से खासे प्रभावित हुए और उनका उत्साह भी बहुत बढ़ गया। उन्होंने नादिर अली और माधव सिंह को हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया। ये आश्वासन कोरा नहीं था। उन्होंने विद्रोहियों का सामान ढोने के लिए हाथी, घोड़े और पुलियों का प्रबंध करवाया।
1: साथ ही साथ शेख भिखारी और उमराव सिंह ने चुटुपालू और चारू घाटी को तहस नहस करके उधर का मार्ग पूरी तरह अवरुद्ध कर दिया, ताकि अंग्रेजी सेना वापस ना आ सके।
0: विद्रोहियों का आतंक इतना भयानक था कि अंग्रेज कप्तान ग्राहम और 3 अन्य गोरे अफसर हजारीबाग भाग गए। इधर विद्रोही सैनिक सिर्फ 2 तोपों से गोलाबारी करते हुए चुटुपाली के रांची की ओर चल दिए।
1: 2 अगस्त 1857 को विद्रोहियों ने रांची पर कब्जा कर लिया और डर के मारे रांची के जिलाधीश डेविस, जज ओक्स और पलामू के एडीओ बर्च कांके पिठोरिया के मार्ग से भाग खड़े हुए।

0: 1857 की लड़ाई में कई जगहों पर देश के गद्दारों और विश्वासघातियों ने क्रांति मार्ग में विघ्न पैदा करने की कोशिशें की, परंतु शेख भिखारी जैसे दृढ़ निश्चयी वीरों ने हार नहीं मानी।
1: कुछ सिख सेनाएं बिहार और छोटा नागपुर क्षेत्रों में अंग्रेजों की मदद कर रही थीं। सिख सेना हजारीबाग में 3-4 दिन तक पड़ाव डाले बैठी थी। इसी बीच शेख भिखारी हजारीबाग जा पहुंचे।
0: तमाम मुश्किलें पार करके शेख ने विश्वनाथ शाहदेव का पत्र उस सिख सेना के मेजर बिशन सिंह तक पहुंचा भी दिया और उन्हें स्वतंत्र सरकार का समर्थन करने को राजी भी कर लिया।
1: हाँ तारीख, पर यह बात कितनी दुखद है कि हमारे देश के क्रांतिवीरों को अपने ही लोगों को अपनी ही स्वतंत्रता के लिए फुसलाना पड़ा, उन्हें लालच देने पड़े।
0: अगर देश में गद्दार मौजूद ही नहीं होते तो हमारा देश गुलामी के इतने बरस नहीं झेलता। और तब क्यों आज भी हम सब ये प्रण ले लें कि देश और मानवता के खिलाफ कभी गद्दारी नहीं करेंगे, तो संसार कितना सुख शांति पूर्ण हो जाए, है ना इतिहास।

0: शेख भिखारी ने छोटा नागपुर में संथालों को अंग्रेजों के विरुद्ध तैयार करने में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान दिया। संथाल परगना के दो भाइयों सिद्धू और कानू ने तो सन 1855 से ही ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था।
1: हाँ, स्वतंत्रता संग्राम में संथालों का शुरू से ही बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इनमें से सुरेंद्र शाह के नेतृत्व में 30 जुलाई 1857 को हजारीबाग की दोनों जेलों को तोड़कर ढेरों संथाल विद्रोहियों को जेल से रिहा कराया गया।
0: इन संथालों के नेता थे वीर रिपू मांझी, फागू मांझी, रिवजा मांझी, डबर गंजू और अर्जुन मांझी। इनके नेतृत्व में 1857 में हजारीबाग स्वतंत्र करा लिया गया।
1: एक बात सोचो इतिहास, उस समय तो संपर्क के साधन भी नहीं थे, फिर भी इतने बड़े पैमाने पर इतने बड़े देश के कोने कोने से हर इलाके के भील, संथाल, आदिवासी और लोग एक आवाज पर जागरूक हो जाते थे और मदद के लिए आगे भी आते थे।
0: बिल्कुल, उस एकता के जज्बे के कारण ही तो भारत स्वतंत्र हो पाया। कोई भी साधन मौजूद नहीं होने के बावजूद जनशक्ति ही थी जो सबसे बड़ा संपर्क का माध्यम और साधन थी।
1: ऐसी शक्ति को हमारा नमन है और साथ ही हम एक जोश से भरा गीत अपने श्रोताओं को सुनवाना चाहेंगे।
0: हाँ, जरूर।

0: वाह, मजा आ गया ये ताजगी भरा गीत सुनकर। तो तारीख, हम बात कर रहे थे उन पांच वीर संथाली नेताओं की जिन्होंने हजारीबाग स्वतंत्र करवाया था।
1: हाँ, इतना बड़ा कार्य किया और बस अंग्रेजी सरकार की आंख की किरकिरी बन गए। इन पांचों नेताओं को पकड़वाने का ब्रिटिश सरकार ने 100-100 रुपये इनाम घोषित कर दिया।
0: संथाल विद्रोह इतना उग्र था कि हजारीबाग का जिलाधीश मेजर सिम्पसन भयभीत होकर भाग गया और बड़ई में रहने लगा।
1: अंग्रेजों की संथालों के प्रति नफरत बढ़ती रही। आखिरकार आगे चलकर संथालों का ये विद्रोह भी दबा दिया गया। अंग्रेजों ने बड़े पैमाने पर संथाल में नरसंहार किया और त्राही त्राही मचा दी।
0: इतना ही नहीं तारीख, मार्ड से लेकर कोला तक लगभग 200 संथाल विद्रोहियों को सरेआम फांसी दे दी गई और संथालों के गांव जला डाले।
1: अंग्रेजी आतंक से भयभीत और पूर्ण रूप से निर्धन हो चुके अधिकांश संथाल उत्तर बंगाल भाग गए। मौका पाते ही 22 सितंबर 1857 को अंग्रेजों ने पुनः रांची पर कब्जा कर लिया।
0: अंग्रेजों को ये मौका इसलिए मिला क्योंकि डोरंडा की विद्रोही सेना रांची से दिल्ली की ओर कूच कर गई थी और रांची में कोई विद्रोही सैन्य शक्ति नहीं बची थी। कुंवर सिंह भी बिहार से अन्यत्र चले गए और अंग्रेजों का रास्ता बिल्कुल ही साफ हो गया।
1: बस फिर क्या था, अंग्रेजों ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया और लगभग अकेले बच गए अपने कट्टर शत्रु शेख भिखारी, उमराव सिंह और उनके भाई घासी सिंह को गिरफ्तार कर लिया। इन तीनों को घोर यातनाएं देते हुए निर्दयता पूर्वक रांची लाया गया।
0: ब्रिटिश शासन के लिए मैदान एकदम साफ था। वो दुष्टता और बर्बरता की हदें पार कर रहे थे। बदले की भावना में बौराए अंग्रेज रांची में क्रांतिकारियों को सरेआम फांसी पर लटका रहे थे।
1: छोटा नागपुर के जुडिशियल कमिश्नर विलियम ओक्स ने मद्रास फौज के मेजर मैकडोनल्ड को मौखिक आदेश दिया कि जिस चुटुपालू घाटी और चारु घाटी को शेख भिखारी ने बर्बाद किया है, वहीं उन्हें और राजा उमराव सिंह को एक साथ पेड़ पर जनता के समक्ष फांसी दे दी जाए।
0: जब शेख भिखारी और उमराव सिंह को चुटुपालू घाटी ले जाया गया तो दृश्य देखने जैसा था। हजारों देशभक्त विद्रोहियों के परिवार मार्ग में उमड़ पड़े। इस भीड़ में महिलाएं और पुरुष रोते हुए उनके पीछे पीछे चल रहे थे। लोगों में भय के साथ साथ उनकी आंखों में एक भयानक आक्रोश साफ साफ देखा जा सकता था।
1: आक्रोश ऐसा था कि जब ये भीड़ मोरहाबादी पहुंची तो मेजर मैकडोनल्ड को आशंका हुई कि मद्रास फौज कहीं डर के भाग न जाए।
0: खतरा भांपते हुए मैकडोनल्ड ने 8 जनवरी 1858 को रांची और माझी मार्ग में ही मोरहाबादी टैगोर हिल्स के पास एक वृक्ष की दो डालों पर शेख भिखारी और उमराव सिंह को फांसी दे दी।
1: इतना ही नहीं, मैकडोनल्ड ने जनता में भय बनाए रखने के लिए इनके शव एक पेड़ पर लटके रहने देने के आदेश दिए। मोरहाबादी के स्थल को आज भी टुंगरी फांसी के नाम से पुकारा जाता है।
0: फांसी के बाद दोनों शहीदों की संपत्ति जब्त कर ली गई। उनके परिवार अभाव और गरीबी में जीवन व्यतीत करने को मजबूर कर दिए गए। तारीख, जानती हो, अमर शहीद शेख भिखारी के वंशज शेख अलीमुद्दीन रांची के बाजार में मजदूरी करते थे।
1: इतने बड़े संभ्रांत परिवार में जन्मे शेख भिखारी, जिनके पूर्वज शेख बुलंदू खुदिया लोटवा गांव के जमींदार थे और 12 गांवों के मालिक भी। ये 12 गांव उनको औरागढ़ की रानी ने उन्हें उनकी बहादुरी और रामगढ़ सिकदरी घाटी की रक्षा के एवज में उपहार में दी थी।
0: हाँ तारीख, एक तरफ तो ये तथ्य है और दूसरी ओर शहीद भिखारी दिवस समारोह समिति की कुछ और ही मान्यता है। वो कहते हैं कि शेख भिखारी का जन्म रांची जिले के बुडमू थाने के होपटे गांव में एक बुनकर परिवार में हुआ था।
1: अरे इतिहास, तारीखें कहती हैं कि अधिकांश किस्से शेख भिखारी के खुदिया लोटवा गांव के होने की पुष्टि करते हैं। यहां तक कि डोरंडा कॉलेज रांची के इतिहास विभाग के अध्यक्ष एवं प्रमुख इतिहासविद डॉक्टर पुरुषोत्तम कुमार भी खुदिया ही उनका जन्म स्थान मानते हैं।
0: हमारा उद्देश्य उन वीरों की लड़ाई को सम्मान पूर्वक याद करना है और हम खुद ही लड़ने लगे।
1: चलो भाई, हम अपने श्रोताओं को प्यारा सा गीत सुनवाएं और मन से वीर अमर शेख भिखारी को नमन करें।
0: बिल्कुल तारीख, मैं तुमसे एकदम सहमत हूँ। तो लीजिए हमारा आज का ये अंतिम गीत। ये गीत हमारी और हमारे श्रोताओं की तरफ से शेख भिखारी को श्रद्धांजलि स्वरूप है।
1: और श्रोताओं, जैसा हमने पहले भी बताया था, आज शेख भिखारी की पुण्यतिथि है। हम उनकी शहादत को शत शत नमन करते हैं।

0: जिंदा फिर से हो रहा।
1: जननायक, स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथाओं के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाओं का संग्रह। ऑडियो एल्बम जननायक, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आजाद हिंद, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय की। तो अब दीजिए हमें इजाजत
3: और कल फिर हम आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए
2: नमस्कार।

0: स्वाधीनता संग्राम, स्वराज पर एकाग्र कार्यक्रम आजाद हिंद, ज्ञात अज्ञात स्वाधीनता संग्राम सेनानियों, रणबांकुरों, जननायकों की क्रांति कथाएं और आजादी के यादगार तराने।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आजाद हिंद, आज की कड़ी स्वाधीनता संग्राम सेनानी सन 1498 में जब वास्को डी गामा का छोटा बेड़ा केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर आगे बढ़ा तो वे एक जुनूनी विजन से प्रेरित थे, ईसाई और मसालों की खोज। सदियों से यूरोप में पूर्व में एक खोए हुए ईसाई साम्राज्य की किंवदंतियां प्रचलित थी जिस पर पौराणिक प्रेस्टर जॉन का शासन था। जब पुर्तगाली मालाबार तट पर पहुंचे तो वे इस उम्मीद में इतने अंधे थे कि वे अपने सामने मौजूद सभ्यता की वास्तविकता को देख ही नहीं पाए। इन प्राचीन विश्वासियों के साथ पहली मुलाकात भारत में नहीं बल्कि अप्रैल 1498 में पूर्वी अफ्रीकी तट पर मालिंदी में हुई थी। वहां पुर्तगालियों की मुलाकात क्रैगनोर के 4 जहाजों से हुई। उन पर ऐसे लोग सवार थे जिन्होंने खुद को मसीह का अनुयायी सेंट थॉमस ईसाई बताया। यह समुदाय अपनी जड़ों को प्रेरित थॉमस यानी एपोस्टल थॉमस से जोड़ता था, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे पहली शताब्दी में भारत आए थे और यहीं बस गए और संभवतः यही उनकी हत्या कर दी गई। हालांकि पुर्तगालियों का शुरुआती अवलोकन घोर अज्ञानता से भरा था। जब वे कालीकट पहुंचे तो इतिहासकार एल्वारो वेल्हो को पक्का विश्वास था कि उन्होंने एक ईसाई शहर खोज लिया है। मूरो अर्थात मुसलमानों के खिलाफ एक ईसाई सहयोगी खोजने की बेताबी में पुर्तगालियों ने हिंदू मंदिरों को चर्च और स्थानीय धार्मिक रीति रिवाजों को ईसाई अनुष्ठान समझ लिया। जैसे जैसे पुर्तगालियों ने एस्टाडो द इंडिया की स्थापना की उन्हें समझ आया कि यह समुदाय उनकी कल्पना से कहीं अधिक जटिल था। उन्होंने क्रैगनोर और कोलम जैसे केंद्रों की पहचान की जो सेंट थॉमस ईसाइयों के गढ़ थे। ये समुदाय सदियों से अपने हिंदू और मुस्लिम पड़ोसियों के साथ एक सहजीवी संबंध में रहते थे। उनकी आस्था यूरोप के लैटिन संस्कार ईसाई धर्म से मौलिक रूप से भिन्न थी। इस खोज का दिलचस्प विरोधाभास तब सामने आया जब धार्मिक टकराव शुरू हुआ। पुर्तगाली इन खोए हुए ईसाइयों को खोजने के लिए महासागर पार कर आए थे, लेकिन उन्हें पाने के बाद उन्होंने उनकी आस्था को मान्य और धर्म सम्मत मानने से इनकार कर दिया। पुर्तगालियों की नजर में सेंट थॉमस ईसाई विधर्मी पूर्वी संस्कारों से दूषित थे। 16वीं शताब्दी के मध्य में जेसुइट्स के आगमन और काउंटर रिफॉर्मेशन की उग्र भावना के साथ पुर्तगाली दृष्टिकोण जिज्ञासा से बदलकर सुधार में बदल गया। 1560 तक इंक्विजिशन को गोवा लाया गया और पुर्तगालियों ने सेंट थॉमस ईसाइयों को जबरदस्ती रोम के अधिकार में लाने का प्रयास किया। वह प्राचीन समुदाय जो कभी पुर्तगालियों की यात्रा का औचित्य था अब उनके आध्यात्मिक अनुशासन का लक्ष्य बन गया। ये कहानी एक डरावना उदाहरण है कि कैसे साम्राज्यवादी आंखें वही ढूंढती है जो वे देखना चाहती है और फिर उसे केवल इसीलिए नष्ट कर देती है क्योंकि वे उनके घर से लाई गई छवि से मेल नहीं खाता।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर यह रेडियो आजाद हिंद है। आप समय है कार्यक्रम सुर सागर का। सुर सागर कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाएंगे नादलय रंजनी पंचवाद्य, इस कार्यक्रम का द्वितीय भाग।
1: नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद है। अब वक्त है कार्यक्रम सुर सागर का। इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाते हैं गायन वादन, लोकगीत, गजलें और बहुत कुछ। आज प्रस्तुति होगी नादलय रंजनी पंचवाद्य की। कलाकार हैं रंजनी वेंकटेश और उनके साथी। ये प्रस्तुति हुई मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय में महिलाओं की सृजनात्मकता का उत्सव इंद्राणी समारोह के तहत। ये इस कार्यक्रम का दूसरा और अंतिम भाग है।
2: हमारा अगला प्रस्तुति होगा राग हमसानंदी में। ये इंद्राणी समारोह के लिए, ये शक्ति रूप के लिए एक कॉम्पोजिशन बनाया है नाद रंजनी, नादलय रंजनी टीम से। इसमें लय वाद्यों का वाद विवाद होगा, तनियावर्तन जो कहते हैं उसको, आप आनंद लीजिए। थैंक यू।

0: अभी आप सुन रहे थे नाद लय रंजनी पंचवाद्य इस कार्यक्रम का द्वितीय भाग। इसके साथ ही हमारा आज का सुर सागर कार्यक्रम संपन्न होता है। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर यह रेडियो आजाद हिंद है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।
1: स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग प्रस्तुत करते हैं स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और उनके विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।

0: अब तक आपने जाना कि विवेकानंद कन्याकुमारी, रामेश्वरम आदि स्थानों की यात्रा करके मद्रास गए थे। वहां श्री सुंदर राम के घर पर ठहरे थे। उन्होंने स्वामी जी को कई संभ्रांत लोगों से मिलवाया था। मद्रास पहुंचने के थोड़े ही दिनों बाद स्वामी जी की विद्वत्ता और प्रतिभा की ख्याति शिक्षित समाज की चर्चा का विषय बन गई। थोड़े दिनों बाद वे मन्मथ बाबू के पास रहने चले गए। मन्मथ बाबू का घर शीघ्र ही धर्म चर्चा का एक केंद्र बन गया।
1: ये जानकर कि विश्वविद्यालय के सर्वोच्च उपाधिधारी युवकगण स्वामी जी का शिष्यत्व स्वीकार कर रहे हैं, मद्रास नगर के सुप्रसिद्ध नास्तिक क्रिश्चियन कॉलेज के विज्ञान के अध्यापक श्री सिंगरावेलु मुदलियार अपने हंसी रोक न सके और एक दिन दल बल के साथ उन्होंने स्वामी जी को तर्क युद्ध में आह्वान किया। उनका दृढ़ विश्वास था कि स्वामी जी किसी भी तरह युक्तियों का खंडन नहीं कर सकेंगे, परंतु थोड़े ही समय में वे चुप होने के लिए बाध्य हो गए और उनके अनुगत भक्त हो गए।
0: स्वामी जी उन्हें विशेष स्नेह करते थे और उनका नाम किड़ी यानी बालक रखा था। वे किड़ी से मजाक करते हुए कहते,
2: जूलियस सीजर ने कहा था, विनी वीसी वीडी, यानी मैं आया, मैंने देखा, मैंने जीत लिया, किंतु यहाँ तो किड़ी आया, उसने देखा और वो पराजित हो गया।
1: कुछ काल के उपरांत किड़ी ने स्वामी जी के कार्य के लिए अपना जीवन उत्सर्ग कर दिया था तथा बाद में स्वामी जी की इच्छा अनुसार मद्रास में जब प्रबुद्ध भारत नामक पत्रिका प्रकाशित हुई तब वे उसके अवैतनिक व्यवस्थापक हुए थे। इसके उपरांत वे संसार त्याग कर तपस्या में लीन हुए और साधु के रूप में ही उन्होंने शरीर त्याग दिया।
0: मद्रास के एक युवक श्री वी सुब्रमण्यम अय्यर ने लिखा है,
3: हम लोग मजाक करने के लिए अपने कुछ सहपाठी युवकों को साथ लेकर भट्टाचार्य महोदय के घर पहुंचे। वहां जाकर देखा कि स्वामी जी हुक्का पी रहे हैं, जैसे किसी गहन चिंतन में लीन हो। मैं उन दिनों क्रिश्चियन कॉलेज का छात्र था और ईसाई धर्म के प्रति विशेष श्रद्धा रखता था, यहाँ तक कि हम एक बार धर्म ग्रहण करने के इच्छुक भी हो गए थे। स्वामी जी के पास आने के पहले ही हम लोगों ने अनेक सवाल तय कर लिए थे और इन सवालों के पक्ष और विपक्ष में जो कुछ कहना संभव हो सकता है वो सब सोच रखा था, ताकि अचानक हारना ना पड़े। स्वामी जी को उस रूप में देखकर हम संकोच में पड़े थे। तभी एक युवक अपेक्षाकृत साहस दिखाकर पूछ बैठा, महाशय, भगवान किसे कहते हैं? स्वामी जी मानो कुछ सुन नहीं पाए, पूर्ववत अपने ही धुन में हुक्का पीते रहे। फिर मानो उत्तर देने के लिए आंखें खोल कर कहा,
2: अच्छा बच्चा, बता सकते हो कि ऊर्जा या शक्ति क्या है? चुप क्यों हूं? ये कैसी बात है? तुम लोग जिस शक्ति शब्द का जीवन में प्रतिक्षण व्यवहार करते हो, उस साधारण शब्द तक की परिभाषा नहीं बता सकते, परंतु मुझे भगवान की परिभाषा बताने कहते हो।
0: उन लोगों ने और भी बहुत से प्रश्न किए थे, किंतु स्वामी जी ने उन लोगों को निरुत्तर कर दिया। अंत में सबके चले जाने पर भी अय्यर महाशय स्वामी जी की कथावार्ता से मुग्ध हो बैठे रहे और स्वामी जी जब समुद्र तट पर संध्या भ्रमण के लिए बाहर निकले तब अय्यर भी उनके साथ चले। हठात स्वामी जी ने अय्यर से पूछा,
2: क्या तुम कुश्ती लड़ना जानते हो?
3: जी, कुश्ती?
2: हाँ हाँ, कुश्ती जानते हो?
3: जी, थोड़ा बहुत।
2: तो चलो आओ, थोड़ा लड़ा जाए।
0: दोनों समुद्र तट पर रेत में ही कुश्ती लड़ने लगे। स्वामी जी के व्यायाम कौशल और मांसपेशियों की मजबूती देखकर अय्यर आश्चर्यचकित हो गए और बाद में स्वामी जी का नाम रखा पहलवान स्वामी।
1: स्वामी जी ने एक बार गौर किया कि मैसूर के महाराजा ने उन्हें जो हुक्का दिया था उसे भट्टाचार्य महाशय का रसोईया बड़ी ही ललचाई नजरों से देख रहा है। उन्होंने तुरंत उससे पूछा,
2: इधर आओ, तुम्हें ये हुक्का पसंद है?
4: जी हाँ, बहुत अच्छा है।
2: तुम्हें चाहिए?
4: जी, हम गरीब लोग हैं, ये तो बहुत महंगा होगा।
2: तो क्या हुआ, ये लो, इसे रख लो।
4: अरे, पर ये तो आपकी बहुत पसंद की चीज है।
2: हाँ, है तो पसंद की चीज, पर तुम्हें भी तो पसंद है ना? लो, रख लो इसे।
1: रसोईया अभिभूत हो गया। ऐसे ही थे स्वामी जी। अगर कोई उनकी किसी चीज की तारीफ करता तो वे उसे तुरंत ही वो चीज दे देते।
0: एक बार की घटना है, स्वामी जी को भूतों ने घेर लिया था। कैसे छूटे तो सुनिए। मद्रास प्रवास में उन्हें एक अद्भुत अनुभव हुआ। उन्होंने प्रेतात्माओं के उत्पात का अनुभव किया। वे उन्हें तरह तरह की उल्टी सीधी सूचनाएं देते और स्वामी जी परेशान हो जाते। थोड़े दिन तो वे उत्पात सहते रहे, फिर रौद्र रूप धारण कर बोले,
2: देखो तुम लोग अब इस दुनिया में नहीं हो, अपने प्रेत लोक में जाकर क्यों नहीं रहते? यहां का मोह क्या अब तक नहीं छूटा? चुपचाप चले जाओ, नहीं तो अपनी तपस्या के बल से मैं तुम्हें ऐसी सजा दूंगा कि तुम लोगों को कभी भी मुक्ति नहीं मिलेगी।
0: भूतों ने उन्हें बताया कि वे बड़े कष्ट में हैं, स्वामी जी उनका उद्धार करें। स्वामी जी सोच विचार कर समुद्र तट पर गए और तिल चावल की जगह मुट्ठी में रेत भर भर कर पिंडदान किया और तब से भूतों का उत्पात भी रुक गया।
1: ऐसा ही एक और अनुभव उन्हें हुआ था, पर उसका नतीजा अच्छा ही हुआ था। मद्रास में मन्नाथ बाबू के घर पर रहते समय स्वामी जी ने सपने में देखा कि उनकी माँ की मृत्यु हो गई है। वे सुबह जागकर व्यथित हो गए। मन्नाथ बाबू ने समाचार जाने के लिए कलकत्ते में तार भेजा। उन्होंने स्वामी जी से कहा कि पास ही एक पिशाच सिद्ध व्यक्ति रहता है, वो गणना करके भूत भविष्य की बातें बता सकता है। लोगों के बार बार कहने पर स्वामी जी वहां जाने के लिए राजी हो गए। उनके साथ मन्मथ बाबू, आला सिंगा और इंडिया बैंक के मैनेजर श्री बालाजी राव भी चल पड़े। वो स्थान शमशान के पास था। एक काला कलूटा विशालकाय व्यक्ति को यज्ञ कर रहा था। उस व्यक्ति के साथियों ने उस तांत्रिक पिशाच सिद्ध से उन लोगों का परिचय करवाया। पहले तो उसने ज्यादा आग्रह नहीं दिखाया। जब स्वामी जी लौटने के लिए मुड़े तो उसने उन्हें रोका, इशारे से बैठने को कहा और लकड़ी से जमीन पर कुछ रेखाएं खींच दी। फिर उसने स्वामी जी के पुरखों के नाम बताए, उनके बीते दिनों की बातें बताई और फिर कहा कि उनकी माँ स्वस्थ हैं, ठीक हैं। घबराने की जरूरत नहीं, विदेश यात्रा की बात भी उसने कही थी। सभी लोग निश्चित होकर लौट आए। तार का जवाब भी आ गया था, माँ ठीक थी। इस पिशाच सिद्ध व्यक्ति का नाम था गोविंद चेट्टी। कहते हैं अमेरिका से लौटने के बाद स्वामी जी की मुलाकात उनसे फिर कुंभकोणम में हुई थी। स्वामी जी ने उसका आलिंगन किया था। स्वामी जी के प्रभाव से उसने तंत्र विद्या छोड़ दी थी।
0: मद्रास में स्वामी जी का प्रभाव किस प्रकार फैल रहा था, इसे बताने के लिए श्री के व्यास राव ने उन दिनों की बातों को याद कर लिखा था।
4: उन सन्यासी ने कलकत्ता विश्वविद्यालय से बीए पास किया था। उनका मस्तक मुंडित था, अत्यंत सुंदर रूप था, परिधान में गेरुआ वस्त्र था। वे अंग्रेजी और संस्कृत भाषा में धारा प्रवाह बोलते थे। विरोधी की बातों का जवाब देने की अतुल्य क्षमता रखते थे। मुक्त कंठ से सुललित स्वर में जब गाना शुरू करते थे तब लगता था मानो विश्वात्मा के साथ वे एक हो चले हैं।
1: वे स्वस्थ एवं दीर्घदेही थे, रसिक थे। वे सिद्धाई के प्रदर्शन से घृणा करते थे, सुस्वादु भोजन से आनंदित होते थे। हुक्के के प्रति और तमाकू सेवन में उन्हें विशेष प्रीति थी। तथापि ऐसी सरलता से वैराग्य की बातें करते कि लोग मुग्ध हो जाते थे। कुश्ती लड़ना, तलवारबाजी, लाठी भांजना उन्हें खूब अच्छे से आता था। बात बात में हंसी मजाक करते थे, पर इन सबसे ऊपर था उनका विशुद्ध देश प्रेम। यही गुण सबको मोह लेता था।
0: जिन युवक ने सांसारिक समस्त संबंधों को तोड़ दिया था एवं बंधन मुक्त हो गए थे, उनकी एकमात्र प्रेम की वस्तु थी स्वदेश, और एकमात्र विषाद का कारण था उसी स्वदेश का पतन। व्यास राव जी और भी लिखते हैं कि
4: इन विषयों में चिंता मग्न होकर वे ऐसी बातें कहते जिनसे श्रोतागण मंत्र मुग्धवत बैठे रहते। हुगली नदी से ताम्रपर्णी नदी तक का पर्यटन करने वाले स्वामी जी का यही स्वरूप था। वे मुक्त कंठ से हम युवक वर्ग की कायरता पर दुख व्यक्त करते तथा उसकी निंदा करते। उनकी वाणी फौलाद की भांति राह चीर कर चलती। वे सबके प्राणों में उत्साह का संचार करते। अनेकों लोगों के हृदय में विश्वास का दीप उन्होंने प्रज्वलित कर दिया था।
1: कई विद्वानों के लिखे हुए संस्मरण हमें प्राप्त हुए हैं। स्वामी जी भारतीय दर्शन, योग और संस्कृति के मूर्त विग्रह थे। उनके विचारों में पश्चिमी दर्शन और वैज्ञानिक आविष्कारों ने भी जगह बनाई थी। अपने पांडित्य के लिए विख्यात कुछ व्यक्तियों ने उस समय उनका शिष्यत्व ग्रहण करने के पश्चात लिखा था,
5: स्वामी जी के मन तथा ज्ञान का प्रसार देखकर मैं स्तंभित और विमोहित हो गया। ऋग्वेद से रघुवंश तक वेदांत के दार्शनिक चिंतन से आधुनिक कांट और हीगेल तक प्राचीन और आधुनिक हर प्रकार का साहित्य, कला, संगीत, नीतिवाद एवं प्राचीन योग शास्त्र की सूक्ष्मता से आधुनिक प्रयोगशाला के जटिल विषयों तक सभी विषय जैसे उनकी दृष्टि के सामने स्पष्ट थे। इसी ने मुझे चमत्कृत कर दिया था और मुझे उनका दास बना दिया था।
2: उन्हें अक्सर प्रश्नकर्ता के स्तर पर उतरकर उसी की भाषा में अपने उच्च आध्यात्मिक ज्ञान को व्यक्त करना पड़ता था, जैसे पहले से ही प्रश्नकर्ता के प्रश्नों को जानते हों और इस तरह उसका जवाब देते कि दूसरा प्रश्न किए बिना ही प्रश्नकर्ता की जिज्ञासा शांत हो जाती। यदि कोई ये जानना चाहता कि वे कैसे पहले से ही प्रश्न जान जाते हैं, तब वे मुस्कुराते हुए उत्तर देते, सन्यासी मनुष्य के मन के चिकित्सक होते हैं, इसीलिए दवा देने के पहले ही रोग का पता कर लेते हैं। किसी किसी मौके पर अनेक व्यक्तियों के विचार एक साथ ही उनके मन में कौंध जाते, वे एक साथ ही अनेक समस्याओं का समाधान कर जिज्ञासुओं को संतुष्ट कर देते। जिन लोगों के प्रति वे खुश थे, उन लोगों के प्रति उनका व्यवहार कोमल तथा प्यार भरा होता, पर दूसरों के लिए उनके समीप रहना मानो खतरनाक विस्फोटक पदार्थ के पास रहने के समान था। जिस क्षण किसी के मन में कुविचार उठता, उसकी भनक मानो उनके मन में हो जाती थी, और उस समय उनके ओंठों पर जो मृदु हंसी होती और बातों के क्रम में जो दो चार शब्द उनके श्रीमुख से निकल पड़ते, उससे ही उस व्यक्ति को जान पड़ता कि स्वामी जी को मालूम पड़ गया है।
0: मद्रास में स्वामी जी 3 सप्ताह ठहरे थे। उन दिनों वे बार बार विदेश यात्रा की बातें करते थे। भक्तगण उनकी मंशा जानकर 500 रुपए इकट्ठा कर लाए, किंतु रुपयों को देखकर स्वामी जी दुविधा में पड़ गए। उन्होंने सोचा,
2: ये धन तो विदेश यात्रा के लिए नगण्य है, किंतु विदेश यात्रा यदि विधाता की ही इच्छा है तो फिर आयोजन ऐसा तुच्छ क्यों? भक्तों का प्रयास इस प्रकार असफल क्यों? कहीं मैं अपनी इच्छा से तो नहीं चल रहा हूं? उत्साह से भरकर अपने को बहा तो नहीं दे रहा हूं? जिस प्रकार सोच रहा हूं और जैसी परिकल्पना कर रहा हूं, इसके भीतर कोई सच्चाई है या नहीं? मां, कहो तुम्हारी क्या इच्छा है? मां, मैं यंत्र हूं, तुम यंत्री हो, कहो मां, कहो।
1: उन्होंने भक्तों को बुलाकर कहा,
2: बच्चों, मैं मां की इच्छा उनसे ही जान लेना चाहता हूं, पर यह तो अंधकार में कूदकर गिरने के अलावा और कुछ नहीं है। अतएव मां को प्रमाण देना होगा कि ये उन्हीं की इच्छा है। यदि ये उनकी इच्छा है तो धन अपने आप आ जाएगा। अतः ये रुपए ले जाओ और गरीबों में बांट दो।
0: शिष्यों ने उनका आदेश सुनकर अवाक होने पर भी उसका पालन किया और स्वामी जी ने अनुभव किया मानो उनके कंधे से एक बोझ उतर गया। उनका इस समय का मनोभाव हैदराबाद से अपने शिष्य आलासिंगा को लिखित एक पत्र में स्पष्ट रूप से व्यक्त हुआ है। पत्र से ज्ञात होता है कि वे अमेरिका जाने के लिए उत्सुक थे, पर घटना चक्र से जाने की व्यवस्था न होने के कारण उसे भगवान का विधान समझकर किसी को दोष नहीं देना चाहा। पत्र का अंश इस प्रकार है,
2: अत्यंत दुख के साथ तुम्हें यह सूचित कर रहा हूं कि इस समय मेरे लिए पुनः राजपुताना लौटना संभव नहीं है। अभी से यहां अत्यंत गर्मी पड़ रही है, पता नहीं राजपुताने में और भी कितनी भीषण गर्मी होगी, और मैं गर्मी बिल्कुल सहन नहीं कर सकता। अतः इसके बाद यहां से मुझे बंगलोर जाना पड़ेगा। और ऊटक मंड जाकर मुझे गर्मी बिताना है। गर्मी में मानो मेरा दिमाग खोल जाता है। अतः मेरी सारी योजना काफूर हो गई और इसलिए मैं पहले ही मद्रास से जल्दी चल देने के लिए व्यग्र था। तब मुझे अमेरिका भेजने के लिए उत्तरी भारत के किसी राजा का सहयोग प्राप्त करने के लिए महीनों का समय मिल जाता, किंतु क्या करूं, अब तो बहुत देर हो चुकी है। पहले तो ऐसी गर्मी में कहीं दौड़ धूप न कर सकूंगा, ऐसा करने से मुझे अपने जीवन से ही हाथ धोना पड़ेगा, और दूसरे राजपुताने के मेरे घनिष्ठ मित्र मुझे पाकर अपने पास से हिलने न देंगे और मुझे वे पश्चिम देश में जाने भी न देंगे। अतः अपने मित्रों से न मिलकर उसी नए व्यक्ति का आश्रय लेने का मेरा विचार था, परंतु मद्रास में विलंब हो जाने के कारण मेरी सारी आशाओं पर पानी फिर गया। अत्यंत दुख के साथ अब उस प्रयास को त्याग देना पड़ा। ईश्वर की जो इच्छा हो वही पूर्ण हो, किंतु तुम प्रायः निश्चित समझो कि मैं जल्दी ही दो एक दिन के लिए मद्रास आकर तुम लोगों से मिलने के बाद बंगलोर और फिर वहां से ऊटक मंड जाऊंगा। देखूं यदि मैसूर के महाराजा मुझे भेज दें।
1: बातों बातों में हम लोग हैदराबाद आ गए हैं, पर अभी मद्रास का विवरण खत्म नहीं हुआ। धन संग्रह की चेष्टा विफल होने पर स्वामी जी ने पुनः धर्म चर्चा में मन लगाया। स्वदेश प्रेमी सन्यासी उन दिनों मानो असहाय बालक की तरह माँ की पुकार की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्हें मालूम था माँ की जो इच्छा होगी वही होगा, उनके आदेश के बिना कोई भी निर्णय नहीं लिया जा सकता।
0: मद्रास के भक्तों से स्वामी जी के गुणों का समाचार पाकर हैदराबाद के लोग उन्हें अपने बीच पाने के लिए उत्सुक हो उठे। ये आमंत्रण स्वामी जी ने सहज ही स्वीकार कर लिया। श्री मन्मथ भट्टाचार्य ने निजाम राज्य के अधीक्षक अभियंता अपने मित्र श्री मधुसूदन चट्टोपाध्याय को तार द्वारा सूचित किया कि स्वामी जी 10 फरवरी को हैदराबाद पहुंचकर उनके अतिथि होंगे। संवाद प्रचारित होते ही लोग उत्साह से भर गए। स्वामी जी हैदराबाद स्टेशन पर उनके स्वागतार्थ मौजूद लगभग 500 लोगों की भीड़ देखकर आश्चर्यचकित हो गए। स्टेशन जयकारे से गूंज उठा।
1: इन लोगों में थे राजा बहादुर श्रीनिवास राव, महाराजा बहादुर रंभा राव, पंडित रतनलाल, कैप्टन रघुनाथ, शमसुल उलेमा, सैयद अली बिलग्रामी, नवाज बहादुर इमाद, नवाज जंग, नवाब बहादुर सिकंदर नवाज जंग, मिस्टर एच दोराबजी, मिस्टर एम एस मांडन, राय हुकुमचंद, सेठ चतुर्भुज, सेठ मतिलाल एवं श्री मधुसूदन चट्टोपाध्याय तथा उनके पुत्र श्री कालीचरण बाबू, जो स्वामी जी को उनके कलकत्ता रहने के समय से ही पहचानते थे, अतः उन्होंने ही आगे बढ़कर सबसे उनका परिचय करा दिया। फिर स्वामी जी को पुष्पमालाओं से लाद दिया गया। उस दिन वहां उपस्थित एक प्रत्यक्षदर्शी ने लिखा था,
6: स्वामी जी उस समय एक परम बलिष्ठ युवक परम हंस की वेशभूषा में हाथ में कमंडल धारण किए हुए प्रथम श्रेणी के डब्बे से उतरे। उन्हें मधुसूदन बाबू के बंगले में ले जाया गया और अनेक संभ्रांत नागरिक उनके साथ साथ वहां गए। जो लोग स्टेशन नहीं जा सके थे वे बंगले में उनका दर्शन करने आए। निश्चित ही हम लोगों ने हैदराबाद में किसी सन्यासी का स्वागत करने उमड़ी ऐसी भीड़ पहले कभी नहीं देखी थी। यह एक भव्य स्वागत समारोह था, बिल्कुल एक प्रतापी राजकुमार के उपयुक्त।
0: 11 फरवरी के प्रातःकाल सिकंदराबाद के लगभग 100 लोग फल मिठाई और दूध लेकर उनके समीप उपस्थित हुए और वहां के महबूब महाविद्यालय में व्याख्यान देने के लिए उनसे अनुरोध किया। स्वामी जी 13 फरवरी को व्याख्यान देने को राजी हुए। उसके बाद वे कालीचरण बाबू के साथ गाड़ी पर गोलकुंडा का इतिहास प्रसिद्ध किला देखने गए। अपने निवास स्थान में लौटकर उन्होंने देखा कि हैदराबाद के महाराजा के साले नवाब बहादुर सर खुर्शीद जाह अमीरी ई कबीर KCSI के प्राइवेट सेक्रेटरी ने अपने एक नौकर को पत्र के साथ उनके पास भेजा है। इस पत्र में ये अनुरोध किया गया है कि वे दूसरे दिन प्रातःकाल राजप्रसाद में आने की कृपा करें। यथा समय कालीचरण बाबू के साथ वहां पहुंचने पर नवाब बहादुर के एड डी कैंप ने उनका स्वागत किया। नवाब खुर्शीद जाह धर्म के संबंध में अत्यंत उदारवादी थे तथा वे हिमालय से कन्याकुमारी तक हिंदुओं के सभी प्रमुख तीर्थों का श्रद्धापूर्ण हृदय से दर्शन कराए थे। उन्होंने स्वामी जी का आदरपूर्वक स्वागत किया। उन लोगों में 2 घंटों तक हुई बातचीत के क्रम में स्वामी जी ने हिंदू, ईसाई और इस्लाम धर्मों के सार तत्व के संबंध में गंभीर चर्चा की। नवाब बहादुर हिंदुओं की साकार उपासना के विरोधी और एक पक्के मुस्लिम की तरह निराकार उपासना के पक्षधर थे। स्वामी जी ने इस विरोध के समाधान की भी चेष्टा की।
1: नवाब के साथ स्वामी जी की घंटों चर्चा हुई। नवाब बहादुर उनकी विद्वता देख मुग्ध हो गए। विचारों के उच्चतम स्तर पर पहुंचकर स्वामी जी ने नवाब के मन में ये विश्वास उत्पन्न किया।
2: मनुष्य में भगवत बुद्धि आदि जो कुछ आध्यात्मिक विश्वास देखे जाते हैं, वे सब मानव प्रकृति के गहनतम प्रदेश के सत्य के साक्षात्कार के कारण ही उत्पन्न हुए हैं। सभी आदर्श सत्य हैं और विभिन्न धर्म उन्हीं आदर्शों की प्राप्ति के उपायों के अलावा और कुछ नहीं है, और इनमें से किसी भी एक मार्ग का मन से अनुसरण करने पर मनुष्य में छुपा देवत्व निश्चित ही प्रकाशित होगा। ईश्वर द्वारा रचित सभी जीवों में मनुष्य ही सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि अध्यात्म से प्रभावित मनुष्य की बुद्धि के द्वारा ही संसार के सारे उच्च तत्वों का आविष्कार हुआ है तथा उसके सहारे ही मनुष्य अपनी सीमा का अतिक्रमण कर देवत्व में प्रतिष्ठित हुआ है।
1: अंत में उन्होंने पाश्चात्य देश जाकर सनातन धर्म के प्रचार की अभिलाषा व्यक्त की। नवाब बहादुर ने उनकी वाग्मिता और कथनों से मुग्ध होकर कहा था,
7: स्वामी जी, आपके इस प्रयत्न के लिए मैं 1,000 रुपए देने के लिए तैयार हूँ।
0: पर स्वामी जी ने पैसे नहीं लिए, कहा कि यात्रा की सारी प्रस्तुति हो जाने पर ले लेंगे।
1: इसके बाद 12 फरवरी को उन्होंने हैदराबाद के कई दर्शनीय स्थानों, मक्का मस्जिद, चार मीनार, फलकनामा, बशीर बाग, निजाम के राजमहल और अन्य अनेक दर्शनीय महलों आदि का दर्शन किया। 13 फरवरी सुबह उन्होंने तय व्यवस्था के अनुसार हैदराबाद के प्रधानमंत्री सर आसमान जाह, KCSI, राज्य के पेशाकार महाराज नरेंद्र कृष्ण बहादुर एवं महाराजा शिवराज बहादुर से मुलाकात की। इनमें से प्रत्येक ने उनके अमेरिका में प्रचार के लिए सहायता प्रदान करने का वचन दिया। शाम को महबूब महाविद्यालय में मेरी पाश्चात्य यात्रा का उद्देश्य विषय पर उनका व्याख्यान हुआ। पंडित रतनलाल ने उस सभा की अध्यक्षता की। अनेक यूरोप वासियों के साथ 1,000 से अधिक श्रोता सभा में उपस्थित थे। अंग्रेजी भाषा पर उनकी पकड़, उनका ज्ञान, शब्द विन्यास का माधुर्य और भाव भंगिमा देखकर सबके सब प्रभावित हो गए।
0: दूसरे दिन बेगम बाजार के व्यापारियों ने सेठ मोतीलाल के नेतृत्व में उनसे साक्षात्कार किया और कहा वे उनकी सहायता करने को तैयार हैं। स्थानीय थियोसोफिकल सोसाइटी एवं संस्कृत धर्म मंडल सभा के कोई कोई सदस्य भी मिलने आए। 15 फरवरी को पुणे से उनके नाम एक तार आया। उस तार के द्वारा पुणे की विभिन्न संस्थाओं के गणमान्य नागरिकों ने उन्हें वहां आने का अनुरोध किया था। उत्तर में स्वामी जी ने सूचित कर दिया कि उनके लिए तत्काल जाना संभव नहीं होगा, भविष्य में वे आने का प्रयास करेंगे।
1: 16 फरवरी को स्वामी जी ने मंदिरों के खंडहरों, बाबा सरफुद्दीन का मजार और सर सालार जंग के महल को देखा। 17 फरवरी को मद्रास से लौटते समय रेलवे स्टेशन पर हजारों लोगों ने उन्हें भावभीनी विदाई दी। श्री कालीचरण बाबू ने लिखा है, उनकी पवित्र सरलता, सतत आत्मसंयम एवं गहन भाव ने हैदराबाद वासियों के हृदय में एक अमिट छाप छोड़ दी थी और उसके बाद वे मद्रास चले गए।

अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।

0: वायदा फिर से हो रहा।
1: जननायक, स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथाओं के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाओं का संग्रह, ऑडियो एल्बम जननायक, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम योग प्रवर्तक विवेकानंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। ये रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद है और अब जानकारी हमारी आज की सांध्यकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। हमारी सांध्यकालीन सेवा शाम 5 बजे आरंभ होगी कार्यक्रम अक्षय निधि के साथ। उसके बाद आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम। शाम 6 बजे महापुरुषों के जीवन पर केंद्रित कार्यक्रम वतन का राग आज केंद्रित होगा स्वाधीनता संग्राम सेनानी विनायक देशपांडे के जीवन पर। इतिहास के पन्नों से यह कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 6:30 पर। इस कार्यक्रम में आज का विषय होगा रानी दुर्गावती के युद्ध का इतिहास। जानकारी देंगे इतिहासविद डॉक्टर पूजा सक्सेना और इनसे बातचीत करेंगे संदीप शर्मा। शाम 7 बजे योग संवाद कार्यक्रम में आज का विषय होगा योग वशिष्ठ जीवन मुक्त का स्वरूप। इस विषय पर बातचीत करेंगे डॉक्टर शशिकांत त्रिपाठी और सुनीता सिंह। शाम 7:30 पर अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस पर विशेष कार्यक्रम जिसमें डॉक्टर लता मुंशी से बातचीत करेंगी भगवती सक्सेना और रात्रि के 8 बजे विगत दिवस भोपाल में आयोजित भारत संस्कृति यात्रा की रेडियो रिपोर्ट का प्रसारण होगा। रात्रि के 8:30 पर स्वाधीनता संग्राम सेनानियों के जीवन पर केंद्रित कार्यक्रम आजाद हिंद। रात्रि के 9 बजे कार्यक्रम सुर सागर और 9:30 पर कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद। तो ये थी जानकारी हमारी आज की सांध्यकालीन सभा में प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की। दोपहर के 12 बज चुके हैं, अब हमारी प्रातःकालीन सभा संपन्न होती है। हमारी सांध्यकालीन सेवा शाम 5 बजे आरंभ होगी। तब तक आप हमारे केंद्र से देशभक्ति गीत और अन्य सांगीतिक प्रस्तुतियों का आनंद लेते रहें।
1: पर ये रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण है। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो मित्र प्रमिला। लीजिए सुनिए देशभक्ति गीत।

नमस्कार, मैं हूं गोविंद नामदेव और आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

नमस्कार, मैं हूँ रेखा भारद्वाज और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

हमें नाज है देश के उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पर जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। भारत माता के सभी महान सच्चे सपूतों को मेरा शत शत प्रणाम।

नमस्ते भोपाल, मैं हूं कैलाश खेर और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए।

0: कुछ याद उन्हें भी कर लो।
1: मैं हूँ मधुश्री, सुनते रहिए 90.8 रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

मैं अशोक चक्रधर FM रेडियो का अभिनंदन करता हूं जो 90.8 पर आप सुनते हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि इसका प्रसार और प्रचार निरंतर हो रहा है। ये रेडियो आज़ाद हिंद है। आज़ाद हिंद हमें याद दिलाता है नेताजी सुभाष की, याद दिलाता है हमारे स्वाधीनता संग्राम की, याद दिलाता है हमारे गौरव की। इस गौरवशाली परंपरा को मैं पुनः शुभकामनाएं देता हूँ।

0: आप सुन रहे थे देशभक्ति गीत प्रमिला के साथ।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है कार्यक्रम भारत भारती। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम भारत भारती में हम आपको सुनवा रहे हैं गायन गौरव अभ्यंकर का, और इसके बाद प्रस्तुति होगी रघुनंदन पंचीकर के गायन की। तो सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं गौरव अभ्यंकर का गायन।
2: गायन का प्रारंभ एक स्वरचित शिव वंदना से करूंगा, जो कि याग रमन राग यमन में एक ताल में निबद्ध है, मध्य लय की रचना है।

तो श्रोताओं, ये था आज का कार्यक्रम भारत भारती। अब दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, देश का चैनल देश के लिए।

90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी। अब दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, देश का चैनल देश के लिए। सुनो कहानी, कहानी जो बचपन में नानी दादी सुनाया करती थीं, कहानी जो हमें स्वप्न लोक और काल्पनिक लोक में ले जाया करती हैं, कहानी जिनको सुनते सुनते हम बड़े हो गए, कहानी जो मन को छू लेती हैं, दिल में उतर जाती हैं, जीवन के अनछुए मार्मिक और ज्ञानवर्धक पहलुओं पर प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम सुनो कहानी।

नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद। प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी बौड़म।

0: मुझे देवीपुर गए 5 दिन हो चुके थे, पर ऐसा एक दिन भी ना होगा कि बौड़म की चर्चा ना हुई हो। मेरे पास सुबह से शाम तक गांव के लोग बैठे रहते थे। मुझे अपनी बहुज्ञता को प्रदर्शित करने का ना कभी ऐसा अवसर ही मिला था और ना प्रलोभन ही। मैं बैठा बैठा इधर उधर की गप्पे उड़ाया करता। बड़े लाट से गांधी बाबा से ये कहा और गांधी बाबा ने ये जवाब दिया, अभी आप लोग क्या देखते हैं, आगे देखिएगा क्या क्या गुल खिलते हैं। पूरे 50,000 जवान जेल जाने को तैयार बैठे हुए हैं। गांधी जी ने आज्ञा दी है कि हिंदुओं में छूत छात का भेद न रहे, नहीं तो देश को और भी अधीन देखने पड़ेंगे। अस्तु लोग मेरी बातों को तन्मय होकर सुनते, उनके मुख फूल की तरह खिल जाते, आत्माभिमान की आभा मुख पर दिखाई देती, गदगद कंठ से कहते, अब तो महात्मा जी का ही भरोसा है, नहीं तो आपका गला ना छोड़ता, आपको खाना पीना कठिन हो जाता, कोई उससे ऐसी बातें किया करे तो रात की रात बैठा रहे। मैंने एक दिन पूछा, आखिर ये बौड़म है कौन, कोई पागल है क्या? एक सज्जन ने कहा, महाशय पागल क्या है, बस बौड़म है। घर में लाखों की संपत्ति है, शक्कर की एक मिल सिवान में है, 2 कारखाने छपरे में है, 3-3, 4-4 सौ के तलब वाले आदमी नौकर पर हैं, पर इसे देखिए फटेहाल घूमा करता है। घर वालों ने सिवान भेज दिया था कि जाकर वहां निगरानी करे। 2 ही महीने में मैनेजर से लड़ बैठा, उसने यहां लिखा, मेरा इस्तीफा लीजिए, आपका लड़का मजदूरों को सिर चढ़ाए रहता है, वे मन से काम नहीं करते। आखिर घर वालों ने बुला लिया, नौकर चाकर लूटते खाते हैं, उसकी तो जरा भी चिंता नहीं, पर जो सामने आम का बाग है उसकी रात दिन रखवाली किया करता है, क्या मजाल कि कोई एक पत्थर भी फेंक सके। एक मियाँ जी बोले, बाबूजी घर में तरह तरह के खाने पकते हैं, मगर इसकी तकदीर में वही दाल और रोटी लिखी है और कुछ भी नहीं। बाप अच्छे अच्छे कपड़े खरीदते हैं, लेकिन वो उनकी तरफ निगाह भी नहीं उठाता, बस वही मोटा कुर्ता और गाढ़े की तहमत।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है कार्यक्रम भारत भारती।

तो श्रोताओं, ये था कार्यक्रम भारत भारती, जिसमें आज आपने सुना ध्रुपद गायन, जिसे पेश किया पंडित उदय भावलकर ने। अब दीजिए इस कार्यक्रम से इजाजत, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर, देश का चैनल देश के लिए।

90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण है। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो मित्र प्रमिला, लेकर आई हूँ आज का भारत भारती कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में सुनिए जुगल किशोर नामदेव और उनके साथियों के द्वारा प्रस्तुत बुंदेली लोक गायन।

आज हम और हमारी पूरी मंडली ऋतु गीत के माध्यम से अगर अपन चर्चा करें तो हिंदी महीनों के हिसाब से चैत माह से अपना वर्ष प्रारंभ होता है, तो चैत और कुंवार के महीना में देवी जगदम्बा को भगवती को सब जने मनाऊ थे। जब बुंदेलखंड में औरतें महिलाएं लोटा लेकर जल लेकर और एक साथ समूह में जाती हैं और गाती जाती हैं, क्या मनोहर दृश्य होता है। लीजिए पहली प्रस्तुति माँ भगवती के चरणों में।

हिसाब से अगर देखा जाए तो फागुन सबसे बाद में आता है, लेकिन फाग आने वाली है। तो फाग हमारे बुंदेलखंड में कैसे मनाते हैं, कैसे गाते हैं? जब कोई रंग से डरता है तो उसको पकड़ते हैं और बताते हैं रंगों का महत्व।

कार्तिक मास आता है तो कार्तिक मास में बुंदेलखंड की महिलाएं स्नान करती हैं सुबह सुबह और भगवान कृष्ण को मनाती हैं, वो उनकी सखी के रूप में जाती हैं। तो देखिए कैसे वो सखी बनती हैं और भगवान कृष्ण को अपना इष्ट मानती हैं।

एक हमारे बुंदेलखंड में ईसरी बहुत बड़े कवि हुए हैं, उनकी एक रचना ईसरी की फाग के नाम से जाना जाता है, चौकड़ी या फाग भी कहते हैं। ईसरी ने अपने इस चौकड़िया में, इस भाग में, इस तन को बताया है कि इसका कोई भरोसा नहीं है।

अब आज का भारत भारती कार्यक्रम खत्म करने की प्रमिला को दीजिए इजाजत। नमस्कार। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर ये रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण है, देश का चैनल, देश के लिए। सुनते रहिए। आज इस कार्यक्रम में सुनिए जुगल किशोर नामदेव और उनके साथियों के द्वारा प्रस्तुत बुंदेली लोक गायन। आज के इस कार्यक्रम में आपने जुगल किशोर नामदेव और उनके साथियों के द्वारा बुंदेली लोक गायन का आनंद लिया।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर हम रेडियो आज़ाद हिंद से बोल रहे हैं। श्रोताओं, अब हमारी सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है। शाम के 5 बज चुके हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम अक्षय निधि।
1: प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय निधि।
2: अक्षय निधि कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 99 से वाचन। ऋषि हैं काश्यप मारीच, देवता हैं अग्नि अथवा जातवेद अग्नि, छंद है त्रिष्टुप।
3: जातवेद से सुनवाम सोम मराति यतो निदहाति वेदः स नः परिषदति दुर्गाणि विश्वा नावेव सिंधुं दुरितात्यग्निः। हम सर्वज्ञ अग्निदेव के लिए सोम सवन करें, वे अग्निदेव हमारे शत्रुओं के सभी धनों को भस्मीभूत करें। नाव द्वारा नदी के पार कराने के समय वे अग्निदेव हमें संपूर्ण दुखों से पार लगाएं और पापों से रक्षित करें।
2: अक्षय निधि कार्यक्रम में अभी आपने सुना ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 99 से वाचन। प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर नीलिम त्रिपाठी।
0: नब्बे दशमलव आठ मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोताओं, आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद से प्रसारित किए जा रहे कार्यक्रम। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत।

भक्ति केवल मंदिरों तक ही सीमित नहीं होती। जब हमारा हर कार्य ईश्वर को समर्पित हो जाए, वहीं से जीवन का योग शुरू होता है।

साधना के बल पर आज तक किसी को भी भगवत प्राप्ति नहीं हुई है, क्योंकि भगवान साधन साध्य नहीं है, वे केवल कृपा साध्य हैं। इसका अर्थ ये भी नहीं है कि हम साधना करना छोड़ दें। साधना अवश्य करनी है, किंतु उस पर विश्वास करना है। हमें अभिमान नहीं करना,

साधना करते करते जब जीव असहाय हो जाता है और कातर रूप से दीन होकर करुण क्रंदन करते हुए रोकर भगवान को पुकारता है, तब भगवान की कृपा होती है और जीव को सब कुछ मिल जाता है, जिसकी प्राप्ति के बाद कुछ भी पाना शेष नहीं रहता।

प्रभु की शरणागति के अलावा और भी कोई साधन है ही नहीं जिनसे मुक्ति मिल जाए। एक दिन हम सबको ये माला, कंठी, मूर्ति, व्रत, उपवास, नियम, कर्मकांड, ज्ञान इत्यादि सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। ये सब तो अज्ञानियों के लिए बनाए गए हैं। इनके बहाने से हम किसी तरह से प्रभु में अपना मन लगा सकें, किंतु एक दिन ये सब करते करते सब कुछ हम एक तरफ डालकर केवल प्रेम पूर्वक रोकर व्याकुलता के सोपान पर चढ़ते हुए प्रभु की शरणागत होकर उन्हें पुकारेंगे तो वे आज नहीं तो कल हमें अवश्य ही मिलेंगे।

प्रभु से प्रेम का अर्थ है पूर्ण समर्पण, पूर्ण शरणागति, अर्थात स्वयं को मिटा देना। प्रेम जब होता है तो बस प्रेमास्पद को पाने की व्याकुलता ही होती है और कुछ नहीं। यही व्याकुलता भगवान की प्राप्ति करवाती है, क्योंकि व्याकुलता और दीनता अहंकार का नाश कर देती हैं।

भगवान की भक्ति के लिए साधना मार्ग और प्रेम मार्ग है। साधना मार्ग अर्थात अनुशासन, ध्यान, जप, जागरूकता और साक्षी भाव। यह वह मार्ग है जहां आप अपने भीतर उतरते हैं और अपने विचारों को देखते हैं, अपने अहंकार को समझते हैं। दूसरी तरफ प्रेम मार्ग है जहां भक्ति, समर्पण भाव, अपने इष्ट से जुड़ाव और रोमांच। यह वह मार्ग है जहां आप अपने प्रियतम में डूब जाते हैं, अपने इष्ट के लिए रोते हैं, उनमें खो जाते हैं। लेकिन गहराई से देखें तो दोनों का लक्ष्य एक ही है, अपने अहम को भूलना। चाहे आप साधना के बल पर अहंकार को गलाएं या प्रेम के बल पर, दोनों ही रास्ते उस एक ही लक्ष्य की ओर जाते हैं।

श्रोताओं, साधना का मार्ग सीधा और स्पष्ट रास्ता है। इसमें कोई भ्रम नहीं होता, कोई झंझट नहीं। आप बैठते हैं, ध्यान करते हैं, अपने विचारों को देखते हैं, साक्षी बनते हैं। ये मार्ग बुद्धि से समझ में आता है और इसमें आप स्वयं को समझते समझते शून्य की ओर जाते हैं,

भक्ति में प्रेम मार्ग, जिसमें कोई तर्क नहीं, कोई कारण नहीं, बस प्रेम है, भक्ति है, समर्पण है। अपने इष्ट के लिए हम रोते हैं, गाते हैं, नाचते हैं। ये रास्ता मीठा है, सहज है, रोमांचक है। इसमें हम स्वयं को प्रेम में खो देते हैं। यह मार्ग उनके लिए है जो भावुक हैं, जो दिल की सुनते हैं, जो ज़्यादा सोचना नहीं चाहते, बस करना चाहते हैं। यही भक्ति दीवानगी बन जाती है और अपने इष्ट से मिला देती है।

0: और श्रोताओं, इस भक्ति गीत के साथ ही कार्यक्रम भक्ति संगीत यहीं पर संपन्न होता है। कुछ ही देर बाद आप सुनेंगे कार्यक्रम वतन का राग।
1: आदमी तो वो है जो हालात को बदल दे, ऐसे ही महान वीर सपूतों की कहानी सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद पर 90.8 मेगाहर्ट्ज। रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
0: शाम के 6 बजे हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम वतन का राग।

0: वतन का राग कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।
1: भारतीय सेना के शूर वीरों को समर्पित शौर्य स्मारक भोपाल।
2: शौर्य स्मारक शहीदों की राष्ट्र सेवा से प्रेरित जीवन यात्रा का रूपायन।
1: जीवन के विभिन्न पड़ावों पर अदम्य साहस से जूझते मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते शूर वीरों की शौर्य गाथा का चित्रांकन
2: हर शाम 6 बजे से भारतीय जल थल और वायु सेना पर लघु फिल्मों का प्रदर्शन और भी बहुत कुछ।
1: शौर्य स्मारक भोपाल, समय दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक। आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। ध्यान रहे, बुधवार अवकाश।

एक समय था जब देश में सूरज तो निकलता था पर सुबह नहीं होती थी। हर सांस पर बेबसी का साया था, रातें अंधेरी थीं, नींद सपनों की नहीं डर की गिरफ्त में थी। अपनी ही जमीन पर पराए थे हम, सर पर जैसे आसमान न था। ये पराधीन भारत की तस्वीर है। अपने ही देश पर विदेशी सत्ता के राज ने भारत की आत्मा को विचलित करके रख दिया था। प्रतिरोध बढ़ता ही जा रहा था और 20वीं शताब्दी के आरंभ तक पहुंचते पहुंचते भारतीय स्वाधीनता संग्राम ने उग्र मोड़ ले लिया था और अनेक स्थानों पर सशस्त्र विद्रोह की गूंज सुनाई देने लगी थी। ऐसे समय में महाराष्ट्र की धरती भी विद्रोह की ज्वाला से धधक रही थी। इसी समय क्रांति के उज्जवल नक्षत्र की तरह उभरने वाले महानायक थे विनायक नारायण देशपांडे। ये वो समय था जब महाराष्ट्र की आबोहवा में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के विचारों की गूंज थी और युवाओं के रक्त में उबाल था। विनायक नारायण देशपांडे न केवल एक क्रांतिकारी थे बल्कि वो एक समर्पित शिक्षक, एक कुशल रणनीतिकार और अभिनव भारत सोसाइटी के एक निष्ठावान स्तंभ थे। महाराष्ट्र में जागी क्रांतिकारी चेतना का उनके जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। 1857 की क्रांति के बाद भारत में उग्र क्रांति का अत्यंत महत्वपूर्ण मामला था कमिश्नर रेंड की हत्या। रेंड पुणे में प्लेग समिति का प्रमुख था। उसने महामारी नियंत्रण के नाम पर भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार किया, घरों में घुसकर महिलाओं के साथ अत्यंत बुरा व्यवहार किया और संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया। सन 1897 में उसकी हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद से ही महाराष्ट्र में ब्रिटिश विरोधी भावनाएं अत्यंत तीव्र हो गई थीं। तिलक जी के विचारों ने युवाओं के मानस को झकझोर कर रख दिया था। नासिक में इस चेतना को संगठित रूप देने का काम किया सावरकर बंधुओं ने। विनायक दामोदर सावरकर और उनके बड़े भाई गणेश दामोदर सावरकर ने मित्र मेला नामक संगठन की स्थापना की थी जो बाद में अभिनव भारत के रूप में सामने आया। विनायक नारायण देशपांडे नासिक की इसी उग्र राष्ट्रवादी संस्कृति में पले बढ़े थे। वो पंचवटी नासिक के एक स्कूल में प्राथमिक शिक्षक के रूप में कार्यरत थे। शिक्षक के रूप में युवाओं से जुड़ने का सहज अवसर उन्हें प्राप्त था। इसी अवसर का लाभ उठाते हुए वो युवाओं के मन में राष्ट्र चेतना के बीज बोने का काम किया करते थे।

विनायक दामोदर सावरकर और गणेश दामोदर सावरकर द्वारा सन 1904 में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना की गई थी। ये एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन था। नासिक में इसकी स्थापना की गई थी, जिसका उद्देश्य था सशस्त्र विद्रोह

इस संगठन में वैचारिक विमर्श के साथ साथ क्रांतिकारी गतिविधि के तहत हथियार इकट्ठा करना, बम बनाना और संगठन के अन्य निर्देशों के पालन में वो संलग्न रहा करते थे। विवाहित होने के बावजूद वो हर जिम्मेदारी निभाने के लिए तत्पर रहा करते थे। उनके जीवन का मूल मंत्र था, देश पहले फिर परिवार। अपनी जीविका चलाने के लिए वो हथकरघा का व्यवसाय भी संचालित करते थे। उनके इसी हथकरघा केंद्र की तीसरी मंजिल पर एक अंधेरा कमरा था जो क्रांतिकारियों की गुप्त बैठकों का अड्डा बन गया था। यहां विनायक नारायण देशपांडे और उनके अन्य साथी विस्फोटक सामग्री एकत्र करते थे और ब्रिटिश अधिकारियों के विरुद्ध रणनीतियां तैयार करते थे। उन दिनों नासिक का कलेक्टर था AMT जैक्सन। जैक्सन संस्कृत का विद्वान और भारतीय संस्कृति में रुचि रखता था। उसने एक सहनशील ब्रिटिश अधिकारी की छवि बना रखी थी और अपनी विद्वता का उपयोग वो जनता का विश्वास जीतने के लिए किया करता था, जबकि सच तो ये था कि वो जनता का विश्वास जीतकर क्रांतिकारियों की गुप्त सूचनाएं निकलवाकर उन्हें दंडित करने का काम किया करता था। जैक्सन का असली चेहरा क्रांतिकारियों के सामने उजागर हो चुका था। क्रांतिकारी जैक्सन की असल मंशा को पहचान चुके थे, क्योंकि जैक्सन ने ही गणेश दामोदर सावरकर पर देशभक्तिपूर्ण रचनाओं के प्रकाशन का आरोप लगाकर उन पर मुकदमा चलाया था, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें आजीवन कारावास काले पानी की सजा सुनाई गई। उन दिनों क्रांतिकारियों के पक्ष में मुकदमा लड़ने वाले एक प्रसिद्ध वकील थे, वामन सखाराम खरे। जैक्सन ने उन्हें इतना अधिक प्रताड़ित किया कि उन्होंने अपना मानसिक संतुलन ही खो दिया। इसी तरह एक बार एक ब्रिटिश अधिकारी ने एक भारतीय किसान को इतना अधिक पीटा कि किसान की मृत्यु हो गई। जैक्सन को जब इस घटना की सूचना मिली तो उसने इस ब्रिटिश अधिकारी को दंडित करने के बजाय इस मामले को दबा दिया और उस ब्रिटिश अधिकारी को बचाने के लिए उसे स्थानांतरित कर दिया। इन घटनाओं से क्रांतिकारी जैक्सन की वास्तविकता को भली भांति जान चुके थे और वो उसे दंडित करने की योजना में जुट गए। अंग्रेजों के इस अत्याचार को वो और अधिक सहने को अब तैयार नहीं थे।

गणेश दामोदर सावरकर को काले पानी की सजा दिए जाने के कारण अभिनव भारत सोसाइटी के क्रांतिकारी अत्यंत आक्रोशित थे। उन्होंने तय कर लिया था कि अब जैक्सन को और अधिक जीवित रहने का अधिकार नहीं है। विनायक नारायण देशपांडे और कृष्ण गोपाल कर्वे ने उसे मारने की अत्यंत सूक्ष्म और विस्तृत रणनीति बनाई। क्रांतिकारियों ने निर्णय लिया कि जैक्सन पर हमला करने के लिए तीन क्रांतिकारी तैयार रहेंगे। पहले अनंत लक्ष्मण कान्हेरे उस पर गोली चलाएंगे। यदि कान्हेरे विफल रहते हैं तो विनायक नारायण देशपांडे गोली चलाएंगे, और अगर दोनों ही विफल होते हैं तो कृष्ण गोपाल कर्वे अंतिम प्रयास करेंगे। वीर सावरकर ने लंदन से 20 ब्राउनिंग पिस्तौलें गुप्त रूप से भारत भेजी। ये हथियार विनायक नारायण देशपांडे की निगरानी में रखे गए। उन्होंने ही वो पिस्तौल अनंत लक्ष्मण कान्हेरे को दी थी जिससे जैक्सन की हत्या की गई। योजना ये थी कि पकड़े जाने पर केवल अनंत लक्ष्मण कान्हेरे ही पूरी जिम्मेदारी लेंगे, ताकि विनायक देशपांडे और अन्य साथियों की पहचान गुप्त रहे और संगठन सुरक्षित रहे। अनंत लक्ष्मण कान्हेरे औरंगाबाद से नासिक आए। विनायक नारायण देशपांडे ने उन्हें एक सुनसान स्थान पर पिस्तौल चलाने का गहन प्रशिक्षण दिया तथा सटीक निशाना लगाना सिखाया। जब क्रांतिकारियों को ये सूचना मिली कि जैक्सन की पदोन्नति बॉम्बे के कमिश्नर के रूप में हो गई है, तो उन्होंने निर्णय लिया कि उसके नासिक छोड़ने से पहले ही उन्हें जैक्सन से बदला लेना होगा। योजना के क्रियान्वयन के लिए 21 दिसंबर 1909 की शाम चुनी गई, क्योंकि इस दिन जैक्सन के साथी कर्मचारी उसे विदाई देने वाले थे। नासिक के विजयानंद थिएटर में जैक्सन के सम्मान में कार्यक्रम रखा गया था। क्रांतिकारियों ने निर्धारित समय से पहले ही अपना अपना स्थान ले लिया। अब उन्हें प्रतीक्षा थी तो जैक्सन के आगमन की। जैसे ही जैक्सन आया और थिएटर में प्रवेश करने के लिए आगे बढ़ा, अनंत लक्ष्मण कान्हेरे ने गोली चलाई। चारों ओर अफरा तफरी मच गई। जैक्सन को चार गोली लगी और घटनास्थल पर ही उसकी मृत्यु हो गई। अफरा तफरी के कारण अनंत लक्ष्मण कान्हेरे भाग नहीं पाए। उन्हें मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने सघन जांच शुरू की। 23 दिसंबर को विनायक नारायण देशपांडे भी गिरफ्तार हो गए। हालांकि कान्हेरे ने सारा दोष स्वयं पर लेने का प्रयास किया, लेकिन उनके कुछ साथी सरकारी गवाह बन गए और इस हत्याकांड की सारी कड़ियां खुल गईं। ब्रिटिश सरकार ने इस मामले को अत्यंत गंभीरता से लिया और इसके लिए नासिक षड्यंत्र केस के नाम से एक विशेष न्यायाधिकरण का गठन किया। ये मुकदमा सन 1910 में बॉम्बे हाईकोर्ट की विशेष पीठ के समक्ष चला। इसी मुकदमे में विनायक दामोदर सावरकर भी शामिल थे, जिन्हें 2 आजीवन कारावास की सजा देकर काला पानी भेज दिया गया था। विनायक देशपांडे पर मुख्य रूप से हत्या की साजिश रचने और हथियारों के अवैध भंडारण के आरोप लगे। 20 मार्च सन 1910 को न्यायालय ने अपना निर्णय सुनाया, जिसमें विनायक नारायण देशपांडे, अनंत लक्ष्मण कान्हेरे और कृष्ण गोपाल कर्वे तीनों क्रांतिकारियों को फांसी की सजा सुनाई गई। 19 अप्रैल सन 1910 को सुबह 7 बजे इन तीनों क्रांतिकारियों को फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। तीनों के प्रति जनता के उमड़ते सम्मान से ब्रिटिश प्रशासन इतना भयभीत था कि उनके पार्थिव शरीर भी उनके परिवारों को नहीं सौंपे गए। जेल के भीतर ही उनकी अंत्येष्टि कर उनकी अस्थियां ठाणे खाड़ी के पास समुद्र में बहा दी गईं। भारत माता को अपना सर्वस्व अर्पित कर वो तीनों विदा हो गए। नमन ऐसे अमर बलिदानियों को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग। हम रेडियो आजाद हिंद से बोल रहे हैं, देश का चैनल देश के लिए। बने रहिए रेडियो आजाद हिंद के साथ। रेडियो आजाद हिंद से प्रसारित किए जा रहे कार्यक्रमों को आप प्रतिदिन सुन सकते हैं, प्रातः 7 बजे से रात्रि 10 बजे तक। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 MHz पर, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: आजादी के यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्र वंदना के विविध स्वर जन गर्जे, अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति जन गर्जे।
1: मेगाहर्ट्ज पर ये प्रसारण किया जा रहा है रेडियो आजाद हिंद से। आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम इतिहास के पन्नों से।
2: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। और अब समय है कार्यक्रम इतिहास के पन्नों से का।

0: नमस्कार, मैं हूं आपका रेडियो मित्र संदीप शर्मा और आज हम अपने कार्यक्रम इतिहास के पन्नों से इसकी छठी कड़ी में प्रवेश कर रहे हैं। इस श्रृंखला की पांचवी कड़ी में हमने सुना था कि 16वीं सदी में मध्य भारत के एक विशाल भूभाग पर गोंड राजवंश द्वारा स्थापित गढ़ा राज्य पर महाप्रतापी राजा संग्राम शाह की पुत्रवधु वीरांगना रानी दुर्गावती का 1550 ईस्वी से लेकर 1564 ईस्वी तक का शासन था। रानी के लोक उपयोगी कार्यों के कारण उनकी ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी थी। समकालीन दिल्ली के मुगल दरबार पर भी इसका असर दिखने लगा था, चाहे वो सोने और हाथी के रूप में दिया गया लगान हो, गोसाई विट्ठलनाथ जी का गढ़ा आगमन हो, मठ मंदिरों का निर्माण या रानी का सच्चरित्र। मुगल दरबार गढ़ा राज्य की चर्चा करने लगा था और कहीं ना कहीं रानी के ये गुण मुगल दरबार को खलने लगे थे, जिसका परिणाम गढ़ा राज्य पर आक्रमण के रूप में हमारे सामने आया। रानी अत्यधिक चरित्रवान, साहसी और अच्छी योद्धा थी। उनकी तारीफ अबुल फजल बदायूनी फरिश्ता जैसे मुगल दरबारी लेखकों तक ने की है, लेकिन अबुल फजल ने इस ओर भी इशारा किया कि गोंड रानी दुर्गावती मुगल शासक अकबर की अधीनता स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थी। पिछली कड़ी में हमने सुना कि अकबर ने उनका मनोबल तोड़ने के लिए अनेक प्रयास किए और उन्हीं प्रयासों को आगे ले जाते हुए अकबर ने किसी को वहां पर भेजा। किसे भेजा, कैसे भेजा, क्या थी पूरी बात, फिर से हमारे साथ एक बार हैं स्टूडियो में पूजा सक्सेना जी, प्रसिद्ध पुरातत्वविद। और पूजा जी, फिर से एक बार आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: हम सब उत्सुक हैं आपसे आगे की कहानी जानने के लिए।
1: अकबर का एक सेनापति था आसफ खां, हमने पिछली बार सुना। वो मालवा में तैनात था और कड़ा उसकी जागीर थी। आसफ खां गढ़ा राज्य की गतिविधियों की सूचना दिल्ली के मुगल दरबार तक बार बार पहुंचा रहा था। रानी दुर्गावती के बढ़ते हुए सैन्य ताकत और प्रतिष्ठा ने मुगल दरबार को विचलित कर दिया। दोनों राज्यों के बीच तनातनी बढ़ती जा रही थी। यह वो समय था, हमें याद रखना चाहिए, जब गढ़ा के राजा दलपत शाह की मृत्यु हुए कई वर्ष बीत चुके थे।
0: जी हाँ।
1: रानी ने पुत्र वीर नारायण की संरक्षिका बनकर 14 वर्ष तक गढ़ा राज्य को खूब समृद्ध किया था, हम सब जानते हैं। रानी इस समय लगभग 40 वर्ष की एक अधेड़ महिला रही होगी और एक बच्चे की माँ भी।
0: जी।
1: तो उनका संघर्ष और मुगल सेना का संघर्ष, दोनों के बीच में ये एक बेसिक डिफरेंस रहा होगा, ये हमें ध्यान में जरूर रहना चाहिए।
0: बिल्कुल।
1: उधर दूसरी तरफ अगर हम देखें तो आसफ खां एक लड़ाका था। उसके परिवार के लोग हुमायूं की सेना में भी रह चुके थे और कई युद्ध लड़ चुके थे।
0: जी।
1: आसफ खां ने मुगल राज्य के एक भगोड़े अमीर था गाजी खां तन्नूरी,
0: जी,
1: उसको मारा था, जिससे कि इस घटना के बाद जो शासक था अकबर उसकी नजरों में आ गया
0: और वो उनका खास बना और उन्होंने उसको
1: मालवा की कड़ा जागीर दे दी।
0: जी।
1: तो यहाँ से अब आसफ खां जो है उसकी नजर अपने आसपास के जो राज्य थे उन पर लग गई कि वो अपने राज्य का विस्तार जागीर से बड़ा राज्य कैसे बनाए।
0: जी।
1: इस ओर उसका ध्यान था। उसे गढ़ा राज्य कई मायनों में आकर्षित कर रहा था। एक तो ये जनजाति बहुल क्षेत्र था जिसकी बड़ी जनसंख्या जंगलों में रहती थी।
0: बिल्कुल।
1: और अपने काम से काम रखती थी, उन्हें युद्धों से इससे उससे कोई खास मतलब नहीं था। दूसरा, यह राज्य बहुत समृद्धशाली होता जा रहा था, हम सब देख ही रहे थे। हाथी भी एक बड़ा कारण थे, वन संपदा थी, वन संपदा एक बहुत बड़ा कारण बन के आती है इस समय, क्योंकि इस समय हम देख रहे हैं कि बहुत बड़े स्तर पर जहाजों का निर्माण हो रहा है, पानी के जहाजों का। उसके लिए अच्छी किस्म की सागौन की लकड़ी चाहिए।
0: जी।
1: और वो तो हमारे मध्य भारत में बड़ी बहुलता के साथ में होती है, तो वन संपदा भी एक बहुत बड़ा कारण थी, जड़ी बूटियां, दूसरी चीजें। इसके अलावा दक्कन जाने तक का जो व्यापारिक मार्ग था वो भी यहाँ से होकर गुजरता था, और जहां से व्यापारिक मार्ग गुजरता है वहां पर जो कर वसूला जाता है तो उससे राज्य समृद्ध होते हैं। तो हर एक राज्य चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा व्यापारिक मार्गों पर उसका अधिकार हो, तो ये भी एक बड़ा कारण बन के उभरा। वहीं दूसरी तरफ जो संत हुए पुष्टि मार्गीय विट्ठलनाथ जी, जिनके बारे में हमने पिछली काफी चर्चा की, उनका प्रभाव जो बढ़ रहा था, दूसरी तरफ जो धर्मांतरण बड़े स्तर पर रुक रहे थे, इन सब कारणों से एक स्थिति बन रही थी कि गढ़ा और मुगलों के बीच में एक युद्ध के आसार साफ नजर आ रहे थे।
0: और इन्हीं सब कारणों के चलते जो आसफ खां था वो मुगल दरबार को, अकबर को उकसाया करता था कि वो यहाँ पर हमला करें।
1: बिल्कुल। अगर हम जैसे मुगल दरबारी लेखक हैं वदायूनी, अबुल फजल, इनके वर्णनों को पढ़ें तो हमें पता चलता है कि आसफ खां मुगल शासक अकबर को गढ़ा राज्य पर आक्रमण करने के लिए खूब उकसाया करता था
0: जी।
1: लेकिन गढ़ा राज्य के प्रति वह हमेशा मित्रतावत व्यवहार रखता था, यानी कि आसफ खां वहां तो लड़ाई की तैयारियों में था
0: जी, जी।
1: लेकिन यहाँ पर गढ़ा राज्य के साथ वो अपने मित्रता के संबंध दिखाया
0: तो न सिर्फ युद्ध नीति में कुशल था, वो कूटनीति में भी कुशल था।
1: बिल्कुल बिल्कुल, उसने गढ़ा राज्य से शत्रुता का खुलासा ही नहीं किया कभी, इसीलिए गढ़ा राज्य उसके प्रति चिंतित भी नहीं था।
0: हाँ।
1: और वो गुपचुप तरीके से गढ़ा राज्य के संचार साधनों, आय व्यय और गढ़ा राज्य की आंतरिक स्थितियों को जानने के लिए गुप्तचरों और व्यापारियों को लगातार भेजता रहता था। गढ़ा राज्य के अंदर की सारी जानकारियां इकट्ठा करता था
0: जी।
1: और वो ये जानने की कोशिश करता रहता था कि कहाँ कितनी संपत्ति है, कहाँ रखी है, कहाँ कितनी सेना है, कितना असला है, क्या स्थिति है उसकी। ये सब जानकारियाँ वो बहुत लंबे समय से एकत्र कर रहा था, जो गढ़ा के लिए एक मुश्किल उसने बाद में पैदा की
0: जी।
1: धीरे धीरे आसफ खान ने मुगल शासक अकबर को इस बात का यकीन दिला दिया कि गढ़ा जैसा समृद्धशाली राज्य उसके शासनाधिकार में नहीं है। यानी ये एक बड़ी चिंता की विषय है मुगल दरबार के लिए कि गढ़ा जैसा समृद्ध राज्य उसके अधिकार में ही नहीं है। तो अकबर जो है उससे विचलित होने लगा और भारत का जो मध्य भूभाग है वो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, गौंड जनजाति और उसके संसाधनों पर उसका अधिकार नहीं है। इसके बाद आसफ खान ने इस बात पर भी अकबर को मनाना शुरू कर दिया कि गढ़ा राज्य पर आक्रमण के अतिरिक्त कोई विकल्प बचा ही नहीं है, यानी आक्रमण अब करना ही होगा
0: जी।
1: युद्ध अति आवश्यक है। आखिरकार मुगल शासक अकबर ने गढ़ा राज्य पर आक्रमण करने के लिए आसफ खान को सन 1564 में इजाजत दे दी।
0: यहाँ पर आक्रमण करने के लिए अकबर की सेना नहीं आई थी, आसफ खान की ही सेना यहाँ पर आई।
1: हाँ, कभी भी अकबर गढ़ा राज्य पर आक्रमण करने के लिए नहीं आया, उनका जो सेनापति था आसफ खां उन्होंने गढ़ा राज्य पर आक्रमण किया था। आसफ खां पहले से ही गुपचुप तरीके से अपनी सेना को भी सुदृढ़ कर रहा था, उधर अकबर को भड़का रहा था और इधर सेना भी अपनी तैयार कर रहा था। हाथी घोड़े पैदल सैनिक को कई वर्षों तक एकत्र करता रहा। अकबर की इजाजत मिलते ही भारी भरकम मुगल सेना का साथ भी उसको मिल गया। यह बात जानकर कि मुगल सेना गढ़ा राज्य पर आक्रमण कर रही है तो जो छोटे छोटे राज्य थे जो अकबर को लगान दिया करते थे, अप्रत्यक्ष रूप से मुगल राज्य के अधीन थे, उन सब ने भी अपनी सेनाएं आसफ खां को दे दी। तो इस तरह आसफ खां के पास एक बहुत ही विशाल सेना हो गई जो कि बड़े हाथियों से, घोड़ों से और हथियारों से लैस थी।
0: तो क्या पूजा जी ये भी कह सकते हैं कि इसके पीछे खुद आसफ खां की जो महत्वाकांक्षा थी वो भी जोर मार रही थी, क्योंकि खुद चाहता था कि वो भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह गढ़ा राज्य का सिरमौर बन जाए।
1: बिल्कुल, आसफ खां अपनी जगह बनाने में लगा हुआ था
0: जी।
1: और उसने अकबर का सहारा लिया।
0: बिल्कुल,
1: अकबर के लिए ये एक कहीं विचलित करने वाली बात थी कि भारत का जो मध्य भूभाग है वो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है
0: जी।
1: तो ये सब मिलकर ही तो स्थितियां पैदा कर रहे थे।
0: और उस समय रानी दुर्गावती कहाँ थी?
1: जिस समय आसफ खां गढ़ा राज्य के लिए षड्यंत्र रच रहा था उसी समय रानी दुर्गावती गढ़ा राज्य को समृद्ध करने में लगी हुई थी
0: जी।
1: जब आसफ खां दमोह की तरफ आ गया उस समय तो रानी सिंगौरगढ़ में थी और उन्हें इस षड्यंत्र की भनक तक नहीं थी, क्योंकि वह तो मित्रवत व्यवहार करता था।
0: बिल्कुल।
1: तो रानी ने नहीं सोचा कि इस तरीके का कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है। रानी के पास अचानक से सूचना पहुंची कि आसफ खां दमोह तक पहुंच चुका है। इससे रानी की सेना के खेमे में हलचल मच गई। उस समय रानी युद्ध के लिए तैयार तो थी नहीं
0: जी।
1: कहते हैं कि उनकी सेना में उस समय केवल 500 सैनिक थे।
0: अच्छा।
1: लेकिन गोंड रानी दुर्गावती ने इस कठिन समय में भी साहस नहीं खोया और मुगल सेना का सामना करने के लिए आगे बढ़ी
0: जी।
1: रानी को छोटी सी सेना के साथ युद्ध के लिए पलायन करने की तैयारी देखते हुए उनके जो मंत्री थे आधार कायस्थ, उन्होंने रोका और कूटनीति का सहारा लेने को कहा। इस समय गोंड सेना में सैनिकों की कमी थी, युद्ध की तैयारी थी नहीं
0: जी।
1: और सामने विशाल मुगल सेना का होना चिंताजनक तो था।
0: बिल्कुल।
1: इसलिए ये सलाह दी गई कि इस समय रानी युद्ध के लिए पलायन ना करें
0: जी।
1: लेकिन रानी को यह सलाह तो दी गई कि वह युद्ध में नहीं जाएं, पर रानी के लिए युद्ध में ना जाना कायरता का प्रदर्शन करने जैसा था, यह उनके आदर्शों के भी खिलाफ था
0: जी।
1: युद्ध से मुंह मोड़ लेना ये तो सवाल ही नहीं उठता था उनके लिए।
0: बिल्कुल, और इसीलिए हम उन्हें रानी दुर्गावती के नाम से आज भी संबोधित
1: जी
0: करते
1: हाँ।
0: हैं।
1: रानी दुर्गावती ने सोचा कि अपमानजनक जीवन जीने से अच्छा है सम्मानजनक तरीके से मर जाना।
0: वाह क्या बात है। तो फिर क्या उन्होंने मतलब ठान तो लिया ही था, तो क्या सामना किया उन्होंने आसफ खां की सेना का?
1: रानी अब गढ़ा राज्य की आन बान की रक्षा के लिए युद्ध में जाने की तैयारी कर चुकी थी
0: जी।
1: रानी का साहस देखकर अब उनकी सेना में लगभग 2000 सैनिक सम्मिलित हो गए। कहां 500 की सेना थी
0: जी।
1: और लोग अपने आप से आए उनकी सेना में सम्मिलित होने के लिए। तो रानी ने अपनी सेना को तैयार कर लिया और सेना कूच कर गई
0: जी।
1: जिस ओर मुगल सेना बैठी हुई थी उस ओर उन्होंने 4 पड़ाव पार भी कर लिए।
0: अच्छा।
1: इसकी सूचना आसफ खां को लग गई और वो भी आगे बढ़ रहा था
0: जी।
1: तो जैसे ही सूचना मिली तो वो दमों में ठिटक गया।
0: अच्छा।
1: वहीं रुक गया
0: जी। जी
1: उसने अपने संदेश वाहक मुगल दरबार में भेजे
0: जी,
1: अकबर से और अधिक सेना की टुकड़ियां भेजने की मांग की।
0: लेकिन पूजा जी पहले ही उसके पास 10,000 लोगों की सेना थी और रानी तो यहाँ पर सिर्फ 2000 सैनिक लेकर के चलनी थी, तो आसफ खां को ये अंदाजा नहीं था कि रानी के पास सेना कम है, या वो डरा हुआ ज्यादा था?
1: रानी के शौर्य की गाथाएं वो सुन चुका था
0: जी,
1: और गोंड भी बड़े पराक्रमी होते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो संभवतः यही कारण था कि इतना अधिक आंतरिक जानकारियां जुटाने के बाद भी
0: जी।
1: और 10,000 की सेना लेने के बाद भी उसने और टुकड़ियों की डिमांड अकबर के सामने रखी
0: जी।
1: अगर हम ऐतिहासिक ग्रंथ देखें जैसे आईने अकबरी है जिसे अबुल फजल ने लिखा है, तो हमें उसमें पढ़ के पता चलता है कि आसफ खां की सेना में हाथी घोड़े पैदल सैनिक सहित 10,000 की सेना थी।
0: पहले से ही थी
1: जी। पहले से ही थी। इसके अलावा मुगल शाही आदेश से जो मुगलों के जो इफ्तादार हुआ करते थे, जैसे नाम मिलते हैं हमको मुहब्बिब अली खान, मोहम्मद मुराद खान, वजीर खान, बाबाई काकशाल, नाजिर बहादुर और आक मोहम्मद, ये सभी जो हैं इफ्तादार थे मुगल दरबार के
0: जी।
1: और ये सभी भी अपनी सेनाएं लेकर अब आसफ खान से मिल गए।
0: सैन्य सहायता आसफ खान को मिल गई, तो उसके बाद उनके पास कितने सैनिक हो गए?
1: हाँ, अगर हम तबकाए अकबरी नाम की एक किताब है उस समय की वो देखें तो हमें पता चलता है कि आसफ खां की सेना में घुड़सवार पैदल सैनिक सहित लगभग 50,000 की सेना का उल्लेख है।
0: ओह, कहां रानी के पास सिर्फ 2000 की सेना थी और ये 50,000 लोगों की सेना लेकर आ रहा था, जिसमें पैदल सैनिक भी थे और हाथी घोड़े मतलब सारे लोग थे, तमाम लाव लश्कर मौजूद था
1: जी हाँ।
0: तो फिर क्या उसने रानी के आने का वहां इंतजार किया या रानी की तरफ कूच किया?
1: रानी दुर्गावती अपनी सेना के साथ दमों की ओर कूच कर रही थी
0: जी।
1: उधर दूसरी ओर तेजी से आता हुआ आसफ खां यह जानकर कि गढ़ा की सेना कूच कर गई है दमों में रुक गया था
0: जी।
1: तो गढ़ा राज्य के मंत्रियों ने रानी दुर्गावती को यह सलाह दी कि किसी सुरक्षित स्थान पर सेना को रुक जाना चाहिए
0: जी।
1: और वहां हमें अपनी सेना का एकीकरण कर लेना चाहिए क्योंकि अभी अभी बहुत सारे सैनिक आकर जुड़े हैं, तो सेना का एकीकरण करना बहुत जरूरी था
0: जी।
1: तो रानी को यह परामर्श ठीक लगा
0: जी।
1: और उन्होंने अपनी सेना को गढ़ा के पश्चिम में स्थित सघन जंगलों की ओर मोड़ लिया
0: जी।
1: इन जंगलों में अनेक वनवासी गोंड राज्य पर आई विपदा की जानकारी पाकर सेना में शामिल होने के लिए अपने आप ही चले आए
0: जी।
1: इस तरह रानी की सेना में स्वेच्छा से अनेक लोग जुड़ने लगे। अब लगभग 2000 की सेना रानी के पास में
0: इस तरह से 2000 लोग हो गए थे 500 से जी।
1: तो यहाँ जंगलों में सेना का एकीकरण करने के बाद रानी ने फिर दक्षिण पश्चिम की तरफ कूच किया
0: जी।
1: और वह एक स्थान पर पहुंची जो नरई के नाम से जाना जाता है।
0: अच्छा।
1: नरई नर्मदा नदी और गौर नदी के बीच की एक घाटी है
0: जी।
1: ये घाटी चारों ओर से पहाड़ियों से घिरी हुई है
0: जी।
1: गढ़ा की सेना ने यहाँ नरई में अपना शिविर गाड़ दिया। अबुल फजल ने भी नरई के बारे में लिखा है, वहाँ प्रवेश करना और वहाँ से बाहर आना इस घाटी से बहुत ही मुश्किल था
0: जी।
1: ऐसा अबुल फजल ने लिखा। इस स्थान के चारों ओर ऊंचे पर्वत हैं, सामने गौर नदी बहती है, ये भी अबुल फजल ने लिखा है। दूसरी ओर तो नर्मदा जोर जोर से पहाड़ों से टकराती हुई बहती है, यानी इस दुर्गम स्थान का बड़ा विस्तृत वर्णन अबुल फजल ने आईने अकबरी में किया। और उसने ये भी लिखा कि केवल एक सकरा सा रास्ता है जो बसाहट की तरफ जाता है।
0: तो निश्चित रूप से ये परिस्थितियां, ये जो स्थान था, ये तो रानी दुर्गावती के लिए एक प्लस पॉइंट था वहां पर, और उन लोगों के लिए तो निश्चित रूप से बड़ा ये दुरूह कार्य रहा होगा, क्योंकि वो सब जानते थे कि गोंड जनजाति के लोग हैं, जंगलों का रास्ता जानते हैं, दुर्गम स्थानों को बहुत अच्छे से पहचानते हैं।
1: हर एक राजवंश का अपनी प्रकृति को जानना उसका एक प्लस पॉइंट तो होता ही है
0: जी।
1: साथ ही हर एक राजवंश का अपनी एक तकनीक भी होती है युद्ध की।
0: बिल्कुल।
1: तो इनकी तकनीक में प्रकृति का उपयोग करते हुए लड़ना शुरू से ही शामिल था
0: जी।
1: तो नरई को चुनना रानी की एक स्ट्रेटेजी का एक बहुत अच्छा भाग था
0: जी। तो इससे मालूम चलता है कि जो रानी दुर्गावती थी वो युद्ध की रणनीति बनाने में भी अत्यधिक कुशल थी
1: जी। हाँ।
0: तो श्रोताओं, मतलब इसका कि देखिए, जो रानी दुर्गावती थी वो युद्ध नीति में भी बहुत कुशल थी, रणनीति बनाने में बहुत कुशल थी। उन्हें मालूम था कि उनके पास कितनी कम सेना थी। पहले 500 लोग थे और अब तो जो उनके पास सैनिक आकर के भी जुड़े, जैसे कि हमें पुरातत्वविद पूजा जी ने बताया कि जो 2000 लोग भी हुए वो कोई कुशल योद्धा नहीं थे, वो सिर्फ गोंड जनजाति के ऐसे लोग थे जो गढ़ा राज्य के रहवासी थे, और वो रानी की भक्ति से सराबोर होकर, रानी की भक्ति से प्रभावित होकर उनकी सेना में जुड़ गए। तो आगे भी ये बात जारी रहेगी। हम कार्यक्रम इतिहास के पन्नों से सुन रहे हैं। हमारे साथ पुरातत्वविद पूजा सक्सेना जी हैं, जो लगातार हमें बहुत इंटरेस्टिंग जानकारियां दे रही हैं। और अब युद्ध तक बात आ चुकी है, युद्ध का बिगुल बज चुका है, आसफ खान ने धोखा दे दिया है, और अब देखते हैं कि रानी किस तरह से आसफ खान की एक लंबी चौड़ी सेना का मुकाबला करती हैं। उसके लिए आपको सुनना होगा हमारा अगला एपिसोड, जिसके लिए हम आपको जल्द ही मिलेंगे। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम इतिहास के पन्नों से, हम बोल रहे हैं रेडियो आजाद हिंद से। आपने ट्यून किया है 90.8 मेगाहर्ट्ज़, देश का चैनल, देश के लिए।

0: नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। मैं हूं आपकी रेडियो सखी सुनीता सिंह, लेकर उपस्थित हूं हमारी सनातन यौगिक परंपरा पर प्रकाश डालता कार्यक्रम योग संवाद। श्रोताओं, योग संवाद कार्यक्रम में आज हम चलेंगे उस गहन आध्यात्मिक पथ पर जहां जीवन के बंधनों से परे उसके वास्तविक अर्थ को समझा जा सके। आप जानते ही हैं कि पिछले दिनों हमने योग वासिष्ठ पर चर्चा आरंभ की है इस कार्यक्रम में, और इसके वैराग्य प्रकरण के उस बिंदु पर हम खड़े हैं जहां प्रश्न है कि क्या सचमुच ये जगत वैसा ही है जैसा हम देखते हैं? क्या ये संसार सत्य है या केवल मन की रचना, एक माया जाल? प्रश्न है कि क्या वासनाएं ही हमें बांधती हैं और उनसे परे ही मुक्ति का द्वार खुलता है? तो आज इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे जीवन मुक्त के स्वरूप पर। कैसी है वो स्थिति जहां मन न बंधता है, न विचलित होता है, जहां व्यक्ति संसार में रहते हुए भी उससे परे रहता है? इस चर्चा के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं योग अध्यात्म और जीवन विज्ञान विशेषज्ञ डॉक्टर शशिकांत मणि त्रिपाठी। नमस्कार शशिकांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में।
1: नमस्कार।
0: पिछले अंक में हमने चर्चा की थी कि वाल्मीकि जी ने भरद्वाज से कहा कि वो राम कथा सुने जिसे सुनकर जीवन मुक्त हो जाएंगे वो।
1: जी।
0: तो मेरे मन में ये एक सवाल था कि जीवन मुक्त की जो स्थिति है वो क्या होती है, ये आप बताएं हमारे सुनने वालों को।
1: देखिए, आजकल राम कथा का जो श्रवण लोग कर रहे हैं
0: जी,
1: वो तात्विक चिंतन पर बात नहीं हो रही है। उन कथाओं को सुन करके उसको अपने जीवन में अंगीकार करने की जो बात आती है, वहां पर आदमी उस प्रयोग में उतरना नहीं चाहता। भरद्वाज जी वाल्मीकि जी से कहते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न और यशस्विनी सीता देवी, इस संसार में संकट में रह करके उन्होंने कैसा व्यवहार किया था उसका मुझे वर्णन करिए, ताकि हम वैसा ही व्यवहार करके अपने को दुख से मुक्त कर सकें।
0: जी।
1: अब देखिए, भरद्वाज जी की जिज्ञासा है कि वैसा ही व्यवहार करें। यहां हमने राम के व्यवहार को राम का व्यवहार मान करके अपने व्यवहार को तनिक भी उससे जोड़ने या परिवर्तित करने का प्रयास नहीं किया। परिणाम यह है कि हम संसार संकट में होने के बाद भी और कभी भी उससे मुक्त होने की तरफ हम अग्रसर भी नहीं हो पाते। राम जी का भी ये सवाल था कि जीवन मुक्त क्या होता है और कैसे हम यहाँ व्यवहार करें, क्योंकि व्यवहार करते हुए जो लोग दिखाई देते हैं ये सारे लोग कर्म करने के बाद भी तो दुखी हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो ऐसे में कर्म किसी दुख का अंत कर देता है या कर्म से दुख को समाप्त कर सकते हैं, ये अवधारणा राम जी ने कहा ये मेरे समझ में नहीं आया, तो इसलिए उन्होंने कहा कि मैं कैसे व्यवहार करूं ये मुझे बताइए। तो वहां पर वशिष्ठ जी कहते हैं कि तुम जीवन मुक्त की तरह व्यवहार करो। तो ये जो ग्रंथ है ये जीवन मुक्त की स्थिति क्या होती है, उसका स्वरूप कैसा होता है, इन तमाम सारे विषयों पर, ये उसके सूक्ष्मतम रहस्यों पर आपका ध्यान आकर्षित करता है।
0: क्या इसी जीवन में आत्मबोध संभव है, और अगर है तो कैसे?
1: इसके लिए वाल्मीकि जी कहते हैं कि ये ग्रंथ जो योग वासिष्ठ है, इस शास्त्र का ज्ञान होने पर इसी जीवन में आत्म तत्व का बोध हो जाता है, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस शास्त्र को आप पढ़ें और उसके बाद आपके जीवन में आत्म तत्व का बोध ना हो। अब बात हम करें कि आत्म तत्व के बोध के बाद क्या स्थिति बनती है।
0: जी।
1: आप देखें तो जैसे वो उदाहरण देते हैं कि जैसे आकाश नीला दिखाई देता है लेकिन नीला होता नहीं है, ऐसे ही ये जगत निर्गुण निराकार ब्रह्म में दिखाई देता है, लेकिन दिखाई देता है किस कारण से? अज्ञानता से। अगर ज्ञान पूर्वक आप तात्विक चिंतन करें तो आपको ये पता चलेगा कि जो आपके शरीर की भी जो तमाम इंद्रियां हैं, 11 इंद्रियां जिनसे आप व्यवहार करते हैं, वो इंद्रियां उस चेतन तत्व की वजह से क्रियाशील हैं। यानी अवचेतन तत्व का कोई मतलब न गुण है न कोई स्वरूप है, वो निर्गुण निराकार है। क्योंकि कोई पूछे कि आत्मा का क्या आकार है, आज तक विज्ञान इसको खोज नहीं पाया, और बल्कि जिन लोगों ने हार्डकोर आप कॉन्शियसनेस को जानने की कोशिश भी की वो वहां तक पहुंचे ही नहीं, और फिर वो शरीर का ही अध्ययन करने में लग गए कि कैसे शरीर में परिवर्तन होता है, किस सोच का कैसा प्रभाव पड़ता है। मनोविज्ञान तो आजकल इसी न्यूरोसाइंस का ही अध्ययन करने में लगा है, जबकि वो मन से शुरू हुआ था, आत्मा से शुरू हुआ था। तो ऐसे में जिस आत्मा की वजह से शरीर की समस्त क्रियाएं हो रही हैं जो दिखाई दे रही हैं, जिसको आप जान सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन जिसकी वजह से ये कार्यरत हैं, क्रियाशील हैं, उसको तो नहीं जाना जा सका या उसका कोई रूप बताया नहीं जा सकता। तो उन्होंने कहा कि जैसे ये नीलिमा आकाश में दिखती है, लेकिन जो ज्ञानी लोग हैं वो कहते हैं ये नीलिमा आभासित हो रही है, ऐसे ही जो जीवन मुक्त पुरुष है वो संसार को उसी निर्गुण निराकार ब्रह्म में देखता है, यानी सगुण साकार का उसके जीवन पर कोई बहुत गहरा प्रभाव नहीं पड़ता, यही जीवन मुक्ति है। और हम लोग पूरे समय गुण के साथ व्यवहार करते हैं और गुण को ही अपना रूप मान लेते हैं, तो फिर हम दुख को दूर करने के लिए चाहे जितने भी प्रयास कर लें, लेकिन दुख से मुक्त नहीं हो पाते। जीवन मुक्ति का अर्थ होता है दुख का आत्यंतिक अभाव, एकदम अभाव हो जाना। और वो कैसे होगा आपने पूछा, तो वो कहते हैं कि ये ग्रंथ का अगर आपने ठीक से चिंतन किया, श्रवण मनन निधिध्यासन किया, तो निश्चित ही है कि आप जीवन मुक्त हो ही जाएंगे, आत्मबोध आपको हो जाएगा।
0: अच्छा, इस संसार के विषय में भी बहुत सी बात इसमें है कि माया है या भ्रम है
1: जी।
0: तो जो भी दृश्य हमारे सामने है संसार का, उस दृश्य से ही हमारे जो भाव अनुभव हैं वो परिचालित होते हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो मन से जो दृश्य का ये प्रपंच है, इसका अभाव कैसे हो सकता है, कैसे हम इससे प्रभावित ना हों?
1: आप देखिए, जब दृश्य से प्रभावित होकर के आप व्यवहार करेंगे, तो ऐसे में आप कहें कि मैं दृश्य से अप्रभावित कैसे रहूं, क्योंकि आपका तो पूरा जो ध्यान है वो दृश्य का परसेप्शन बनाने में है, उसी के आधार पे आप अपने कॉन्सेप्ट बनाते हैं और व्यवहार करते हैं, तो वहां तो संभव नहीं है। लेकिन अगर आपको इस तत्व का बोध हो चुका है कि ये निर्गुण निराकार ब्रह्म में ये जगत जो है प्रतीत हो रहा है, तो आप इस दृश्य प्रपंच से मुक्त हो सकते हैं। इसके लिए वाल्मीकि जी ने कहा भरद्वाज जी से कि यह दृश्य जगत वास्तव में है ही नहीं। ऐसा बोध होने पर जब मन से दृश्य प्रपंच का मार्जन अर्थात निवारण होता है, तो पूरा अभाव हो जाता है, तब परम निर्वाण रूप शांति का स्वतः अनुभव होने लगता है। अब देखिए कितनी बड़ी बात इन्होंने कही, कहा कि जब दृश्य प्रपंच का निवारण होगा तो स्वतः ही आपके अंदर शांति की अनुभूति होना प्रारंभ हो जाएगी। और यहां पर क्या होता है कि दृश्य प्रपंचों के द्वारा ही हम शांत होने का प्रयास करते हैं। हम सोचते हैं कि दृश्यों को बदल दें, परिस्थितियों को बदल करके भविष्य में हम शांति का अनुभव करना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं कि पूरे समय दृश्य प्रपंच में ही उलझे हुए हैं, और शांति महज हमारा एक ख्याली पुलाव बन के रह जाता है जो ख्यालों में है। कारण क्या है, क्योंकि हम दृश्य प्रपंचों के साथ शांत नहीं हो सकते। शांत होने के लिए दृश्य प्रपंचों का अत्यंतिक अभाव होना चाहिए, और इस अभाव के लिए आपको इस तत्व का ज्ञान होना चाहिए कि ये सब कुछ निर्गुण निराकार। अब निर्गुण निराकार का मतलब देखिए कितनी सुंदर बात है, हालांकि कुछ लोग हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे संत निर्गुणिया संप्रदाय के हुए, लेकिन निर्गुणिया संप्रदाय में भी आप गुणों से ही उस निर्गुण का ज्ञान कर रहे हैं। तो अब निर्गुण का मतलब ये हुआ कि आप दृश्य प्रपंचों के प्रभाव में वैसे ही ना आए, जैसे आप देखते होंगे चलचित्र जब हम देखते हैं, सिनेमा देखते हैं, तो पर्दे पर सारी घटनाएं घटती हैं, लेकिन पर्दा सारी घटनाओं से अछूता है। ठीक ऐसे ही हम अपने जीवन में मन में चलने वाले दृश्य प्रपंच, क्योंकि मन में दृश्य प्रपंचों का ही हमेशा संचार प्रभाव रहेगा, तो ये भी विचार करें कि ये सब एक पर्दे पर चल रही एक प्रक्रिया है, जहां पर विभिन्न तरह के लोग अपने अपने पात्र का अभिनय कर रहे हैं, और इसको तो कई
0: मैं कहने जा रही थी किसी दृष्टि से देखें कि ये जो दुनिया है, रंगमंच है, हम सभी अपनी अपनी भूमिकाओं में हैं, इस दृष्टि से देखना ही इस प्रपंच से दूर होना है।
1: बिल्कुल ठीक कहा आपने। आप एक अभिनेता की भांति से, अभिनेता जब किसी दृश्य को अपने अभिनय में उतारता है, तो ऐसे उतारता है जैसे लगता है उसके जीवन की ही घटना है, उसके जीवन में वो हो रहा है। लेकिन विवेकानंद जिसको कहते थे, कहते थे कि जिस प्रकार जैसे एक अभिनेत्री अगर एक विधवा की भूमिका निभा रही हो, तो जैसे ही उसका जो रोल है वो पूरा होता है, तो वो प्रसन्न होकर हंसने लगती है। लेकिन वही एक महिला जो अपने जीवन में विधवा हो गई है, वो उसको जीवन भर उस दुख के साथ जुड़ी रहती है, तो उसने उस दुख का अभिनय में प्रयोग किया, और यहां हमने उसको

0: क्योंकि वो उस स्वरूप को जानते थे। अगर वो उस दृश्य प्रपंच का हिस्सा बन गए होते तो आप आज भी रामकथा का एक बार चिंतन करके देखें तो उन दुखों को हम अपने जीवन में अगर मतलब घटित होता देख लें तो शायद हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे।
1: बिल्कुल, बिल्कुल,
0: है ना। तो वो कथा है ये कि अगर उसको आप अपने जीवन में देखें तो उन्होंने भी तो व्यवहार किया और एकदम कहते हैं आदर्श व्यवहार किया, कि ऐसा व्यवहार किया कि अगर भगवान भी धरती पे आए तो वो शायद उन्हीं जैसा व्यवहार करेगा, उनसे श्रेष्ठ व्यवहार नहीं करेगा। ये उनकी जीवन मुक्तता है।
1: बिल्कुल
0: जी।
1: अच्छा, मोक्ष की चर्चा बहुत होती है, इस ग्रंथ में भी मोक्ष की चर्चा है, तो मैं चाहती हूँ कि हमारे सुनने वालों को आप बताएं कि उत्तम मोक्ष क्या है।
0: उत्तम मोक्ष का अर्थ है कि वासना का आत्यंतिक अभाव। वासना शब्द पर जरा हम ध्यान दें कि हम मूल रूप से विषयों में वास करते हैं, हमारी समस्त इंद्रियां जो हैं, इंद्रियों का जो प्राण है वो उसके विषय हैं। बिना विषयों के उत्प्रेरणा के आप देखेंगे आपकी इंद्रिय न किसी विषय के प्रति आसक्त होगी न किसी के प्रति द्वेष भाव रखेगी। तो अंततः ये राग और द्वेष जो भाव उत्पन्न हो रहा है उस विषय के साथ जो सुख और दुख की अनुभूति हुई है उसी स्मृति के आधार पर हो रहा है। तो वासना का मतलब कि अब आपका वास विषयों में नहीं है, यानी विषय का जो अत्यंतिक अभाव है वो है उत्तम मोक्ष। मोक्ष लोग सोचते हैं कि ये शरीर छूटने के बाद कोई ऐसा लोक है या मन की कोई ऐसी अवस्था है। मन की अवस्था नहीं है, मन का एक ऐसा बोध है जिस बोध में मन शांत होता है। शांत मन कब होता है? जब विषयों का अत्यंतिक अभाव है। तो कई बार क्या होता है कि हम शब्दों का अर्थ अपने हिसाब से या आसपास के लोगों को देखते हुए ग्रहण कर लेते हैं, इसीलिए आचार्य शंकर कहते थे कि इसके लिए श्रुति प्रमाण है। तो ये श्रुति ग्रंथ है कि आप इसमें जाएं, चिंतन करें और तब आप जानें कि वास्तव में मोक्ष क्या है। तो जो उत्तम मोक्ष है वो विषयों का एकदम अभाव हो जाना, यानी विषयों में वासना। कहते हैं वासना कहाँ है? विषयों में है,
1: विषयों
0: है ना। तो विषय जब पूरी तरीके से आपको आकर्षित और विकर्षित न कर पाए, राग द्वेष की जो प्रवृत्ति है वो शांत हो जाए, तो आप उत्तम मोक्ष को प्राप्त हो चुके, ऐसा वाल्मीकि जी का कहना है।
1: तो विषयों में वासना हो, ये आपने बताया कि ये वासना है जिससे मुक्ति की बात की। अच्छा, वासना के भी प्रकार हैं क्या?
0: हाँ, वासना के बिल्कुल प्रकार है। आपने अच्छा सवाल किया, तो ग्रंथ में भी ये बात आती है कि वासना मूल रूप से दो प्रकार की होती है, शुद्ध वासना और अशुद्ध वासना, मलिन वासना जिसे कहते हैं। तो इसी प्रकार मतलब आप देखेंगे जितनी भी आपकी विषयों में राग द्वेषात्मक प्रवृत्ति है, इसको अगर मूल रूप से आप देखें तो जो द्वेष वाला हिस्सा है वो मलिन वासना है, जो राग वाला हिस्सा है वो शुद्ध वासना है।
1: मैं चाहती हूँ इसको शुद्ध वासना और मलिन वासना को थोड़ा विस्तार से आप हमारे सुनने वालों के लिए बताएं। देखिए,
0: मलिन वासना जन्म की हेतुभूत है, यानी जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में अर्जुन
1: जी,
0: से
1: जी।
0: अब आप देखिए, वो कहते हैं कि जिसने जन्म लिया उसके साथ एक चीज तो निश्चित हो गई ना, मृत्यु। और देखें उस पूरे जीवन यात्रा में हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि आपको लगता है कि आप जन्मदिन मना रहे हैं, लेकिन सच ये है कि आप मृत्यु के प्रति अग्रसर हैं, आपकी पूरी यात्रा मृत्यु की तरफ बढ़ रही है। तो कहते हैं जन्म मृत्यु जरा बुढ़ापा भी, बुढ़ापे की तरफ भी बढ़ रहे हैं हम, और व्याधि तो शरीर में है ही, ठीक है। तो ये दुख और दोष, यानी शरीर में जो ज्ञानी पुरुष है, जो जीवन मुक्त है या जिसने उत्तम मोक्ष की प्राप्ति कर ली है, वो हमेशा उसमें दुख दोष का दर्शन करता है। तो ये मलिन वासना है, ये वासना आपके जन्म की हेतुभूत है, यानी इसी वजह से व्यक्ति का जन्म होता है। और जन्म होता है तो फिर जन्म के भोग भी भोगने पड़ते हैं, जन्म होता है तो कर्म भी करने पड़ते हैं, ये मलिन वासना का प्रभाव है। और एक जो शुद्ध वासना है वो जन्म का नाश करने वाली है। अब ये देखिए, जन्म का नाश करने वाला मतलब आपको मोक्ष देने वाली है, फिर आपके अंदर कोई ऐसा भाव न रहे कि जिसको भोगने के लिए, जिसकी आसक्ति या जिसके द्वेष की वजह से आप फिर जन्म ग्रहण करें। तो ये शुद्ध वासना ऐसी वासना है जो आपको उत्तम मोक्ष दे देती है। तो ये दो प्रकार की वासना है। लेकिन अब उत्तम मोक्ष के लिए जो प्रयास है, इस पर भी बड़ी गहरी मतलब आगे ग्रंथों में ये बात आएगी कि कई बार क्या होता है कि हम लोग देखते हैं कि हम लोग कई बार मोक्ष के लिए ही कर्म करने पर तत्पर हो जाते हैं। तो वो भी एक प्रकार की शुद्ध वासना भी एक प्रकार का बंधन बन जाती है। तो इसमें हमें सतर्क होना है कि अगर शुद्ध वासना, जैसे आपने अरिष्टनेमी की बात देखी, अरिष्टनेमी कहते हैं कि अगर तुम्हारे स्वर्ग में जो अपने से ऊंचे हैं उनके प्रति असहिष्णुता, जो अपने बराबर हैं उनके प्रति स्पर्धा का भाव
1: जी, जी।
0: और जो अपने से नीचे हैं उनको देख करके संतोष होता है, तो ऐसे स्वर्ग की आकांक्षा हमें क्यों हो?
1: ऐसी तो धरती भी है,
0: ऐसी धरती है। तो भाई कितना सुंदर है कि मैंने तुमने इसी धरती के चित्त से स्वर्ग को भी निर्मित किया, और एक ऐसा स्वर्ग निर्मित किया जिसको आप इस धरती पर प्राप्त होने से वंचित रह गए, तो वहां भी आपने एक वासना बना ली। तो स्वर्ग भी एक तरह से देखें तो वासना ही है, कह सकते हैं एक शुद्ध वासना है जिसके लिए दान धर्म तप और तमाम क्रियाएं की जाती हैं। लेकिन जब अरिष्टनेमी जैसा जिसको आत्मज्ञान के लिए इंद्र ने कहा देवदूतों से कि आप ले जाओ, अब तो ये आत्मज्ञान का पात्र है। आत्मज्ञान जो आपने भी पूछा कि मतलब क्या इस जीवन में आत्म तत्व का बोध हो सकता है, तो आत्म तत्व के बोध का अधिकारी वही व्यक्ति होता है जिसकी शुद्ध वासना में भी अब कोई रुचि नहीं रह जाती।
1: जी, जी।
0: मलिन वासना तो वो हटा ही चुका है, लेकिन जो जन्म का नाश करने वाली जो शुद्ध वासना है ये भी करके वो मुक्त हो गया। मतलब अब उसको जन्म का नाश करने वाली वासना के लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, वो मुक्त है, वही उत्तम मोक्ष है।
1: जी जी
0: जी।
1: अच्छा, ये जो ग्रंथ है भगवान श्री राम के जीवन का एक महत्वपूर्ण समय है किशोरावस्था का, एक विशेष बिंदु पर वो खड़े हैं जहां से वैराग्य उनके भीतर आता है और योग वासिष्ठ खड़ा है ग्रंथ जैसी जमीन पर।
0: जी जी।
1: तो मैं जानना चाहती हूँ कि हम वहां पहुंचे जहां भगवान श्री राम गुरुकुल से वापस आते हैं, और पहली याचना अपने पिता से वो क्या करते हैं?
0: पहली याचना उन्होंने अपने पिता से कही, श्री राम जी कहते हैं कि हे स्वामी महाराज, मेरे मन में तीर्थों, देव मंदिरों, वनों और आश्रमों का दर्शन करने के लिए बड़ी उत्कट आकांक्षा हो रही है।
1: जी।
0: आपके समक्ष ये मेरी पहली याचना है, आप इसे सफल करने योग्य हैं, और संसार में ऐसा कोई याचक नहीं है जिसे अभिष्ट वस्तु देकर आपने उसका अनादर किया। तो ऐसे में मुझे ये अवसर दें कि मैं तीर्थाटन करूं। अब देखिए, हम लोग भी तीर्थाटन करते हैं
1: जी जी।
0: और हम लोग वहां भी अपेक्षा लेके जाते हैं संसार की,
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: कि संसार की सिद्धि हो, या जैसे संसार के लोगों की यात्रा आप देखें, जहां भी कहीं लगता है कि हमारे मनोकामना की सिद्धि होगी तो हम तीर्थ यात्रा करते हैं। यहाँ राम जी निष्काम होने के बाद तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं, कह सकते हैं ये ज्ञान तो है उनको, लेकिन वो कहते हैं मैं देखना चाहता हूँ। तो कहते हैं ज्ञान जब तक व्यवहार का विषय नहीं है तब तक आपको मैं कहूं कि आपने उसकी लर्निंग कर ली या उसका आपको अधिगम हो गया, ये मनोविज्ञान भी नहीं मानता। कोई भी ऐसा ज्ञान जो आपके व्यवहार को परिमार्जित कर दे, व्यवहार को परिवर्तित कर दे, रूपांतरित कर दे, तब तो उस ज्ञान का प्रभाव आप पर हुआ, अन्यथा आपका व्यवहार जैसा था वैसा ही है। तो आपने ज्ञान लेकर के किया क्या? पर उपदेश कुशल बहुतेरे, पर सिखवन के बुद्धि घनेरे। तो वो कहानी बन गई कि आदमी उपदेश कर रहा है किसके लिए? दूसरों के लिए। बदलाव किसमें चाहता है? दूसरों में। है ना। तो अब ऐसे में तो सारे लोग चाह रहे हैं तो कौन बदलेगा? हर वो आदमी भी जिसमें आप बदलाव चाहते हैं वो भी आप में बदलाव चाहता है ना। और ये चाहते हैं फिर हमेशा अधूरी रहती है, कोई पूरी नहीं होती। तो यहाँ राम जी कहते हैं कि मैं देखना चाहता हूँ कि जिस ज्ञान को मैंने अर्जित किया इन तीर्थों में जहाँ पर ज्ञानी लोग ही रहते हैं, क्योंकि वहां पर तो ज्ञानी ही होंगे, या कहीं ना कहीं संसार में उनकी इच्छाएं पूरी नहीं होंगी तो तीर्थों में आए होंगे, तो देखें तीर्थों में इनका व्यवहार कैसा है। संसार में तो व्यवहार हम देख ही रहे हैं
1: जी, जी, जी।
0: तो वहां जब जाने की इच्छा जाहिर करते हैं तो ये उन्होंने अपने पिता से पहली याचना की थी,
1: जी। और फिर इसके बाद वो तीर्थाटन के लिए गए,
0: ज्ञान का व्यवहारिक पक्ष देखना चाहते थे।
1: तो उन्होंने देखा, तो तीर्थ यात्रा के बाद जब वो लौटे,
0: हाँ,
1: तो इस तीर्थ यात्रा का क्या प्रभाव रहा उनकी दिनचर्या पर?
0: दिनचर्या देखिए, जब यात्रा करके लौटते हैं तो उनकी दिनचर्या पूरी तरह से बदल जाती है। उस समय उनकी उम्र लगभग 16 वर्ष की है
1: जी, जी
0: जी। और भरद्वाज जी से वाल्मीकि जी कहते हैं कि राम लक्ष्मण जब वहां से लौट के आए तो राम जी अब तीर्थयात्रा के बाद अपने घर में ही रहते हैं, दिन ब दिन कृश होते जा रहे हैं, कृश मतलब कमजोर होते जा रहे हैं,
1: कमजोर होते जा रहे हैं जी।
0: और भरद्वाज जी कहते हैं कि दशरथ जी बार बार स्नेहयुक्त मधुर वाणी से पूछते हैं कि बेटा तुम्हारे मन में कैसी बड़ी भारी चिंता पैदा हो गई है। वे उत्तर देते हैं, पिताजी मुझे कोई कष्ट नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, फिर भी शरीर कृश हो रहा है, फिर भी दिनचर्या बिल्कुल ऐसी है जैसे आदमी उत्साहित होकर अपने जीवन को जीता है, वो उत्साह नहीं है।
1: अब
0: यहाँ पर आप देखें तो ऐसा तब भी होता है जब व्यक्ति मनोरोगी हो जाए, मन में कोई रोग हो जाए
1: जी, जी, जी।
0: अब ये मन में रोग नहीं है, मन में किसी विषय को लेकर उसके तत्व का चिंतन चल रहा है, ये कह सकते हैं उत्तम वैराग्य है, उत्तम मोक्ष की तरफ चिंतन चल रहा है
1: जी।
0: राम की स्थिति सामान्य लोगों की स्थिति नहीं है। तो कहते दशरथ जी कहते हैं कि राम क्यों खिन्न हैं? ये पूछते हैं वशिष्ठ जी से कि गुरु जी जरा बताइए कि राम जब से तीर्थयात्रा से आए हैं ये खिन्न क्यों रहते हैं? इसमें कुछ कारण है जिसके लिए आपको दुख करने की जरूरत नहीं है, ये वशिष्ठ जी कहते हैं। कारण कारण तो है, लेकिन आप उसके लिए दुखी मत होइए, क्योंकि राम को दुख से ये खिन्नता नहीं आई।
1: जी, जी, जी,
0: ये राम को जो खिन्नता आई है उसका कारण कुछ और है,
1: कुछ और
0: वो है। हम देख पा रहे हैं क्योंकि राम अब योग के अधिकारी हैं, जैसे अरिष्टनेमी अधिकारी हुए थे आत्मसत्व के लिए। तो ऐसे में कहते हैं कि राम की स्थिति अब अलग है, अब राम आत्मबोध की तरफ बढ़ेंगे, उनकी दिनचर्या में जो ये परिवर्तन आया है, ये परिवर्तन एक चिंतन या तत्व ज्ञान से आया है। और भगवान गीता में कहते हैं अर्जुन से कि तुम प्रश्न परिप्रश्न उससे करो जो तत्वदर्शी हो। उपदेशन तिथे ज्ञानम ज्ञानत तत्वदर्शन। तो कहते हैं कि ज्ञानी जो होता है वो तत्वदर्शी होता है। अच्छा, तत्वदर्शन आप किताबों से पढ़ के भी कर सकते हैं, लेकिन वो ज्ञान नहीं है, क्योंकि आपने उसको व्यवहारिक रूप से अंगीकार नहीं किया, आपका जीवन उस ज्ञान से स्वयं प्रकाशित नहीं हो पाया। तो फिर आप दूसरों के प्रकाश की वजह कभी नहीं बन सकते। और यही एक वजह है भी कि आप देखते होंगे कि अच्छी बातें तो बहुत की जा रही हैं, लेकिन अच्छी बातों से अच्छे लोगों का निर्माण नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अच्छी बातों से सबसे पहले आपके व्यक्तित्व में परिवर्तन आना है, आपके व्यवहार में परिवर्तन आना चाहिए। और आपका व्यवहार अगर परिवर्तित होगा तो व्यवहार लोगों के आकर्षण का कारण बनेगा, चुंबकीय प्रभाव रखेगा। कहते हैं ना आप लोग कि उसके व्यक्तित्व में एक चुंबकीय प्रभाव
1: जी,
0: है।
1: जी, जी,
0: उसके सानिध्य में आने के बाद हिंसा करने की प्रवृत्ति ही नहीं हो सकती जी, आपके अंदर। तो वो उसका जीवन व्यवहार है, वो जीवन मुक्त की स्थिति है।
1: अच्छा, एक बात मेरे मन में है शशिकांत जी,
0: जी
1: कि विश्वामित्र जो हैं
0: जी,
1: वो आते हैं राजा दशरथ के पास,
0: ठीक है,
1: और श्री राम को मांगते हैं जब श्री राम की ये स्थिति है
0: जी।
1: तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि विश्वामित्र स्वयं सक्षम थे, फिर भी उन्होंने अपनी रक्षा के लिए
0: जी
1: श्री राम को क्यों मांगा?
0: उन्होंने रक्षा के लिए राम को इसलिए मांगा कि वो पूरा श्रेय जो है राम को देना चाहते थे।
1: अच्छा,
0: हाँ, बहुत सारा जो उन्होंने तप करके अस्त्र इकट्ठे किए थे, शस्त्र इकट्ठे किए थे, चूंकि उसके पात्र राम थे, कहते ना कि शक्ति हमेशा पात्र के पास होनी चाहिए, सुपात्र के पास होनी चाहिए। तो उनको ये पता चल गया। अब सोचिए, दशरथ जी कह रहे हैं कि आप चिंता मत करिए, हम पूरी अपनी सेना लेकर के हम आपकी रक्षा करेंगे। राम अभी खुद ही कृश हो गए हैं, बीमार हैं, उम्र कितनी है, आप इनको क्यों ले जा रहे हैं?
1: जी, जी,
0: और दशरथ जी का राम में बहुत आसक्ति थी। कहते हैं चारों पुत्र तो मेरे पास हैं, लेकिन ये जो राम है ये सबसे अधिक प्रिय मुझे है, क्योंकि राम जी का व्यक्तित्व ऐसा था कि वो सहज ही आकर्षित कर लेता था। तो ऐसे में दशरथ जी के अंदर भी वैराग्य हो राम को त्याग करके, बाकी पुत्रों को मांगते तो शायद दशरथ जी को देने में उतनी खलल नहीं होती जितना राम जी को लेके हुआ। तो ये वैराग्य प्रकरण पूरी तरह से वैराग्य की ही झांकी प्रस्तुत कर रहा है कि दशरथ जी का जो राम जी में आसक्ति है उस आसक्ति से भी मुक्त किया जाए।
1: दशरथ जी की आसक्ति का जिक्र वहां भी आता है जब भगवान श्री राम रावण का वध कर देते हैं
0: जी,
1: और सारे देवी देवता आ जाते हैं, इसमें दशरथ भी आते हैं, लेकिन उनका मोह उस वक्त भी है श्री राम से।
0: हाँ,
1: ये अद्भुत
0: बिल्कुल,
1: बात
0: बिल्कुल
1: है।
0: अब एक बात देखिए, वो कहते हैं दशरथ जी से कि हे पृथ्वी नाथ, वो पृथ्वी के नाथ हैं।
1: अच्छा।
0: और ये जो कहते हैं निशाचर, कहते हैं कि मैं इनको अपने शोक से साप देना नहीं चाहता। अब देखिए कितनी सुंदर बात है, अगर मैं साप दूं तो ये भस्म हो जाए, लेकिन शाप देना मैं नहीं चाहता, क्योंकि शाप दे करके मैं भी अपनी स्थिति से गिर जाऊंगा, क्योंकि हम तो जीवन मुक्त की स्थिति में राम को विकसित करना चाहते हैं।
1: जी, जी, जी।
0: तो ऐसे मैं नहीं देना चाहता, और आपके प्रसाद से यज्ञ को निर्विघ्न रूप से मैं चाहता हूं कर सकूं, जिससे जो संकट है, मेरा संकट क्या, वो जगत का संकट है। अच्छा, एक बात और भी देखिए, यज्ञ का विध्वंस राक्षस करते हैं
1: जी,
0: है ना
1: जी।
0: तो इसका अर्थ ये हुआ कि जब भी प्रकृति में कोई विध्वंसकारी सत्ता उत्पन्न हो तो वो प्रवृत्ति ही राक्षसी है, और उसकी रक्षा के लिए हमेशा जो ऋषि हैं या जो जीवन मुक्त लोग हैं या जिनको ये इन शास्त्रों का श्रवण चिंतन है, वो उसकी चिंता करते हैं और फिर वो उसको सुरक्षित करते हैं, जगत की रक्षा करते हैं। तो राम जी को वो सबसे योग्य पाते थे, और उनके पास जो अर्जित तमाम शक्ति था वो राम जी को देना चाहते थे, क्योंकि राम जी के पास वो शक्ति सुशोभित होती, बाकी लोगों के पास वही शक्तियां चली जाएं तो निश्चित वो विनाश का कारण बनेंगी। और इसका वर्तमान समय में अभी जब हम बात कर रहे हैं तो वैश्विक दुनिया जिस तरफ बढ़ रही है, आप देखिए,
1: मैं कह नहीं जा रही थी कि जो युद्ध की जो स्थितियां दिखाई देती हैं रह रहकर, वो एक राक्षसी प्रवृत्ति ही तो है,
0: प्रवृत्ति है। तो ऐसे में देखें तो ये क्या, एक तरह से ये जो प्रवृत्ति है ये आसुरी प्रवृत्ति है, और इस प्रवृत्ति को दैवी प्रवृत्ति यानी अहिंसा सत्य और इसी के द्वारा इसको रोका जा सकता
1: रोका
0: है,
1: जा सकता जी। है जी,
0: तो
1: जी।
0: वो वशिष्ठ जी कहते हैं कि राम को आप इन्हें दीजिए, चिंता मत करिए, ये बहुत शक्ति संपन्न है, ऐसे इनके पास ऐसे ऐसे शक्ति हैं जो शायद ही कोई अर्जित कर पाए जो विश्वामित्र के पास है, और वो स्वयं सक्षम है उन राक्षसों का वध करने में, लेकिन राम जी को अपनी वो शक्तियां देना चाहते हैं क्योंकि राम उसके पात्र हैं, इसलिए आप राम की चिंता मत करिए।
1: जी जी जी जी। तो उसका अंतर्निहित जो एक रहस्य है वो ये है कि राम की पात्रता है, इसलिए विश्वामित्र उनको मांगने के लिए आए हैं।
0: जी जी।
1: तो बहुत ही सुंदर तरीके से आपने हमारे श्रोताओं के समक्ष इस चर्चा को रखा, और अब मैं चाहती हूँ कि चूंकि समय हो रहा है तो भगवान श्री राम के वैराग्य की बिंदु पर हम पहुंचे हैं, तो यहीं से अगले अंक में हम चर्चा शुरू करेंगे। आज आप हमारे बीच उपस्थित हुए, आपका हृदय से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: नमस्कार।
1: तो श्रोताओं, योग संवाद कार्यक्रम में आज हमने जीवन मुक्त के स्वरूप पर चर्चा की। उम्मीद है आज का ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। चलते चलते आपको हम बता दें कि विशेषज्ञ के तौर पर इस कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित थे योग अध्यात्म और जीवन विज्ञान विशेषज्ञ डॉक्टर शशिकांत मणि त्रिपाठी, मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा का था, परिकल्पना अदिति गौड़ की, ध्वनियांकन अमित कुंदानी का, समन्वय सहयोग सतीश बाथम का, और आपसे बातचीत कर रही थी मैं सुनीता सिंह। बहुत जल्द अगले अंक में फिर आपसे भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दें, नमस्कार। आप सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

रेडियो आजाद हिंद से प्रसारित किए जा रहे कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। बने रहिए रेडियो आजाद हिंद के साथ। देश का चैनल, देश के लिए।

0: नमस्कार श्रोताओं, 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद से प्रसारित किए जा रहे कार्यक्रम। स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम में। श्रोताओं, सौंदर्य, कल्पना और सृजनात्मकता की अभिव्यक्ति है हमारी ललित कलाएं, जिन्हें चुनकर, जिनमें रमकर हमारे अंतस को शांति मिलती है और कहीं न कहीं इस सुंदर जीवन को भी हम अनुभूत करते हैं। ललित कलाएं केवल व्यवहारिक उपयोग के लिए ही नहीं बल्कि कलात्मक आनंद के लिए होती हैं। इन्हीं ललित कलाओं में संगीत, मूर्तिकला, चित्रकला, वास्तुकला और साहित्य जैसी प्रमुख विधाएं हैं। इनमें भी सर्वश्रेष्ठ ललित कला है संगीत। गीतम वाद्यम तथा नृत्यम त्रयम संगीत मुच्चयते, अर्थात गीत, वाद्य और नृत्य के समवेत रूप को हम संगीत कहते हैं। श्रोताओं, जहाँ गायन वादन हमारे अंतस में उतरकर हमें ब्रह्मानंद की अनुभूति कराता है, वहीं नृत्य भी दर्शकों को आनंदित करने और भावनात्मक प्रभाव छोड़ने की अनुपम विधा है। और हम आपको बताना चाहेंगे कि 29 अप्रैल को हर साल अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है, तो आज के दिन हम भी थिरकने को तैयार हैं, अपने मन को उल्लासित, आह्लादित करने को तैयार हैं। आज के दिन को मनाने के पीछे का सांस्कृतिक और शैक्षिक महत्व जानेंगे हमारी आज की अतिथि से, सुप्रसिद्ध भरतनाट्यम नृत्यांगना और नृत्य गुरु डॉक्टर लता मुंशी से। हमारे साथ आज उपस्थित हैं डॉक्टर लता मुंशी हमारे स्टूडियो में। लता जी, आपका हार्दिक स्वागत है, नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: सबसे पहला प्रश्न हम आपसे यही करना चाहेंगे कि आज हम अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मना रहे हैं, तो इसे क्यों मना रहे हैं? यूं तो गायन वादन नृत्य से हम सभी आम तौर पर परिचित होते हैं, लेकिन इस दिवस को मनाने के पीछे क्या महत्व है आज के दिन का?
1: सच कहूं तो आज हम लोग इस परंपरा को हम लोग मनाते हैं कि नृत्य दिवस के रूप में 29 अप्रैल को, लेकिन अगर सच कहूं, जो पारंपरिक बात होती है, जो वेदों की बात होती है, पुराणों की बात होती है, तो नृत्य हमारे जीवन में आदिकाल से चला आ रहा है
0: जी।
1: और बिना नृत्य के मुझे लगता है जीवन की कल्पना करना भी असंभव है। और हम लोगों ने अपने शास्त्रों में यही पढ़ा है, ग्रंथों में, कि हमारे आदि गुरु, नृत्य गुरु भगवान शिव, हमारे नृत्यों का जन्म उनसे ही माना जाता है
0: जी।
1: नटराज से ही हम लोग नृत्य का जन्म मानते हैं। और अब अगर मैं ये कहूँ कि उनके जन्म के बारे में, तो वो तो स्वयंभू हैं, तो निश्चित रूप से जो नृत्य है वो आदि काल से चला आ रहा है। और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि नृत्य तो हर दिन होना चाहिए, मतलब हर दिन नृत्य दिवस होना चाहिए
0: जी, जी।
1: लेकिन फिर भी लगभग 1982 से शुरू हुआ है और 29 अप्रैल को नृत्य दिवस के रूप में मनाया जाना शुरू हो गया है। और इसकी वजह यह है कि एक प्रसिद्ध फ्रांसीसी नर्तक जीन जॉर्जेस नोवेर का जन्मदिन इसी दिन हुआ था, 29 अप्रैल को, तो उन्हीं के नाम पर, उन्हीं की याद में, उन्हीं के वजह से ये नृत्य दिवस के रूप में हम इस दिन को मनाने लगे हैं
0: जी जी।
1: 29 अप्रैल का जो इतिहास है वो ये है।
0: अच्छा, वास्तव में हमारी कलाएं हमारी संस्कृति को परिलक्षित करती हैं। कला सभी धर्मों का सम्मान करना भी सिखाती है। कहते हैं ना कि कला का कोई धर्म नहीं होता, कला सबकी होती है और सब कला के होते हैं, सबके अंदर कला विद्यमान होती है, हमें एकजुट करती है। तो इस विचार पर आप क्या कहना चाहेंगी?
1: निश्चित रूप से कला एक बहुत ही सुंदर कार्य है और उसका कोई धर्म, कोई जाति, कोई अलग से वर्ग भेद नहीं है। तो मुझे लगता है कि कला में बहुत सारी कलाएं हैं, क्योंकि मैं नृत्य कला से जुड़ी हुई हूँ। मैं अपनी कला के बारे में जो बात करूंगी कि एक बहुत ही आनंद देने वाला विषय है ये, और सच कहूँ तो अध्यात्म से बहुत ज़्यादा गहरा जुड़ा होने से की वजह से इस कला के माध्यम से हम बहुत सारी चीज़ों को, जीवन के जो बहुत महत्वपूर्ण पहलू हैं, जो हम शायद वैसे ग्रंथों में, वेदों में, पुराणों में उतना गूढ़ रहस्य के साथ समझना हमारे लिए, आम जनता के लिए मुश्किल हो सकता है, वो सभी बातें हम इस नृत्य कला के माध्यम से बहुत आसानी से समझ और सीख जाते हैं। तो ये जो कलाएं हैं, ये हमारी जो परंपरा है, जो हमारे संस्कार हैं, उनको भी बहुत हद तक आज की पीढ़ी तक लाने का जो श्रेय है इन कलाओं को है।
0: मैम, नृत्य करना अपने आप में आनंद का विषय तो है ही, ये कला कौशल भी है, तो नृत्य कला को आप कैसे परिभाषित करेंगी?
1: अगर मैं नृत्य को परिभाषित करूं तो वो सीधे सीधे शब्दों में कि आनंद की चरम सीमा ही नृत्य है।
0: जी,
1: जब आनंद ही नृत्य है उसकी चरम सीमा आनंद होता है
0: जी,
1: तो मुझे लगा वही नृत्य है, तो सोच लीजिए कि नृत्य से कितना आनंद प्राप्त होता होगा।
0: क्या बात है।
1: क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि हर व्यक्ति जो इस संसार में आया है, स्त्री हो, पुरुष हो, बूढ़ा हो, जवान हो, बच्चा हो, सब कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, किसी ना किसी रूप में नृत्य जरूर करते हैं।
0: बिल्कुल।
1: और अगर मैं उसको इस तरह से परिभाषित करूं कि जब हम जन्म लेते हैं, जब एक शिशु दुनिया में आता है, माँ के गर्भ से जब बाहर आता है, तो वहीं से उसका नृत्य का जीवन शुरू हो जाता है।
0: बिल्कुल।
1: और उसको मैंने इस तरह से समझा है कि जब शिशु जन्म लेता है तो जो सबसे पहला उसका मूवमेंट होता है या उसके जो हलचल होती है उस बालक की, वो हाथ पैर हिलाता है जन्म लेने के बाद। और हमारे शास्त्रों में नृत्य की जो विधा है उसको हम लोग अभिनय के चार भेदों में बांटते हैं
0: जी।
1: तो पहला अभिनय होता है आंगिक अभिनय,
0: बिल्कुल,
1: तो दूसरा होता है वाचिक अभिनय, तीसरा आहार्य अभिनय, और चौथा होता है सात्विक अभिनय। तो उसको उस तरह से अगर आप समझें
0: जी,
1: कि जब शिशु जन्म लेता है तो सबसे पहले जो उसके हाथ पैर चलते हैं, हिलते हैं, वही उसका आंगिका अभिनय होता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और निश्चित रूप से उसके बाद जो सेकंड स्टेप होता है उसमें डॉक्टर सबसे पहले ये चेक करते हैं कि बच्चा रोया कि नहीं, क्योंकि जब तक बच्चे के गले से कोई आवाज ना निकले बच्चा स्वस्थ है ऐसा डॉक्टर नहीं मानते। ये साइंस है
0: जी।
1: वो सबसे पहले बच्चा पैदा होते से उसको किसी तरह से भी उसकी आवाज गले से निकले इसके लिए कोशिश करते हैं। कुछ बच्चे नॉर्मली रोने लग जाते हैं और कुछ बच्चे नहीं भी रोते हैं, जिन्हें खूब कोशिश करके रुलाया जाता है। तो जो आवाज गले से जो साउंड निकलता है वही वाची का अभिनय है, और वो पैदा होते से बच्चे के जन्म के साथ जुड़ जाता है। उसके बाद जब बच्चा रो लेता है तो ये मान लिया जाता है बच्चा स्वस्थ है, और उसको फौरन नहला धुलाकर एक साफ सुंदर कपड़े में फौरन लपेटते हैं।
0: जी जी।
1: क्योंकि गर्भ से बच्चा जब बाहर आता है तो दोनों के तापमान में जो फर्क होता है उसको संभालने के लिए या उसको बर्दाश्त करने के लिए उसी तरह का माहौल गर्म किया जाता है, एकदम खुले में नहीं रखते। तो मुझे लगता है कि जो पहला वस्त्र उसको लपेटा जाता है वही उसका आहार्य अभिनय होता है
0: जी।
1: क्योंकि आहार्य अभिनय का अर्थ ही यही है कि हम जो सजावट करते हैं, जो वस्त्र आभूषण पहनते हैं, वो आहार्य अभिनय है। तो उसका तीसरा स्टेप वहाँ आ जाता है।
0: बिल्कुल।
1: और चौथा जो अभिनय है, सात्विक अभिनय, वो बहुत ही समझ के बाद डेवलप होता है। और सात्विक अभिनय अभिनयों में भी सबसे कठिन होता है, क्योंकि उसमें समझ के, आप जब उसको समझ लेते हो किसी बात को
0: जी,
1: तब वो अभिनय या वो भाव उत्पन्न होता है जिसको हम सात्विक कहते हैं। तो वो बच्चे को थोड़ा सा समझना होता है, उसके बाद वो भाव या अभिनय वो आता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि हर व्यक्ति के साथ में नृत्य जन्म से ही जुड़ जाता है और वो मृत्यु तक, अंत तक रहता है। क्योंकि जीवन में ऐसे कई पड़ाव आते हैं, आज बहुत अच्छा रिजल्ट आया तो, आज घर में नया सामान आया है तो, नया घर लिया है तो, ऐसे कई सारे क्षण आते हैं जीवन में जब हम अधिक खुश होते हैं, बहुत ज़्यादा।
0: जी जी।
1: कोई भी माँ बाप बेटे बेटी की शादी में बहुत खुश होते हैं, बच्चों के जन्म में बहुत खुश होते हैं, और वो खुशी या वो आनंद प्रकट करने के लिए हम सब नृत्य करते हैं। वो कैसा भी नृत्य हो, कुछ भी हो, जरूरी नहीं कि वो कोई शास्त्रीय विधा हो
0: जी जी।
1: पर वो जो दिल से जो आनंद निकलता है वो होता है और वही नृत्य है।
0: बहुत ही सुंदर व्याख्या आपने की है मैम। और यूं तो हम देखें अपने आसपास तो हमारी प्रकृति ही नृत्य कर रही है, फूलों का हंसना, चिड़ियों का चहचहाना, नदियों की कलकल एक कहीं ना कहीं नृत्य का ही हिस्सा है जो अपनी प्रसन्नता इस तरीके से प्रकृति व्यक्त करती है। अच्छा, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे भारतीय शास्त्रीय संगीत की हम बात करते हैं तो उसमें अलग अलग रागों को गा करके मानसिक चिकित्सा की जाती है और बड़े बड़े असाध्य रोगों पर आजकल काम किया जा रहा है और उसका परिणाम भी एक सकारात्मक हमें मिल रहा है। नृत्य की अगर हम बात करें तो नृत्य में भी अलग अलग मुद्राएं नृत्य के दौरान की जाती हैं, अलग अलग चेहरे की भाव भंगिमाएं होती हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर देखें तो नृत्य करने के क्या क्या स्वास्थ्य लाभ हो सकते हैं, जैसे संगीत जो है हमारा सीधा मन पर असर डालता है और नृत्य जो है वो सीधे तौर पर शरीर पर असर डालता है।
1: बहुत सुंदर सवाल किया है बेटा आपने। और सच कहूँ तो बहुत साइंटिफिकली, सिर्फ अध्यात्म और फिलोसफी की बात नहीं करूँगी, साइंटिफिकली जो बात है वो मैं करूँगी, क्योंकि मुझे लगता है आज की जनरेशन हर चीज़ को एकदम लॉजिकली समझना चाहती है। तो डांस का जो सबसे पहला स्टेप होता है वो आपका होता है पद संचालन
2: जी।
1: और जब पद संचालन हम करते हैं तो ये आज के समय में सभी लोग जानते हैं कि हमारे बॉडी में कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिसको हम प्रेशर पॉइंट्स की तरह से, आजकल एक पूरी मतलब चिकित्सा प्रणाली विकसित हो चुकी है जिसमें प्रेशर पॉइंट्स पे एक्यूप्रेशर और एक्यूपंचर दो तरह से उसका इलाज या उससे स्वास्थ्य लाभ दिया जाता है। तो चूंकि वो विधा जो डॉक्टर की करते हैं वो बिल्कुल अलग है, लेकिन वही बात मैं कहूंगी कि एक्यूप्रेशर जो है हमारे पैर के पंजों में हमारे शरीर के बहुत सारे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स के पॉइंट्स हैं। तो जब हम पैर जोर से जमीन पर मारते हैं तो वो सारे पॉइंट्स जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं।
2: बिल्कुल।
1: और जब वो पॉइंट्स पर प्रेशर पड़ता है तो उस पॉइंट्स का शरीर के विभिन्न अंगों पर जो उस जहाँ से वो कनेक्टेड होते हैं उस पर उसका इफेक्ट जाता है। तो अगर मैं कहूँ कि आपके डाइजेशन सिस्टम को, आपके हार्ट को, आपके लंग्स को, आपके ब्रेन को, और सच कहूँ तो आपकी स्किन और आपके बाल, आपकी आँखें, हर अंग उससे प्रभावित होता है। और प्रभावित से मेरा मतलब है हेल्दी होता है वो जी, एक हेल्थ आपकी अच्छी इम्प्रूव होती है। दूसरा एक जो बहुत सीधा सीधा सा जो कारण है वो मैं आपको बताऊंगी, जब हम डांस करते हैं तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन बहुत फास्ट हो जाता है, हार्ट बीट बहुत बढ़ जाती है, और मुझे लगता है कि शरीर के हर पार्ट्स को अच्छी तरह से काम करने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है उसका ब्लड सप्लाई।
2: बिल्कुल।
1: क्योंकि थ्रू ब्लड वो हर पार्ट्स पे जाके वो जब पहुंचता है तो वो अंग आपका बहुत प्रॉपर वे में बहुत स्ट्रांगली वर्क करने लगता है। जैसे ब्रेन की बात करूँ तो मैं मोस्टली आजकल के जितना भी वर्किंग स्टाइल है वो सब बैठ के की जाती है, कई बार तो घंटों बैठते हैं।
2: बिल्कुल,
1: तो
2: बिल्कुल।
1: मुझे लगता है ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे ये होता है कि ब्लड सप्लाई जो आपका है वो ब्रेन तक प्रॉपरली नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि पूरा जो प्रेशर है वो नीचे की तरफ हो जाता है।
2: बिल्कुल।
1: तो मुझे ऐसा लगता है कि डांस तो खैर बहुत इफेक्ट करता है, क्योंकि डांस करते समय या डांस के बाद इतना फ्रेश फील होता है, और वो फ्रेशनेस या जो रिलैक्सेशन फील होता है वो सिर्फ इसलिए क्योंकि ब्लड जो हमारे पूरे शरीर में मूव करता है फोर्सफुली, तो हमारे पूरे शरीर के अंग जो हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं या प्रॉपरली वर्क करने लगते हैं, जिसका बहुत गहरा असर हमारे पूरे स्वास्थ्य पर पड़ता है।
2: बिल्कुल।
1: और अगर मुझे लगता है इस तरह का वर्किंग है आपका, वर्किंग नेचर अगर बैठने का है या पढ़ाई के लिए भी, तो मैं आज के जनरेशन को यही बोलूंगी कि आप पढ़िए, आप काम कीजिए, लेकिन हर एक घंटे के बाद आप प्लीज उठ जाइए और समथिंग, कुछ भी, कुछ नहीं तो आप अपनी जहां आप बैठे हो, जहां आप खड़े हो, आप सिर्फ अपने पैरों को उठा के जोर जोर से जमीन पर मारिए, उससे आपका जो ये जो प्रॉब्लम है ये काफी हद तक ठीक होगी, आपका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा और आपका हेल्थ अच्छी रहेगी। और एक और बात में जो डांस, सिर्फ डांस में होती है जो, क्योंकि हो सकता है कुछ लोग कहें कि ये जो आप बातें बता रहे हो वो हम योगा में भी प्राप्त कर लेते हैं या हम जिम में एक्सरसाइज में प्राप्त कर लेते हैं या और भी जो थेरेपीज हैं या अलग तरह की चीज़ें हैं उससे हम ले सकते हैं हेल्थ के लिए, स्वस्थ रहने के लिए, लेकिन डांस फिजिकल एक्सरसाइज के साथ साथ मेंटल एक्सरसाइज भी है, और वो मेंटल और फिजिकल एक ही टाइम पर, एक ही समय पे, मूमेंट पे एक साथ होती है
2: जी,
1: जो किसी और एक्सरसाइज में नहीं होती, क्योंकि डांस जो है वो तालों से बंधा है, ताल में बंधा रहता है, लय में बंधा है। तो जब हम डांस करते हैं तो हमें डांस करते करते ही इस बात का ध्यान रखना होता है कि हमारा कितने ताल का बीट्स है।
2: बिल्कुल।
1: 8 मात्रे का है, 16 मात्रे का है, 6 मात्रे का है, जैसा
2: जी,
1: एक मीटर होता है वो हमको ध्यान रखना है। अगर वो ध्यान मैंने नहीं रखा किसी भी डांसर ने तो वो सम छोड़ देगा।
2: बिल्कुल।
1: और सम छोड़ देगा तो उसका जो डांस है वो बेअसर हो जाएगा या खराब हो जाएगा।
2: जी, जी, जी।
1: इसके साथ साथ एक एक सेकंड्स में हमारी पोजीशन शरीर की बदलती है, जैसे एक सेकंड पहले मैं खड़ी हूँ और एक सेकंड के बाद मुझे जंप करके साइड में जाना है
2: जी।
1: अगर मैं मेंटली अलर्ट नहीं हूँ, अवेयर नहीं हूँ, तो मैं जंप करके साइड में नहीं जा सकती।
2: बिल्कुल,
1: क्योंकि सब कुछ यहाँ से होता है, माइंड से, ब्रेन से, दिमाग से।
2: जी जी।
1: मुझे पहले से मेरे ब्रेन को ये मैसेज देना होता है कि वो मेरे बॉडी को साइड में जंप करके वहाँ ले जाएगा। तो उस समय जो ब्रेन है, शरीर के साथ साथ ब्रेन बहुत एक्टिव रहता है, और मुझे कब बैठना है, कब जंप करना है, कब मुझे साइड में जाना है, एवरी, क्योंकि डांस में एक एक सेकंड में पोजीशन आपकी बदलती है।
2: बिल्कुल,
1: सेकंड मतलब मैं बोल रही हूँ तो उसमें वहाँ कहाँ इतना टाइम रहता है कि आप सोच के इसको करोगे।
2: सही बात है,
1: वो तो इमीडिएटली इफेक्ट होना है।
2: बिल्कुल बिल्कुल।
1: अब ये सब होने के बाद में ये सब चलता रहता है, पूरी तरह से एक्टिवेट रहता है ब्रेन एंड बॉडी। तीसरा जो और एक चीज हमको ध्यान रखनी होती है, मैं क्या प्रस्तुत कर रही हूँ, मतलब नृत्यांगना क्या दिखा रही है
2: जी,
1: उसका भाव क्या है, उसका अभिनय क्या है, उसका सब्जेक्ट क्या है, वो भी, क्योंकि हर भाव का रस भाव अलग होता है। मैं किस भाव में हूँ, किस रस को प्रदर्शित कर रही हूँ, उस रस के अनुसार मेरी भाव भंगिमाएं, मेरे अभिनय निकल रहा है कि नहीं, वो कैसे होगा, वो पहले मुझे मन पर, वो जो सात्विक अभिनय की बात मैं करती हूँ ये वो है, पहले मुझे उस भाव को, उस रस को हृदय में समझना होगा।
2: बिल्कुल,
1: मतलब पहले समझ के हृदय में महसूस करना होगा। जब मैं महसूस कर लूंगी तभी मैं वो भाव प्रदर्शित कर पाऊंगी। खासतौर से जैसे करुण रस अगर मैं दिखाती हूँ, अगर मेरे हृदय में वो भाव नहीं समझा या नहीं आया, वो फीलिंग नहीं आई, तो मेरे चेहरे पे असली करुण रस नहीं आएगा।
2: बिल्कुल,
1: जब मैं महसूस करूंगी तब वो असली करुण रस निकल जाएगा मेरी आंखों से, मेरे चेहरे से, और वही सच्ची रसानुभूति होगी।
2: बिल्कुल।
1: और जब रसानुभूति होगी तब उसी रसानुभूति में दर्शक भी भाव विभोर होगा, अन्यथा नहीं होगा।
2: बिल्कुल, क्या बात है, बहुत गहरी बात आपने हमें बताई, नृत्य में कितना कुछ छुपा है। अच्छा मैम, आपसे ये जानना चाहेंगे कि हमारे भारत में नृत्य विधा की अलग अलग शैलियां हैं, हमारी जम्मू तवी से कन्याकुमारी तक देखें हम, उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम की ओर अगर हम देखें तो अलग अलग नृत्यों के रूप हमें दिखते हैं, कथक है, भरतनाट्यम है, या अगर हम मुंबई चलें तो फिल्म संगीत जो आम जन में बड़ा रचा बसा है और लोग थिरकते हैं, ये तीनों अलग हैं, इनकी प्रस्तुतियाँ मुद्राएँ अलग हैं, इन तीनों को आप कैसे समझाना चाहेंगे?
1: वैसे तो सच कहूँ तो जो शास्त्रीय नृत्य है
2: जी,
1: वो शैलियाँ अलग अलग हैं, लेकिन उनका जो बोलना चाहिए मुझे, उसका जो मूल है
2: जी,
1: वो सब एक है। क्योंकि जैसे मैंने बात की कि नृत्य जो है वो ताल और लय पर आधारित है, तो सभी शास्त्रीय नृत्य जो हैं वो ताल और लय पर आधारित हैं। और सच कहूँ तो ये जो शैलियाँ बनी हैं ये प्रांत हमारे जो देश में अलग अलग कल्चर है, जैसे मध्य प्रदेश का अपना एक कल्चर है
2: जी,
1: तो उत्तर प्रदेश का अपना एक अलग कल्चर है, मणिपुर का अलग कल्चर है, राजस्थान का अलग है, और उसी तरह से साउथ के भी सब अलग अलग है
2: जी।
1: तो जहाँ तक मैंने इस कला को समझा है, नृत्य तो नृत्य है
2: जी,
1: सिर्फ चूंकि वो जो तमिलनाडु में हो रहा है और वहाँ की जो सांस्कृतिक परंपरा है
2: जी,
1: उसके अकॉर्डिंग, उसके अनुसार उस नृत्य का पूरा ढांचा बना है। तो चूंकि चेन्नई में लोग तमिल बोलते हैं
2: जी,
1: उनका खान पान अलग है, उनका वेशभूषा रहन सहन का तरीका अलग है
2: जी,
1: तो वो पूरा असर आपको भरतनाट्यम नृत्य शैली में दिखता है। वही बात मैं अगर मोहिनी अट्टम की करूं, मोहिनी अट्टम केरल का डांस है
2: जी,
1: कहने को दोनों साउथ के प्रांत है, वो केरल है, वो तमिलनाडु, लेकिन मोहिनी अट्टम जो कि केरल का है, तो मोहिनी अट्टम में केरल की जो सांस्कृतिक विरासत है या जो परंपराएं हैं वो पूरी परिलक्षित होती हैं। तो मेरा ऐसा सोचना है कि हर प्रांत में उस नृत्य शैली का भरपूर असर है, इसीलिए शायद ये नृत्य शैलियाँ बनी हैं, जो उड़ीसा में डेवलप हुई, जो वहाँ जन्मी और विकसित हुई वो ओडिसी नृत्य शैली हो गई,
2: बिल्कुल,
1: जो तमिलनाडु में जन्मी वहाँ परिपक्व हुई तो वो भरतनाट्यम बन गई, केरल में मोहिनी अट्टम कथकली के नाम से प्रसिद्ध हो गई। और नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत में, चूंकि जिस तरह से काम होता रहा या अपने यहाँ की जो सांस्कृतिक विरासत थी उसके अनुसार वो कथक के रूप में विकसित हुई है।
2: बिल्कुल।
1: तो सभी नृत्य शैलियों में मुद्राओं का प्रयोग उसी तरह से होता है, ताल का प्रयोग उसी तरह से होता है, लय का प्रयोग उसी तरह से होता है। इसको अगर मैं बहुत अच्छे ढंग से समझा सकती हूँ तो मैं ये बोलूँगी, जैसे नमक, मिर्ची, हल्दी, धनिया, मसाले हम लोग खाने में उपयोग करते हैं,
2: जी जी।
1: हर प्रांत में यही मसाले उपयोग करते हैं, लेकिन उनको उपयोग करने का तरीका अलग होता है, तो उनकी डिश अलग बनती है, हमारी डिश अलग बनती है। यही एक तरीका है,
2: जी
1: हम
2: जी।
1: उन मुद्राओं को किस तरह से उपयोग करते हैं, वो उन मुद्राओं को किस तरह से उपयोग करते हैं, उससे वो अलग अलग शैलियाँ बन गई और विकसित होती गई।
2: जी।
1: तीसरा, आपकी एक बात थी बॉलीवुड वाला, तो बॉलीवुड का मुझे कोई शास्त्र या कोई शास्त्रीयता नज़र नहीं आती है
2: जी।
1: वहाँ पर पहले की अगर मैं बात करूँ, आज से मतलब 70 के या 80 के दशक की बात करती हूँ
2: जी,
1: तो नृत्य बहुत सुंदर था, बहुत खूबसूरत था, उसमें बहुत सारे फिल्म का नृत्य की बात कर रही हूँ मैं, बॉलीवुड के
2: झलकती थी, कहीं
1: शास्त्रीयता झलकती थी, सौम्यता झलकती थी, सुंदरता झलकती
2: जी जी।
1: और मुझे लगता है कि अगर सुंदरता, सौम्यता और शास्त्रीयता नहीं दिख रही है तो वो नृत्य तो हम मैं नहीं कह सकती, क्योंकि सौंदर्य का होना, लेकिन वो सौंदर्य किस तरीके से आप दिखा रहे हो बहुत जरूरी है।
2: जी जी।
1: तो उन नृत्यों में बहुत सुंदरता थी, बहुत कलात्मकता थी, बहुत रचनात्मकता थी, जो कलाओं के लिए बहुत जरूरी है
2: जी।
1: और ऐसा बहुत सुंदर सारे बॉलीवुड के संगीत और नृत्य दोनों हुए हैं।
2: बिल्कुल।
1: लेकिन अगर मैं इधर बात करती हूँ कि 90 के बाद से जो समय आया, धीरे धीरे परिवर्तन हुआ
2: जी।
1: होते होते होते आज जिस जगह पे हम जाके खड़े हैं, मैं आज की बात करती हूँ, तो नृत्य को लेकर कहूँगी बहुत खराब, मतलब शायद ये नृत्य के विनाश की चरम सीमा होनी चाहिए, क्योंकि आज का जो नृत्य मैं देखती हूँ तो कई बार मैं ये सोच में पड़ जाती हूँ कि क्या सचमुच ये नृत्य ही है, इसी को नृत्य कहते हैं, नृत्य की जो परिभाषा विद्वानों ने रची बसी है, बचाई है, वो परिभाषा यहाँ कहाँ है, कहाँ दिख रही है।
2: और कहीं ना कहीं मैम कि हम ये भी कह सकते हैं कि आध्यात्मिक पक्ष से हम हट रहे हैं,
1: सिर्फ आध्यात्मिक नहीं, सांस्कृतिक पक्ष,
2: सांस्कृतिक
1: हमारी
2: पक्ष
1: जो परंपरा
2: जी,
1: है, जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है, हम सभी चीजों से दूर होते जा रहे हैं। और एक अजीब सा बोलना चाहिए कि एक प्रतियोगिता सी है कि मैं ऐसा क्या कर दूं कि सबका ध्यान मेरी तरफ अट्रैक्ट हो, एक आकर्षण का केंद्र बनने के लिए कई बार जो आज की युवा पीढ़ी है वो सब कुछ छोड़ के, सब कुछ भूल कर कुछ भी करने के लिए तैयार है, क्योंकि उसको सेंटर ऑफ द अट्रैक्शन बनना है, पॉपुलर होना है। ये एक जुनून की तरह आज के समय में दिमाग पे चढ़ा हुआ है, खासतौर से जो मोबाइल पे जो मैं डांस आते हैं और जो लोग
2: जी जी।
1: मुझे अच्छा ये लगता है कि सब डांस कर रहे हैं, लेकिन कैसा डांस कर रहे हैं वो तो मैं कभी कभी बहुत डर जाती हूँ, हे ईश्वर, इस डांस को ऐसा भी देखना पड़ेगा ये मैंने कभी नहीं सोचा था।
2: मैम आपने जैसे युवा वर्ग की बात की, आज के जो चलन में नृत्य चल रहा है, किसी भी कला को सीखते समय धैर्य, अनुशासन और निरंतरता बेहद जरूरी है। आजकल का जो युवा वर्ग है उसे आप क्या सीख देना चाहेंगी?
1: सीख क्या बोलूं बेटा, मैं तो एक ही बात कहूंगी आज की पूरी युवा पीढ़ी से
2: जी,
1: कि प्रतिभा की कतई कमी नहीं है। पीढ़ी दर पीढ़ी आज की जो जनरेशन है वो अत्यधिक प्रतिभावान है
2: जी।
1: मतलब इतना कभी कभी देख के हम दंग रह जाते हैं, चकित रह जाते हैं, छोटे छोटे बच्चों में जिस तरह की प्रतिभाएं दिखती हैं तो हमारी कल्पना से विपरीत हैं वो
2: जी जी।
1: लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है जो उन्हें सर्वोच्च शिखर तक पहुंचने से रोकता है, और वो है संयम। अगर मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूं कि आज की जनरेशन का जो संयम है वो ऐसा है कि वो जो हम रोड पर जब गाड़ी लेके चलते हैं और ट्रैफिक लाइट्स होता है, आज की युवा पीढ़ी उस लाइट में, उसमें कुछ सेकंड्स, कुछ मिनट का वेट करना होता है, वो भी व्यवस्था इसलिए बनाई गई है ताकि पूरा यातायात व्यवस्था व्यवस्थित रहे, सुचारू रहे।
2: बिल्कुल।
1: पर मैंने कई बार देखा है कि युवा जो पीढ़ी है जो मोटरसाइकिल कार किसी भी पे है वाहन पे, उनको उस सेकंड्स और मिनट रुकने में भी उनको मुश्किल होता है। कभी तो वो रुकते ही नहीं है और कभी रुकते हैं तो आधी देर रुकते हैं आधी देर में निकाल देते हैं।
2: बिल्कुल,
1: उस निकलने के चक्कर में वो बहुत बार बहुत रिस्क लेते हैं
2: जी जी।
1: वो कहीं से भी मोड़ के कहीं से भी घुस के लेके गाड़ी को निकालना चाहते हैं। तब मुझे समझ में आता है कि ये और कुछ नहीं, इस संयम की कमी है।
2: संयम की कमी।
1: और सच कहूँ तो वही लोग जो किसी तरह से भाग भूख के आगे निकल के चले जाते हैं, हम खड़े होके देखते रहते हैं, अगले लाइट पे या अगले चौराहे पे वही लोग मुझे नजर आते हैं खड़े हुए। तो वो जो जल्दबाजी उन्होंने की या जो इतनी मेहनत की या इतना अपनी जान की रिस्क लेके निकाल गए, उससे उनको कोई फायदा नहीं होता। ये बात उनको ज़रूर समझना चाहिए कि ये हड़बड़ी, ये जो भाग दौड़ है, ये संयम तोड़ना है, इससे कभी फायदा नहीं होगा, बल्कि नुकसान ज़रूर हो सकता है। अगर वो थोड़ा भी संयमित रहेंगे तो उनको बहुत ज़्यादा बहुत अच्छा फायदे होंगे।
2: बिल्कुल।
1: तो मैं आज की जो युवा पीढ़ी है उनको बस एक ही चीज़ कि थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा सा धैर्य और रेगुलरिटी, नियमित कोई भी काम को करने की, क्योंकि आजकल बच्चे युवा पीढ़ी बहुत जल्दी किसी चीज़ को करते करते उकता जाते हैं।
2: और मैम एक सवाल ये भी होता है, बच्चों का खुद का भी होता है और उनके परिजनों का भी होता है कि सीखना चाहते हैं तो कितने दिन में हम सीख जाएंगे, कितना समय हमें लगेगा, तो इस प्रश्न का सटीक उत्तर आपके शब्दों में क्या हो सकता है? क्योंकि सुनकर के बड़ा हास्यास्पद लगता है ये वाक्य कि हम कितने समय में सीख जाएंगे।
1: बिल्कुल सही कहा तुमने, और ये बच्चे तो नहीं करते हैं ये सवाल, निश्चित रूप से पेरेंट्स करते हैं
2: जी।
1: और अभी जो बात मैंने इसके पहले जो कहा था, धैर्य की कमी
2: जी जी,
1: उतावलापन या जल्दबाजी, अगर मैं आज एक बात जरूर कहूंगी आज के पीढ़ी के पेरेंट्स के लिए, क्योंकि हर बार हमारा जो संदेश है या हम जो कहना चाहते हैं बच्चों से नहीं, उनके पेरेंट्स से भी, उनके अभिभावकों से भी मुझे एक बात कहनी है कि मैंने यही पढ़ा है और सबने पढ़ा होगा कि अभिमन्यु को उनके गर्भ में ही चक्रव्यूह में कैसे जाना है वो उन्होंने सीख लिया था, मतलब कैसे उससे निपटना है। तो अगर गर्भ में रहते हुए शिशु का इतना असर होता है तो मैं चाहूंगी कि वो पेरेंट्स जो अभी माँ बाप बनने वाले हैं या बन रहे हैं, वो गर्भ से ही अपने अंदर धैर्य, संयम, नियमितता रखेंगे तो निश्चित रूप से वो जो बच्चे आज की पीढ़ी के नए बच्चे जो पैदा होंगे, जो आएंगे, वो भी शायद धैर्यवान बन जाएंगे। और फिर अगर नहीं है तो हमें उनको बचपन से इस बात की शिक्षा देनी होगी कि धैर्य कितना ज़रूरी है लाइफ में, कितना उसका फ़ायदा है। तो ये तीन चीज़ें अगर आपने जीवन में अपना ली, और ये तीन चीज़ें सबके जीवन में बहुत कुछ ला सकती हैं, धैर्य, संयम और नियमितता, रेगुलरिटी, बस हमको इन्हीं बातों पे ध्यान रखना है। फिर कब होगा, कैसे होगा, आप भूल जाइए, सब कुछ होगा, बहुत जल्दी होगा, बहुत अच्छा होगा।
2: विशेष रूप से हम उन परिवारों की भी बात कर रहे हैं यहाँ पर, जब कहीं कोई बच्चा गायन, वादन या नृत्य चुनता है तो उसे ये कहा जाता है कि इसे साइड में रखो और तुम पढ़ाई या नौकरी पर ध्यान दो, यानी इस तरह का प्रेशर ज़्यादा होता है बच्चे पर। और दूसरा एक पक्ष ये भी होता है कि कई बार बच्चे में कला के प्रति समर्पण बहुत अधिक होता है। अब इस स्थिति में होता है कि बच्चा या तो नौकरी या अन्य विकल्प को चुनकर अपनी कला को मार देता है, या फिर विरोध करके कला को चुनता है और अपनों की अवहेलना झेलता है, और उसे साबित करते करते एक लंबा समय लग जाता है। आप क्या कहना चाहेंगी उन परिजनों से कि कला के क्षेत्र का भविष्य कैसा है?
1: उन परिजनों को बिल्कुल साफ शब्दों में कहना चाहती हूँ कि अगर बच्चे में आपको कला के प्रति रुझान दिख रहा है तो उसको बिल्कुल एनकरेज करिए, प्रोत्साहित कीजिए कला को सीखने के लिए। कला को सीखना या समझना या करना हर व्यक्ति के जीवन में होना एक सौभाग्य की बात है, क्योंकि ये सौभाग्य, मैं तो ये सीधे सीधे कहती हूँ कि ये एक ईश्वर का आशीर्वाद है। अगर आपके जीवन में, किसी भी बच्चे के जीवन में ये शौक है और वो करना चाहता है तो वो ईश्वर से, मतलब उसको कुछ प्राप्त है, ईश्वर उसको कुछ देकर उसने पृथ्वी पर भेजा है, उसको बहुत प्रोत्साहित करना चाहिए। क्योंकि आज का जो समय है वो कला अगर वो सीखता है, कहाँ तक सीखता है, कितना कर पाता है, अगर उसका डिवोशन है, उसकी मेहनत है, उसकी लगन है, तो निश्चित रूप से एक बहुत अच्छा कलाकार बन जाएगा। और आज भी हमारे देश में सौभाग्य से कला और कलाकारों का बहुत सम्मान है
2: जी।
1: सिर्फ सम्मान नहीं है, सच कहूँ तो नाम, पैसा, शोहरत, जो हर व्यक्ति की एक का सपना होता है, वो सब कुछ कला में है, बशर्ते कि आपने उस पायदान की कला सीख ली है जहाँ आपको ये सब मिले। और अगर सचमुच आपकी मेहनत ऐसी है और कर रहे हैं, तो दावे से कह सकती हूँ कि आपको वो सब कुछ मिलेगा। अगर आप बहुत बड़े कलाकार नहीं भी बन पाते हैं, तो एक बहुत अच्छे गुरु बन सकते हैं।
2: बिल्कुल,
1: आप अपनी संस्था चलाइए, गुरु बन जाइए, और अपने द्वारा कितने शिष्यों को सिखा सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। तो दो बातें फिर वहां पर होंगी
2: जी।
1: आपका जो मतलब सेल्फ सेटिस्फेक्शन की बात करूं
2: जी जी,
1: उस बच्चे की वो सबसे ज्यादा उसको होगा। दूसरा, संस्था चलाने से पता नहीं कितने विद्यार्थियों को तैयार करेगा, जो एक देश के लिए, समाज के लिए बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। तीसरा, उसको निश्चित रूप से पैसा भी मिलेगा, क्योंकि जो काम करेगा तो उसके बदले में उसको पैसा मिलेगा
2: जी।
1: और अगर अच्छा गुरु है तो उसे शोहरत भी मिलेगी। तो फिर वही बात कहूंगी कि जिस चीज के पीछे आज पूरी दुनिया दौड़ रही है
2: जी,
1: नाम, पैसा, शोहरत, वो सब मिलेगा। और आज के दौर में एक और वो भी नहीं हो पाया, तो फिर टीवी है, फिल्म है, ये लाइनें इतनी है, ओटीटी है, इतना अधिक फैल गया है ये सारा दौर
2: जी, जी।
1: कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम वो कर ही लेगा। तो मुझे लगता है कि कला के साथ में जीना बहुत सुंदर है, क्योंकि कला सिर्फ कलाकार नहीं बनाती, कला इंसान को इंसान बनाती
2: है। क्या बात है,
1: एक संवेदनशील इंसान, एक सेंसिटिव इंसान, एक बहुत मतलब जो जिसके लिए आज हम सब लोग परेशान हैं कि पूरी दुनिया से इंसानियत खत्म हो रही है, उसको बचाने के लिए, उसको बनाने के लिए अगर एक व्यक्ति 10 लोगों को भी कला सिखाता है और एक अच्छा इंसान बना देता है, तो मुझे लगता है इससे बड़ा समाज के लिए अच्छा क्या होगा। तो मुझे लगता है कि कला से ये तो जरूर फायदा होगा, और ये शायद मेरे हिसाब से सबसे बड़ा योगदान है।
2: बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात डॉक्टर लता मुंशी अभी आपने कही, और वाकई में कला जो है वो व्यक्तित्व को गढ़ती है, व्यक्ति के

और नृत्य गुरु डॉक्टर लता मुंशी। इसी के साथ आज का हमारा ये विशेष कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। श्रोताओं, इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया संतोष कुमार वर्मा ने, परिकल्पना थी अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी का, समन्वय सहयोग किया सतीश बाथम ने। आपके साथ मैं थी आज आपकी रेडियो मित्र भगवती सक्सेना। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद के कार्यक्रमों को। देश का चैनल, देश के लिए।

आदमी वो नहीं जिसे हालात बदल दे, आदमी तो वो है जो हालात को बदल दे। ऐसे ही महान वीर सपूतों की कहानी सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद पर 90.8 मेगाहर्ट्ज़। रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुति आज के कार्यक्रम की।
1: ये थी आज की रेडियो रिपोर्ट। अगली रेडियो रिपोर्ट तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।

90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप है रेडियो आजाद हिंद के साथ और सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण, देश का चैनल देश के लिए।

नमस्कार, मैं हूँ मधुश्री और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए। मैं सलाम करती हूँ देश के सभी सैनिकों को जो हमारी देश की सुरक्षा में हमेशा तैनात रहते हैं, और साथ ही उन क्रांतिकारियों को भी जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान देकर हमें आजादी दिलाई। वो हैं तो हम हैं।

आजादी के यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्रवंदना के विविध स्वर जन गर्जे, अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति जन गर्जे।

0: आजादी के यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्रवंदना के विविध स्वर जन गर्जे, अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति जन गर्जे।
1: सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

स्वाधीनता संग्राम, स्वराज पर एकाग्र कार्यक्रम आजाद हिंद, ज्ञात अज्ञात स्वाधीनता संग्राम सेनानियों, रणबांकुरों, जननायकों की क्रांति कथाएं और आजादी के यादगार तराने।

आजादी की यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्र वंदना के विविध स्वर जन गर्जे। अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति ऑडियो एल्बम का संग्रह जन गर्जे।

0: नमस्कार श्रोताओं, मैं और इतिहास फिर हाजिर हैं आपके लिए एक और महान देशभक्त की रोचक कथा लेकर। आज हम बात करेंगे छोटा नागपुर क्षेत्र में ओर मांझी के राजा उमराव सिंह के देशभक्त दीवान शेख भिखारी की, जिन्होंने सन 1857 की भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की महत्वपूर्ण क्रांति में उल्लेखनीय योगदान दिया।
1: शेख भिखारी ओर मांझी से 9 किलोमीटर पूर्व अनगढ़ा थाना के खुदिया लोटवा गांव में पैदा हुए थे। उन्होंने बचपन से ही युद्ध कला सीखी थी, साथ ही साथ पूर्वजों के अनुभव से प्रशासनिक कुशलता भी हासिल की थी।
0: आज यानी 8 जनवरी और सन 1858 को ही शेख भिखारी शहीद हुए थे। उनकी बहादुरी और प्रशासनिक क्षमता के शौर्य से प्रभावित होकर ओर मांझी खटंगा के राजा उमराव सिंह ने उन्हें अपनी रियासत का दीवान और भंडारी बना दिया था।
1: 1857 की क्रांति में छोटा नागपुर में डोरंडा के सैनिकों ने 31 जुलाई को जमादार माधव सिंह और सूबेदार नादिर अली खां के नेतृत्व में चुटुपालू घाटी में सबसे पहला क्रांति बिगुल बजाया। ये घाटी राजा उमराव सिंह की जमींदारी में ही आती थी।
0: शेख भिखारी सैनिकों के इस कार्य से खासे प्रभावित हुए और उनका उत्साह भी बहुत बढ़ गया। उन्होंने नादिर अली और माधव सिंह को हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया। ये आश्वासन कोरा नहीं था। उन्होंने विद्रोहियों का सामान ढोने के लिए हाथी, घोड़े और कुलियों का प्रबंध करवाया।
1: साथ ही साथ शेख भिखारी और उमराव सिंह ने चुटुपालू और चारू घाटी को तहस नहस करके उधर का मार्ग पूरी तरह अवरुद्ध कर दिया, ताकि अंग्रेजी सेना वापस ना आ सके।
0: विद्रोहियों का आतंक इतना भयानक था कि अंग्रेज कप्तान ग्राहम और 3 अन्य गोरे अफसर हजारीबाग भाग गए। इधर विद्रोही सैनिक सिर्फ 2 तोपों से गोलाबारी करते हुए चुटुपाली के रांची की ओर चल दिए।
1: 2 अगस्त 1857 को विद्रोहियों ने रांची पर कब्जा कर लिया और डर के मारे रांची के जिलाधीश डेविस, जज ओक्स और पलामू के एडीओ बर्च कांके पिठोरिया के मार्ग से भाग खड़े हुए।

0: 1857 की लड़ाई में कई जगहों पर देश के गद्दारों और विश्वासघातियों ने क्रांति मार्ग में विघ्न पैदा करने की कोशिशें की, परंतु शेख भिखारी जैसे दृढ़ निश्चयी वीरों ने हार नहीं मानी।
1: कुछ सिख सेनाएं बिहार और छोटा नागपुर क्षेत्रों में अंग्रेजों की मदद कर रही थी। सिख सेना हजारीबाग में 3-4 दिन तक पड़ाव डाले बैठी थी। इसी बीच शेख भिखारी हजारीबाग जा पहुंचे।
0: तमाम मुश्किलें पार करके शेख ने विश्वनाथ शाहदेव का पत्र उस सिख सेना के मेजर बिशन सिंह तक पहुंचा भी दिया और उन्हें स्वतंत्र सरकार का समर्थन करने को राजी भी कर लिया।
1: हाँ तारीख, पर ये बात कितनी दुखद है कि हमारे देश के क्रांतिवीरों को अपने ही लोगों को अपनी ही स्वतंत्रता के लिए फुसलाना पड़ा, उन्हें लालच देने पड़े।
0: अगर देश में गद्दार मौजूद ही नहीं होते तो हमारा देश गुलामी के इतने बरस नहीं झेलता। और तब क्यों आज भी हम सब ये प्रण ले लें कि देश और मानवता के खिलाफ कभी गद्दारी नहीं करेंगे, तो संसार कितना सुख शांति पूर्ण हो जाए, है ना इतिहास।

0: शेख भिखारी ने छोटा नागपुर में संथालों को अंग्रेजों के विरुद्ध तैयार करने में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान दिया। संथाल परगना के दो भाइयों सिद्धू और कानू ने तो सन 1855 से ही ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था।
1: हाँ, स्वतंत्रता संग्राम में संथालों का शुरू से ही बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इनमें से सुरेंद्र शाह के नेतृत्व में 30 जुलाई 1857 को हजारीबाग की दोनों जेलों को तोड़कर ढेरों संथाल विद्रोहियों को जेल से रिहा कराया गया।
0: इन संथालों के नेता थे वीर रिपू मांझी, फागू मांझी, रिवजा मांझी, डबर गंजू और अर्जुन मांझी। इनके नेतृत्व में 1857 में हजारीबाग स्वतंत्र करा लिया गया।
1: एक बात सोचो इतिहास, उस समय तो संपर्क के साधन भी नहीं थे, फिर भी इतने बड़े पैमाने पर इतने बड़े देश के कोने कोने से हर इलाके के भील, संथाल, आदिवासी और लोग एक आवाज पर जागरूक हो जाते थे और मदद के लिए आगे भी आते थे।
0: बिल्कुल, उस एकता के जज्बे के कारण ही तो भारत स्वतंत्र हो पाया। कोई भी साधन मौजूद नहीं होने के बावजूद जनशक्ति ही थी जो सबसे बड़ा संपर्क का माध्यम और साधन थी।
1: ऐसी शक्ति को हमारा नमन है और साथ ही हम एक जोश से भरा गीत अपने श्रोताओं को सुनवाना चाहेंगे।
0: हाँ हाँ, जरूर।

0: वाह, मजा आ गया ये ताजगी भरा गीत सुनकर। तो तारीख, हम बात कर रहे थे उन पांच वीर संथाली नेताओं की जिन्होंने हजारीबाग स्वतंत्र करवाया था।
1: हाँ, इतना बड़ा कार्य किया और बस अंग्रेजी सरकार की आंख की किरकिरी बन गए। इन पांचों नेताओं को पकड़वाने का ब्रिटिश सरकार ने 100-100 रुपये इनाम घोषित कर दिया।
0: संथाल विद्रोह इतना उग्र था कि हजारीबाग का जिलाधीश मेजर सिम्पसन भयभीत होकर भाग गया और बड़ई में रहने लगा।
1: अंग्रेजों की संथालों के प्रति नफरत बढ़ती रही। आखिरकार आगे चलकर संथालों का ये विद्रोह भी दबा दिया गया। अंग्रेजों ने बड़े पैमाने पर संथाल में नरसंहार किया और त्राही त्राही मचा दी।
0: इतना ही नहीं तारीख, माड़ से लेकर कोला तक लगभग 200 संथाल विद्रोहियों को सरेआम फांसी दे दी गई और संथालों के गांव जला डाले।
1: अंग्रेजी आतंक से भयभीत और पूर्ण रूप से निर्धन हो चुके अधिकांश संथाल उत्तर बंगाल भाग गए। मौका पाते ही 22 सितंबर 1857 को अंग्रेजों ने पुनः रांची पर कब्जा कर लिया।
0: अंग्रेजों को ये मौका इसलिए मिला क्योंकि डोरंडा की विद्रोही सेना रांची से दिल्ली की ओर कूच कर गई थी और रांची में कोई विद्रोही सैन्य शक्ति नहीं बची थी। कुंवर सिंह भी बिहार से अन्यत्र चले गए और अंग्रेजों का रास्ता बिल्कुल ही साफ हो गया।
1: बस फिर क्या था, अंग्रेजों ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया और लगभग अकेले बच गए अपने कट्टर शत्रु शेख भिखारी, उमराव सिंह और उनके भाई घासी सिंह को गिरफ्तार कर लिया। इन तीनों को घोर यातनाएं देते हुए निर्दयता पूर्वक रांची लाया गया।
0: ब्रिटिश शासन के लिए मैदान एकदम साफ था। वो दुष्टता और बर्बरता की हदें पार कर रहे थे। बदले की भावना में बौराए अंग्रेज रांची में क्रांतिकारियों को सरेआम फांसी पर लटका रहे थे।
1: छोटा नागपुर के जुडिशियल कमिश्नर विलियम ओक्स ने मद्रास फौज के मेजर मैकडोनल्ड को मौखिक आदेश दिया कि जिस चुटुपालू घाटी और चारु घाटी को शेख भिखारी ने बर्बाद किया है, वहीं उन्हें और राजा उमराव सिंह को एक साथ पेड़ पर जनता के समक्ष फांसी दे दी जाए।
0: जब शेख भिखारी और उमराव सिंह को चुटुपालू घाटी ले जाया गया तो दृश्य देखने जैसा था। हजारों देशभक्त विद्रोहियों के परिवार मार्ग में उमड़ पड़े। इस भीड़ में महिलाएं और पुरुष रोते हुए उनके पीछे पीछे चल रहे थे। लोगों में भय के साथ साथ उनकी आंखों में एक भयानक आक्रोश साफ साफ देखा जा सकता था।
1: आक्रोश ऐसा था कि जब ये भीड़ मोरहाबादी पहुंची तो मेजर मैकडोनल्ड को आशंका हुई कि मद्रास फौज कहीं डर के भाग न जाए।
0: खतरा भांपते हुए मैकडोनल्ड ने 8 जनवरी 1858 को रांची और मांझी मार्ग में ही मोरहाबादी टैगोर हिल्स के पास एक वृक्ष की दो डालों पर शेख भिखारी और उमराव सिंह को फांसी दे दी।
1: इतना ही नहीं, मैकडोनल्ड ने जनता में भय बनाए रखने के लिए इनके शव एक पेड़ पर लटके रहने देने के आदेश दिए। मोरहाबादी के स्थल को आज भी टुंगरी फांसी के नाम से पुकारा जाता है।
0: फांसी के बाद दोनों शहीदों की संपत्ति जब्त कर ली गई। उनके परिवार अभाव और गरीबी में जीवन व्यतीत करने को मजबूर कर दिए गए। तारीख, जानती हो, अमर शहीद शेख भिखारी के वंशज शेख अलीमुद्दीन रांची के बाजार में मजदूरी करते थे।
1: इतने बड़े संभ्रांत परिवार में जन्मे शेख भिखारी, जिनके पूर्वज शेख बुलंदू खुदिया लोटवा गांव के जमींदार थे और 12 गांवों के मालिक भी। ये 12 गांव उनको औरागढ़ की रानी ने उन्हें उनकी बहादुरी और रामगढ़ सिकदरी घाटी की रक्षा के एवज में उपहार में दी थी।
0: हाँ तारीख, एक तरफ तो ये तथ्य है और दूसरी ओर शहीद भिखारी दिवस समारोह समिति की कुछ और ही मान्यता है। वो कहते हैं कि शेख भिखारी का जन्म रांची जिले के बुडमू थाने के होपटे गांव में एक बुनकर परिवार में हुआ था।
1: अरे इतिहास, तारीखें कहती हैं कि अधिकांश किस्से शेख भिखारी के खुदिया लोटवा गांव के होने की पुष्टि करते हैं। यहां तक कि डोरंडा कॉलेज रांची के इतिहास विभाग के अध्यक्ष एवं प्रमुख इतिहासविद डॉक्टर पुरुषोत्तम कुमार भी खुदिया ही उनका जन्म स्थान मानते हैं।
0: हमारा उद्देश्य उन वीरों की लड़ाई को सम्मान पूर्वक याद करना है और हम खुद ही लड़ने लगे।
1: चलो भाई, हम अपने श्रोताओं को प्यारा सा गीत सुनवाएं और मन से वीर अमर शेख भिखारी को नमन करें।
0: बिल्कुल तारीख, मैं तुमसे एकदम सहमत हूँ। तो लीजिए हमारा आज का ये अंतिम गीत। ये गीत हमारी और हमारे श्रोताओं की तरफ से शेख भिखारी को श्रद्धांजलि स्वरूप है।
1: और श्रोताओं, जैसा हमने पहले भी बताया था, आज शेख भिखारी की पुण्यतिथि है। हम उनकी शहादत को शत शत नमन करते हैं।

0: सत्ता फिर से हो रहा।
1: जननायक, स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथाओं के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाओं का संग्रह, ऑडियो एल्बम जननायक, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आजाद हिंद, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय की। तो अब दीजिए हमें इजाजत
3: और कल फिर हम आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए
2: नमस्कार।

स्वाधीनता संग्राम स्वराज पर एकाग्र कार्यक्रम आजाद हिंद ज्ञात अज्ञात स्वाधीनता संग्राम सेनानियों रणबांकुरों जननायकों की क्रांति कथाएं और आजादी के यादगार तराने।

0: नमस्कार। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद है। अब वक्त है कार्यक्रम सुरसागर का। इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाते हैं गायन वादन, लोकगीत, गजलें और बहुत कुछ। आज प्रस्तुति होगी नादलय रंजनी पंच वाद्य की। कलाकार हैं रंजनी वेंकटेश और उनके साथी। ये प्रस्तुति हुई मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय में महिलाओं की सृजनात्मकता का उत्सव इंद्राणी समारोह के तहत। ये इस कार्यक्रम का दूसरा और अंतिम भाग है।
1: हमारा अगला प्रस्तुति होगा राग हमसानंदी में। ये इंद्राणी समारोह के लिए, ये शक्ति रूप के लिए एक कॉम्पोजिशन बनाया है नादरंजनी, नादलय रंजनी टीम से। इसमें लय वाद्यों का वाद विवाद होगा। तनियावर्तन जो कहते हैं उसको आप आनंद लीजिए। थैंक यू।

0: आई वॉन्ट टू थैंक डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर ट्राइबल म्यूजियम.
1: कार्यक्रम सुरसागर में आप सुन रहे थे नादले रंजनी पंचवादी की प्रस्तुति. कलाकार थी रंजनी वेंकटेश और उनके साथी. अगले कार्यक्रम तक के लिए दीजिए इजाजत. नमस्कार.
2: स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग प्रस्तुत करते हैं स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और उनके विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद.

0: अब तक आपने जाना कि विवेकानंद कन्याकुमारी, रामेश्वरम आदि स्थानों की यात्रा करके मद्रास गए थे। वहां श्री सुंदर राम के घर पर ठहरे थे। उन्होंने स्वामी जी को कई संभ्रांत लोगों से मिलवाया था। मद्रास पहुंचने के थोड़े ही दिनों बाद स्वामी जी की विद्वत्ता और प्रतिभा की ख्याति शिक्षित समाज की चर्चा का विषय बन गई। थोड़े दिनों बाद वे मन्मथ बाबू के पास रहने चले गए। मन्मथ बाबू का घर शीघ्र ही धर्म चर्चा का एक केंद्र बन गया।
1: ये जानकर कि विश्वविद्यालय के सर्वोच्च उपाधिधारी युवकगण स्वामी जी का शिष्यत्व स्वीकार कर रहे हैं, मद्रास नगर के सुप्रसिद्ध नास्तिक क्रिश्चियन कॉलेज के विज्ञान के अध्यापक श्री सिंगरावेलु मुदलियार अपनी हंसी रोक न सके और एक दिन दल बल के साथ उन्होंने स्वामी जी को तर्क युद्ध में आह्वान किया। उनका दृढ़ विश्वास था कि स्वामी जी किसी भी तरह युक्तियों का खंडन नहीं कर सकेंगे, परंतु थोड़े ही समय में वे चुप होने के लिए बाध्य हो गए और उनके अनुगत भक्त हो गए।
0: स्वामी जी उन्हें विशेष स्नेह करते थे और उनका नाम किड़ी यानी बालक रखा था। वे किड़ी से मजाक करते हुए कहते,
2: जूलियस सीजर ने कहा था, विनी वीसी वीडी, यानी मैं आया, मैंने देखा, मैंने जीत लिया, किंतु यहाँ तो किड़ी आया, उसने देखा और वो पराजित हो गया।
1: कुछ काल के उपरांत किड़ी ने स्वामी जी के कार्य के लिए अपना जीवन उत्सर्ग कर दिया था तथा बाद में स्वामी जी की इच्छा अनुसार मद्रास में जब प्रबुद्ध भारत नामक पत्रिका प्रकाशित हुई तब वे उसके अवैतनिक व्यवस्थापक हुए थे। इसके उपरांत वे संसार त्याग कर तपस्या में लीन हुए और साधु के रूप में ही उन्होंने शरीर त्याग दिया।
0: मद्रास के एक युवक श्री वी सुब्रमण्यम अय्यर ने लिखा है,
3: हम लोग मजाक करने के लिए अपने कुछ सहपाठी युवकों को साथ लेकर भट्टाचार्य महोदय के घर पहुंचे। वहां जाकर देखा कि स्वामी जी हुक्का पी रहे हैं, जैसे किसी गहन चिंतन में लीन हो। मैं उन दिनों क्रिश्चियन कॉलेज का छात्र था और ईसाई धर्म के प्रति विशेष श्रद्धा रखता था, यहां तक कि हम एक बार धर्म ग्रहण करने के इच्छुक भी हो गए थे। स्वामी जी के पास आने के पहले ही हम लोगों ने अनेक सवाल तय कर लिए थे और इन सवालों के पक्ष और विपक्ष में जो कुछ कहना संभव हो सकता है वो सब सोच रखा था, ताकि अचानक हारना न पड़े। स्वामी जी को उस रूप में देखकर हम संकोच में पड़े थे। तभी एक युवक अपेक्षाकृत साहस दिखाकर पूछ बैठा, महाशय भगवान किसे कहते हैं? स्वामी जी मानो कुछ सुन नहीं पाए, पूर्ववत अपने ही धुन में हुक्का पीते रहे, फिर मानो उत्तर देने के लिए आंखें खोल कर कहा,
2: अच्छा बच्चा बता सकते हो कि ऊर्जा या शक्ति क्या है? चुप क्यों हूं? ये कैसी बात है? तुम लोग जिस शक्ति शब्द का जीवन में प्रतिक्षण व्यवहार करते हो, उस साधारण शब्द तक की परिभाषा नहीं बता सकते, परंतु मुझे भगवान की परिभाषा बताने कहते हो।
0: उन लोगों ने और भी बहुत से प्रश्न किए थे, किंतु स्वामी जी ने उन लोगों को निरुत्तर कर दिया। अंत में सबके चले जाने पर भी अय्यर महाशय स्वामी जी की कथावार्ता से मुग्ध हो बैठे रहे और स्वामी जी जब समुद्र तट पर संध्या भ्रमण के लिए बाहर निकले तब अय्यर भी उनके साथ चले। हठात स्वामी जी ने अय्यर से पूछा,
2: क्या तुम कुश्ती लड़ना जानते हो?
3: जी कुश्ती?
2: हाँ हाँ कुश्ती जानते हो?
3: जी थोड़ा बहुत।
2: तो चलो आओ थोड़ा लड़ा जाए।
0: दोनों समुद्र तट पर रेत में ही कुश्ती लड़ने लगे। स्वामी जी के व्यायाम कौशल और मांसपेशियों की मजबूती देखकर अय्यर आश्चर्यचकित हो गए और बाद में स्वामी जी का नाम रखा पहलवान स्वामी।
1: स्वामी जी ने एक बार गौर किया कि मैसूर के महाराजा ने उन्हें जो हुक्का दिया था उसे भट्टाचार्य महाशय का रसोईया बड़ी ही ललचाई नजरों से देख रहा है। उन्होंने तुरंत उससे पूछा,
2: इधर आओ, तुम्हें ये हुक्का पसंद है?
4: जी हाँ बहुत अच्छा है।
2: तुम्हें चाहिए?
4: जी हम गरीब लोग हैं, ये तो बहुत महंगा होगा।
2: तो क्या हुआ, ये लो इसे रख लो।
4: अरे पर ये तो आपकी बहुत पसंद की चीज है।
2: हाँ है तो पसंद की चीज, पर तुम्हें भी तो पसंद है ना, लो रख लो इसे।
1: रसोईया अभिभूत हो गया। ऐसे ही थे स्वामी जी, अगर कोई उनकी किसी चीज की तारीफ करता तो वे उसे तुरंत ही वो चीज दे देते।
0: एक बार की घटना है, स्वामी जी को भूतों ने घेर लिया था। कैसे छूटे तो सुनिए। मद्रास प्रवास में उन्हें एक अद्भुत अनुभव हुआ। उन्होंने प्रेतात्माओं के उत्पात का अनुभव किया। वे उन्हें तरह तरह की उल्टी सीधी सूचनाएं देते और स्वामी जी परेशान हो जाते। थोड़े दिन तो वे उत्पात सहते रहे, फिर रौद्र रूप धारण कर बोले,
2: देखो तुम लोग अब इस दुनिया में नहीं हो, अपने प्रेत लोक में जाकर क्यों नहीं रहते? यहां का मोह क्या अब तक नहीं छूटा? चुपचाप चले जाओ, नहीं तो अपनी तपस्या के बल से मैं तुम्हें ऐसी सजा दूंगा कि तुम लोगों को कभी भी मुक्ति नहीं मिलेगी।
0: भूतों ने उन्हें बताया कि वे बड़े कष्ट में हैं, स्वामी जी उनका उद्धार करें। स्वामी जी सोच विचार कर समुद्र तट पर गए और तिल चावल की जगह मुट्ठी में रेत भर भर कर पिंडदान किया और तब से भूतों का उत्पात भी रुक गया।
1: ऐसा ही एक और अनुभव उन्हें हुआ था, पर उसका नतीजा अच्छा ही हुआ था। मद्रास में मन्नाथ बाबू के घर पर रहते समय स्वामी जी ने सपने में देखा कि उनकी माँ की मृत्यु हो गई है। वे सुबह जागकर व्यथित हो गए। मन्नाथ बाबू ने समाचार जाने के लिए कलकत्ते में तार भेजा। उन्होंने स्वामी जी से कहा कि पास ही एक पिशाच सिद्ध व्यक्ति रहता है, वो गणना करके भूत भविष्य की बातें बता सकता है। लोगों के बार बार कहने पर स्वामी जी वहां जाने के लिए राजी हो गए। उनके साथ मन्मथ बाबू, आला सिंगा और इंडिया बैंक के मैनेजर श्री बालाजी राव भी चल पड़े। वो स्थान शमशान के पास था। एक काला कलूटा विशालकाय व्यक्ति को यज्ञ कर रहा था। उस व्यक्ति के साथियों ने उस तांत्रिक पिशाच सिद्ध से उन लोगों का परिचय करवाया। पहले तो उसने ज्यादा आग्रह नहीं दिखाया। जब स्वामी जी लौटने के लिए मुड़े तो उसने उन्हें रोका, इशारे से बैठने को कहा और लकड़ी से जमीन पर कुछ रेखाएं खींच दी। फिर उसने स्वामी जी के पुरखों के नाम बताए, उनके बीते दिनों की बातें बताई और फिर कहा कि उनकी माँ स्वस्थ हैं, ठीक हैं। घबराने की जरूरत नहीं, विदेश यात्रा की बात भी उसने कही थी। सभी लोग निश्चित होकर लौट आए। तार का जवाब भी आ गया था, माँ ठीक थी। इस पिशाच सिद्ध व्यक्ति का नाम था गोविंद चेट्टी। कहते हैं अमेरिका से लौटने के बाद स्वामी जी की मुलाकात उनसे फिर कुंभकोणम में हुई थी। स्वामी जी ने उसका आलिंगन किया था। स्वामी जी के प्रभाव से उसने तंत्र विद्या छोड़ दी थी।
0: मद्रास में स्वामी जी का प्रभाव किस प्रकार फैल रहा था, इसे बताने के लिए श्री के व्यास राव ने उन दिनों की बातों को याद कर लिखा था।
4: उन सन्यासी ने कलकत्ता विश्वविद्यालय से बीए पास किया था। उनका मस्तक मुंडित था, अत्यंत सुंदर रूप था, परिधान में गेरुआ वस्त्र था। वे अंग्रेजी और संस्कृत भाषा में धारा प्रवाह बोलते थे। विरोधी की बातों का जवाब देने की अतुल्य क्षमता रखते थे। मुक्त कंठ से सुललित स्वर में जब गाना शुरू करते थे तब लगता था मानो विश्वात्मा के साथ वे एक हो चले हैं।
1: वे स्वस्थ एवं दीर्घदेही थे, रसिक थे। वे सिद्धाई के प्रदर्शन से घृणा करते थे, सुस्वादु भोजन से आनंदित होते थे। हुक्के के प्रति और तमाकू सेवन में उन्हें विशेष प्रीति थी, तथापि ऐसी सरलता से वैराग्य की बातें करते कि लोग मुग्ध हो जाते थे। कुश्ती लड़ना, तलवारबाजी, लाठी भांजना उन्हें खूब अच्छे से आता था। बात बात में हंसी मजाक करते थे, पर इन सबसे ऊपर था उनका विशुद्ध देश प्रेम। यही गुण सबको मोह लेता था।
0: जिन युवक ने सांसारिक समस्त संबंधों को तोड़ दिया था एवं बंधन मुक्त हो गए थे, उनकी एकमात्र प्रेम की वस्तु थी स्वदेश, और एकमात्र विषाद का कारण था उसी स्वदेश का पतन। व्यास राव जी और भी लिखते हैं कि
4: इन विषयों में चिंता मग्न होकर वे ऐसी बातें कहते जिनसे श्रोतागण मंत्र मुग्धवत बैठे रहते। हुगली नदी से ताम्रपर्णी नदी तक का पर्यटन करने वाले स्वामी जी का यही स्वरूप था। वे मुक्त कंठ से हम युवक वर्ग की कायरता पर दुख व्यक्त करते तथा उसकी निंदा करते। उनकी वाणी फौलाद की भांति राह चीर कर चलती। वे सबके प्राणों में उत्साह का संचार करते। अनेकों लोगों के हृदय में विश्वास का दीप उन्होंने प्रज्वलित कर दिया था।
1: कई विद्वानों के लिखे हुए संस्मरण हमें प्राप्त हुए हैं। स्वामी जी भारतीय दर्शन, योग और संस्कृति के मूर्त विग्रह थे। उनके विचारों में पश्चिमी दर्शन और वैज्ञानिक आविष्कारों ने भी जगह बनाई थी। अपने पांडित्य के लिए विख्यात कुछ व्यक्तियों ने उस समय उनका शिष्यत्व ग्रहण करने के पश्चात लिखा था,
3: स्वामी जी के मन तथा ज्ञान का प्रसार देखकर मैं स्तंभित और विमोहित हो गया। ऋग्वेद से रघुवंश तक वेदांत के दार्शनिक चिंतन से आधुनिक कांट और हीगेल तक प्राचीन और आधुनिक हर प्रकार का साहित्य, कला, संगीत, नीतिवाद एवं प्राचीन योग शास्त्र की सूक्ष्मता से आधुनिक प्रयोगशाला के जटिल विषयों तक सभी विषय जैसे उनकी दृष्टि के सामने स्पष्ट थे। इसी ने मुझे चमत्कृत कर दिया था और मुझे उनका दास बना दिया था।
2: उन्हें अक्सर प्रश्नकर्ता के स्तर पर उतरकर उसी की भाषा में अपने उच्च आध्यात्मिक ज्ञान को व्यक्त करना पड़ता था, जैसे पहले से ही प्रश्नकर्ता के प्रश्नों को जानते हों और इस तरह उसका जवाब देते कि दूसरा प्रश्न किए बिना ही प्रश्नकर्ता की जिज्ञासा शांत हो जाती। यदि कोई ये जानना चाहता कि वे कैसे पहले से ही प्रश्न जान जाते हैं, तब वे मुस्कुराते हुए उत्तर देते, सन्यासी मनुष्य के मन के चिकित्सक होते हैं, इसीलिए दवा देने के पहले ही रोग का पता कर लेते हैं। किसी किसी मौके पर अनेक व्यक्तियों के विचार एक साथ ही उनके मन में कौंध जाते, वे एक साथ ही अनेक समस्याओं का समाधान कर जिज्ञासुओं को संतुष्ट कर देते। जिन लोगों के प्रति वे खुश थे, उन लोगों के प्रति उनका व्यवहार कोमल तथा प्यार भरा होता, पर दूसरों के लिए उनके समीप रहना मानो खतरनाक विस्फोटक पदार्थ के पास रहने के समान था। जिस क्षण किसी के मन में कुविचार उठता, उसकी भनक मानो उनके मन में हो जाती थी, और उस समय उनके ओंठों पर जो मृदु हंसी होती और बातों के क्रम में जो दो चार शब्द उनके श्रीमुख से निकल पड़ते, उससे ही उस व्यक्ति को जान पड़ता कि स्वामी जी को मालूम पड़ गया है।
0: मद्रास में स्वामी जी 3 सप्ताह ठहरे थे। उन दिनों वे बार बार विदेश यात्रा की बातें करते थे। भक्तगण उनकी मंशा जानकर 500 रुपए इकट्ठा कर लाए, किंतु रुपयों को देखकर स्वामी जी दुविधा में पड़ गए। उन्होंने सोचा,
5: ये धन तो विदेश यात्रा के लिए नगण्य है, किंतु विदेश यात्रा यदि विधाता की ही इच्छा है तो फिर आयोजन ऐसा तुच्छ क्यों? भक्तों का प्रयास इस प्रकार असफल क्यों? कहीं मैं अपनी इच्छा से तो नहीं चल रहा हूं? उत्साह से भरकर अपने को बहा तो नहीं दे रहा हूं? जिस प्रकार सोच रहा हूं और जैसी परिकल्पना कर रहा हूं, इसके भीतर कोई सच्चाई है या नहीं? मां, कहो तुम्हारी क्या इच्छा है? मां, मैं यंत्र हूं, तुम यंत्री हो, कहो मां, कहो।
1: उन्होंने भक्तों को बुलाकर कहा,
5: बच्चों, मैं मां की इच्छा उनसे ही जान लेना चाहता हूं, पर यह तो अंधकार में कूदकर गिरने के अलावा और कुछ नहीं है। अतएव मां को प्रमाण देना होगा कि ये उन्हीं की इच्छा है। यदि ये उनकी इच्छा है तो धन अपने आप आ जाएगा। अतः ये रुपए ले जाओ और गरीबों में बांट दो।
0: शिष्यों ने उनका आदेश सुनकर अवाक होने पर भी उसका पालन किया और स्वामी जी ने अनुभव किया मानो उनके कंधे से एक बोझ उतर गया। उनका इस समय का मनोभाव हैदराबाद से अपने शिष्य आलासिंगा को लिखित एक पत्र में स्पष्ट रूप से व्यक्त हुआ है। पत्र से ज्ञात होता है कि वे अमेरिका जाने के लिए उत्सुक थे, पर घटना चक्र से जाने की व्यवस्था न होने के कारण उसे भगवान का विधान समझकर किसी को दोष नहीं देना चाहा। पत्र का अंश इस प्रकार है,
5: अत्यंत दुख के साथ तुम्हें ये सूचित कर रहा हूं कि इस समय मेरे लिए पुनः राजपुताना लौटना संभव नहीं है। अभी से यहां अत्यंत गर्मी पड़ रही है, पता नहीं राजपुताने में और भी कितनी भीषण गर्मी होगी, और मैं गर्मी बिल्कुल सहन नहीं कर सकता। अतः इसके बाद यहां से मुझे बंगलोर जाना पड़ेगा, और ऊटक मंड जाकर मुझे गर्मी बिताना है। गर्मी में मानो मेरा दिमाग खोल जाता है। अतः मेरी सारी योजना काफूर हो गई और इसलिए मैं पहले ही मद्रास से जल्दी चल देने के लिए व्यग्र था। तब मुझे अमेरिका भेजने के लिए उत्तरी भारत के किसी राजा का सहयोग प्राप्त करने के लिए महीनों का समय मिल जाता, किंतु क्या करूं, अब तो बहुत देर हो चुकी है। पहले तो ऐसी गर्मी में कहीं दौड़ धूप न कर सकूंगा। ऐसा करने से मुझे अपने जीवन से ही हाथ धोना पड़ेगा और दूसरे राजपुताने के मेरे घनिष्ठ मित्र मुझे पाकर अपने पास से हिलने न देंगे और मुझे वे पश्चिम देश में जाने भी न देंगे। अतः अपने मित्रों से न मिलकर उसी नए व्यक्ति का आश्रय लेने का मेरा विचार था, परंतु मद्रास में विलंब हो जाने के कारण मेरी सारी आशाओं पर पानी फिर गया। अत्यंत दुख के साथ अब उस प्रयास को त्याग देना पड़ा। ईश्वर की जो इच्छा हो वही पूर्ण हो, किंतु तुम प्रायः निश्चित समझो कि मैं जल्दी ही दो एक दिन के लिए मद्रास आकर तुम लोगों से मिलने के बाद बंगलोर और फिर वहां से ऊटक मंड जाऊंगा। देखूं यदि मैसूर के महाराजा मुझे भेज दें।
1: बातों बातों में हम लोग हैदराबाद आ गए हैं, पर अभी मद्रास का विवरण खत्म नहीं हुआ। धन संग्रह की चेष्टा विफल होने पर स्वामी जी ने पुनः धर्म चर्चा में मन लगाया। स्वदेश प्रेमी सन्यासी उन दिनों मानो असहाय बालक की तरह माँ की पुकार की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्हें मालूम था माँ की जो इच्छा होगी वही होगा, उनके आदेश के बिना कोई भी निर्णय नहीं लिया जा सकता।
0: मद्रास के भक्तों से स्वामी जी के गुणों का समाचार पाकर हैदराबाद के लोग उन्हें अपने बीच पाने के लिए उत्सुक हो उठे। ये आमंत्रण स्वामी जी ने सहज ही स्वीकार कर लिया। श्री मन्मथ भट्टाचार्य ने निजाम राज्य के अधीक्षक अभियंता अपने मित्र श्री मधुसूदन चट्टोपाध्याय को तार द्वारा सूचित किया कि स्वामी जी 10 फरवरी को हैदराबाद पहुंचकर उनके अतिथि होंगे। संवाद प्रचारित होते ही लोग उत्साह से भर गए। स्वामी जी हैदराबाद स्टेशन पर उनके स्वागतार्थ मौजूद लगभग 500 लोगों की भीड़ देखकर आश्चर्यचकित हो गए। स्टेशन जयकारे से गूंज उठा।
1: इन लोगों में थे राजा बहादुर श्रीनिवास राव, महाराजा बहादुर रंभा राव, पंडित रतनलाल, कैप्टन रघुनाथ, शमसुल उलेमा, सैयद अली बिलग्रामी, नवाज बहादुर इमाद, नवाज जंग, नवाब बहादुर सिकंदर नवाज जंग, मिस्टर एच दोराबजी, मिस्टर एम एस मांडन, राय हुकुमचंद, सेठ चतुर्भुज, सेठ मतिलाल एवं श्री मधुसूदन चट्टोपाध्याय तथा उनके पुत्र श्री कालीचरण बाबू, जो स्वामी जी को उनके कलकत्ता रहने के समय से ही पहचानते थे, अतः उन्होंने ही आगे बढ़कर सबसे उनका परिचय करा दिया। फिर स्वामी जी को पुष्पमालाओं से लाद दिया गया। उस दिन वहां उपस्थित एक प्रत्यक्षदर्शी ने लिखा था,
6: स्वामी जी उस समय एक परम बलिष्ठ युवक परम हंस की वेशभूषा में हाथ में कमंडल धारण किए हुए प्रथम श्रेणी के डब्बे से उतरे। उन्हें मधुसूदन बाबू के बंगले में ले जाया गया और अनेक संभ्रांत नागरिक उनके साथ साथ वहां गए। जो लोग स्टेशन नहीं जा सके थे वे बंगले में उनका दर्शन करने आए। निश्चित ही हम लोगों ने हैदराबाद में किसी सन्यासी का स्वागत करने उमड़ी ऐसी भीड़ पहले कभी नहीं देखी थी। यह एक भव्य स्वागत समारोह था, बिल्कुल एक प्रतापी राजकुमार के उपयुक्त।
0: 11 फरवरी के प्रातःकाल सिकंदराबाद के लगभग 100 लोग फल मिठाई और दूध लेकर उनके समीप उपस्थित हुए और वहां के महबूब महाविद्यालय में व्याख्यान देने के लिए उनसे अनुरोध किया। स्वामी जी 13 फरवरी को व्याख्यान देने को राजी हुए। उसके बाद वे कालीचरण बाबू के साथ गाड़ी पर गोलकुंडा का इतिहास प्रसिद्ध किला देखने गए। अपने निवास स्थान में लौटकर उन्होंने देखा कि हैदराबाद के महाराजा के साले नवाब बहादुर सर खुर्शीद जाह, अमीरी ई कबीर, KCSI के प्राइवेट सेक्रेटरी ने अपने एक नौकर को पत्र के साथ उनके पास भेजा है। इस पत्र में ये अनुरोध किया गया है कि वे दूसरे दिन प्रातःकाल राजप्रसाद में आने की कृपा करें। यथा समय कालीचरण बाबू के साथ वहां पहुंचने पर नवाब बहादुर के एड डी कैंप ने उनका स्वागत किया। नवाब खुर्शीद जाह धर्म के संबंध में अत्यंत उदारवादी थे तथा वे हिमालय से कन्याकुमारी तक हिंदुओं के सभी प्रमुख तीर्थों का श्रद्धापूर्ण हृदय से दर्शन कराए थे। उन्होंने स्वामी जी का आदर पूर्वक स्वागत किया। उन लोगों में 2 घंटों तक हुई बातचीत के क्रम में स्वामी जी ने हिंदू, ईसाई और इस्लाम धर्मों के सार तत्व के संबंध में गंभीर चर्चा की। नवाब बहादुर हिंदुओं की साकार उपासना के विरोधी और एक पक्के मुस्लिम की तरह निराकार उपासना के पक्षधर थे। स्वामी जी ने इस विरोध के समाधान की भी चेष्टा की।
1: नवाब के साथ स्वामी जी की घंटों चर्चा हुई। नवाब बहादुर उनकी विद्वता देख मुग्ध हो गए। विचारों के उच्चतम स्तर पर पहुंचकर स्वामी जी ने नवाब के मन में ये विश्वास उत्पन्न किया।
5: मनुष्य में भगवत बुद्धि आदि जो कुछ आध्यात्मिक विश्वास देखे जाते हैं, वे सब मानव प्रकृति के गहनतम प्रदेश के सत्य के साक्षात्कार के कारण ही उत्पन्न हुए हैं। सभी आदर्श सत्य हैं और विभिन्न धर्म उन्हीं आदर्शों की प्राप्ति के उपायों के अलावा और कुछ नहीं है, और इनमें से किसी भी एक मार्ग का मन से अनुसरण करने पर मनुष्य में छुपा देवत्व निश्चित ही प्रकाशित होगा। ईश्वर द्वारा रचित सभी जीवों में मनुष्य ही सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि अध्यात्म से प्रभावित मनुष्य की बुद्धि के द्वारा ही संसार के सारे उच्च तत्वों का आविष्कार हुआ है तथा उसके सहारे ही मनुष्य अपनी सीमा का अतिक्रमण कर देवत्व में प्रतिष्ठित हुआ है।
1: अंत में उन्होंने पाश्चात्य देश जाकर सनातन धर्म के प्रचार की अभिलाषा व्यक्त की। नवाब बहादुर ने उनकी वाग्मिता और कथनों से मुग्ध होकर कहा था,
7: स्वामी जी, आपके इस प्रयत्न के लिए मैं 1,000 रुपए देने के लिए तैयार हूँ।
0: पर स्वामी जी ने पैसे नहीं लिए, कहा कि यात्रा की सारी प्रस्तुति हो जाने पर ले लेंगे।
1: इसके बाद 12 फरवरी को उन्होंने हैदराबाद के कई दर्शनीय स्थानों, मक्का मस्जिद, चार मीनार, फलकनामा, बशीर बाग, निजाम के राजमहल और अन्य अनेक दर्शनीय महलों आदि का दर्शन किया। 13 फरवरी सुबह उन्होंने तय व्यवस्था के अनुसार हैदराबाद के प्रधानमंत्री सर आसमान जाह, KCSI, राज्य के पेशाकार महाराज नरेंद्र कृष्ण बहादुर एवं महाराजा शिवराज बहादुर से मुलाकात की। इनमें से प्रत्येक ने उनके अमेरिका में प्रचार के लिए सहायता प्रदान करने का वचन दिया। शाम को महबूब महाविद्यालय में मेरी पाश्चात्य यात्रा का उद्देश्य विषय पर उनका व्याख्यान हुआ। पंडित रतनलाल ने उस सभा की अध्यक्षता की। अनेक यूरोप वासियों के साथ 1,000 से अधिक श्रोता सभा में उपस्थित थे। अंग्रेजी भाषा पर उनकी पकड़, उनका ज्ञान, शब्द विन्यास का माधुर्य और भाव भंगिमा देखकर सबके सब प्रभावित हो गए।
0: दूसरे दिन बेगम बाजार के व्यापारियों ने सेठ मोतीलाल के नेतृत्व में उनसे साक्षात्कार किया और कहा वे उनकी सहायता करने को तैयार हैं। स्थानीय थियोसोफिकल सोसाइटी एवं संस्कृत धर्म मंडल सभा के कोई कोई सदस्य भी मिलने आए। 15 फरवरी को पुणे से उनके नाम एक तार आया। उस तार के द्वारा पुणे की विभिन्न संस्थाओं के गणमान्य नागरिकों ने उन्हें वहां आने का अनुरोध किया था। उत्तर में स्वामी जी ने सूचित कर दिया कि उनके लिए तत्काल जाना संभव नहीं होगा, भविष्य में वे आने का प्रयास करेंगे।
1: 16 फरवरी को स्वामी जी ने मंदिरों के खंडहरों, बाबा सरफुद्दीन का मजार और सर सालार जंग के महल को देखा। 17 फरवरी को मद्रास से लौटते समय रेलवे स्टेशन पर हजारों लोगों ने उन्हें भावभीनी विदाई दी। श्री कालीचरण बाबू ने लिखा है, उनकी पवित्र सरलता, सतत आत्मसंयम एवं गहन भाव ने हैदराबाद वासियों के हृदय में एक अमिट छाप छोड़ दी थी और उसके बाद वे मद्रास चले गए।

अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।

0: वादा फिर से हो रहा।
1: जननायक, स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथाओं के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाओं का संग्रह, ऑडियो एल्बम जननायक, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद। इस कार्यक्रम का भाग 30 प्रसारित किया गया। नब्बे.8 मेगाहर्ट्ज पर हम रेडियो आजाद हिंद से बोल रहे हैं। आइए श्रोताओं, अब हम आपको बताते हैं हमारे केंद्र से कल प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की जानकारी। कल सुबह 7 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम जीवन सौरभ में भगवान बुद्ध के सुविचार। अक्षय निधि कार्यक्रम का प्रसारण समय रहेगा सुबह 7:10 से। इन दिनों आप सुन रहे हैं ऋग्वेद के प्रथम मंडल से वाचन। कल सूक्त 100 का प्रसारण किया जाएगा। भक्ति संगीत का कार्यक्रम सुना जा सकेगा सुबह 7:20 से। हमारा नियमित कार्यक्रम वतन का राग आप सुनते हैं प्रतिदिन सुबह 8 बजे। श्रोताओं, कल ये कार्यक्रम केंद्रित रहेगा डॉक्टर जाकिर हुसैन की पुण्यतिथि पर। 8:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम बाल सभा। कल का विषय रहेगा मन की गुल्लक। परिकल्पक मनीषा चतुर्वेदी के साथ बाल कलाकार परीजा की बातचीत आप सुनेंगे। 9 बजे का समय रहेगा कार्यक्रम टेक गुरु का। इसमें आप सुनेंगे दृष्टिहीन जनों के लिए कंप्यूटर तकनीकी के फायदे। हमारी सेना हमारा गर्व ये कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 9:30 पर और शाम 7:30 पर। भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 इस विषय पर आजकल आप सुन रहे हैं सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल भामा से पूर्वाखले की चर्चा। 10:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आजाद हिंद। ये कार्यक्रम केंद्रित रहेगा बाबू वीर कुंवर सिंह पर। 11 बजे का समय होगा कल कार्यक्रम परिक्रमा का और 11:30 पर आप सुनेंगे काव्य गुंजन। कल आप सुनेंगे इस कार्यक्रम में यशोधरा का भाग 1। तो श्रोताओं, ये थे हमारे केंद्र से कल प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रम जिन्हें आप सुनेंगे सुबह 7 बजे से रात्रि 10 बजे के बीच में 90.8 मेगाहर्ट्ज पर हम रेडियो आजाद हिंद से बोल रहे हैं। रात्रि के 10 बज चुके हैं। अब हमारी ये सभा यहीं पर संपन्न होती है। कल प्रातः 7 बजे कल के कार्यक्रमों के साथ आपसे हम पुनः भेंट करेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद।